0: क्या हाल नमस्ते सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन। काश मैं बोल सकता खूबसूरत है यार, ऐसा नहीं है, दिन हमेशा खूबसूरत रहता है एज लॉन्ग एज आपका माइंड जो विजुअल तरीका है कि आप उस आसमान को उस वेदर को किस नज़रिए से देखते हैं उस पे है। बट यस, इवन सनी डे कैन बी अ वर्स्ट और गुड डे लाइक राइट नाउ आउटसाइड इज ऑलवेज प्रीटी मच वेरी वेरी गुड। वेल यस, इस खूबसूरत दिन में आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और आप सुन रहे हैं कि खूबसूरत रेडियो शो पे रेडियो फ्रिक्वेंसी बोले तो 104.2 एफएम के जरिए आप सुनते हैं हमें, जहाँ पे हम चलाते हैं हम पे बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने। वेल अभी के लिए बने रहिए और जल्दी से फोन उठाइए, मुझे भेज दीजिए होम सिक रेमेडीज के लिए मैसेजेस। जी हाँ, लेट्स सी क्या खाने की जो चीजें हैं वो मिस करते हैं। एक्चुअली रिसेंटली एक पापड़ टोटो में कोई ट्रक है, खुशबू यूजली बाहर से खाती नहीं है और उसको बहुत ही कम पसंद आता है बाहर का खाना, यू नो शी लव इनसाइड वाला, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और बाहर ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते वेजिटेरियन वालों के लिए, इस वजह से बोलते हैं कि बाहर खर्चा करना ऐसा घर पर बना लो। लेकिन एक जगह गई अभी, वो नहीं गई एक्चुअली, मैं गया और हमारी जैसे जैमिंग होती है बेनाम्स के थ्रू, तो उसके बाद हम वहाँ पे बैठते हैं एंड देन आफ्टर दैट आई मैं उसके लिए फ्राइज लेके गया था, बहुत ही अमीर है, बहुत ही ज़्यादा ही अमीर है। सो यस, आप मुझे फ़ोन टेक्स्ट भेजिए 5599 पे और बताइए कि क्या चीज़ है जो आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे।
1: बचाओ के

0: वॉलेट सॉन्ग दिल दे दिया है आनंद राज आनंद की आवाज में. आपने गाना सुना है, बहुत ही प्यारा था और एक्चुअली उस टाइम पे काफी इमोशनल गाना भी था. लोग सचमुच इतना रोते थे इस गाने को सुन के, फिर लोगों को याद आता था कि उनकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं, तो वो फिर और रोते थे. जोक्स अपार्ट, लेट्स कम बैक एंड होम सिक रेमेडीज के लिए आप सभी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेजेस मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ. सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मैसेज भेजा है. तो ये रहा सबसे पहला मैसेज, वो है राहुल का. वो कहते हैं, आई मिस नॉट हैविंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. बैक होम फैमिली ऑलरेडी न्यू दैट आई वॉज थिंकिंग. हियर एवरीथिंग फील्स अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट. है
1: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: मेरे को समझ में नहीं आया, किसी को आया हो तो प्लीज समझा देना मेरे को. निशा कहती है, माय होमसिक रेमेडीज मेकिंग अ रैंडम फोन कॉल टू एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड. समहाउ आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ टॉकिंग आई फील लाइक आई नेवर लेफ्ट इंडिया. ओह दैट इज कूल, दैट इज कूल. अजय कहते हैं, पुकिको हिस से आई मिस वॉकिंग इन टू फैमिली फंक्शंस एंड सीइंग 4 जनरेशन अंडर वन रूफ. दैट्स समथिंग रियली स्पेशल. दैट इज कूल. एक्चुअली उसके बताना था, मेरे यहाँ पे आई थिंक 5 या 6 जनरेशन तक थी मेरी फैमिली में. जैसे मेरी नीस हो गई तो उनकी मम्मी मेरी बहन, फिर उनकी मम्मी बोले तो मेरी माँ, फिर उनकी मम्मी बोले तो मेरी नानी, फिर उनकी मम्मी बोले तो मेरी पर नानी. ये 5 जनरेशन तक मैंने देखा है, यू नो, ऑल एट द सेम प्लेस सेम हाउस अंडर वन रूफ. या जो कि एक बहुत ही बढ़िया, वो एक्चुअली 102 साल तक जी है मेरी पर नानी. बट वो एक बहुत ही बढ़िया लाइक यू नो वो है एक्सपीरियंस है. प्रियंका कहती हैं, आई मिस माय मम्स हैबिट ऑफ पैकिंग फूड फॉर मी इवन व्हेन आई वाजंट हंगरी. नाउ आई हैव टू रिमेंबर माय ओन लंच. ये बहुत बहुत बहुत होता है, यहाँ पे टाइम इतना बिजी है. आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं. आई मिस हियरिंग पीपल स्पीक हिंदी एवरीवेयर. द मोमेंट आई हियर समवन स्पीक इट इन सुपरमार्केट आई ऑटोमेटिकली स्माइल. आप आओ पापा टोटो है. या फिर नहीं, एक्चुअली पापा टोटो पंजाबी ज़्यादा है एंड सेंडिंग में गुजरात बोलने वाले ज़्यादा. हाँ एक्चुअली अगर देखें तो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले मेरे को लगता है मिक्स है. लाइक इट्स नॉट लाइक यू नो टिपिकल कि वहाँ पे जाके आपको हिंदी ही बोलने को मिलेगा. बट आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आपको लगता है दैट वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको मिनी इंडिया जैसा फील आता है. लाइक यू कैन डिवाइड बाय स्टेट्स एज वेल. तो मुझे बताइएगा 5599 पे. मुझे पर्सनली बताऊँ, पापा टोटो में पंजाबी जैसा फील होता है पंजाब में हूँ. सेकेंड सेंडिंग में जाता हूँ तो मुझे गुजरात जैसा फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे किसी भी दुकान पे जाओ हर बंदा गुजराती बोलता है. नो मैटर व्हाट वेदर यू आर एज लॉन्ग एज यू आर इंडियन दे विल स्पीक टू यू गुजराती. एंड कुछ ऐसी और भी जगह हैं, आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको. लाइक कौन सी ऐसे पार्ट है जो जहाँ जाके आपको लगता है कि ये कोना है इंडिया का और मे बी फीजी इंडिया का. बताइए मुझे 5599 पे. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मा'स फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मा'स इडली और डोसा बैटर। अम्मा'स फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.

0: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
1: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods.
2: Non-stop Bollywood.
3: Poochon ke karte shiddat ke saath karte
2: hain. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Lunchbox with Ketan.
5: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
4: Hum. Office shout out.
6: ऑफिस शाउट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आई नो काफी मैसेज आ चुके हैं मुझे। लेट्स रीड इट आउट। काफी ने एक्चुअली अभी तो दो ही आए हैं, बट होपफुली वी विल बी रिसीविंग मोर इन फ्यू मिनट्स। आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे। एरन कहते हैं लंच ब्रेक क्वेश्चन मार्क और आई एम स्टिल स्टक इन अ मीटिंग दैट कुड हैव बीन इन ईमेल। ओह ओके भाई, इतना टाइम मिल गया आपको, लाइक यू नो आप मीटिंग में मैसेज भेज रहे हो। वाह यार सही है, हैट्स ऑफ टू यू। और मुझे सुन भी रहे हो, मतलब दैट इज अनलेस यू आर वन ऑफ देम, जो बैक बेंचर नहीं होता कि जो क्लासेस चल रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन अंदर पीछे बैठ के आराम से ईयरफोन लगा के मस्त सुन रहे हैं। महेश कहते हैं माई वाइफ एक ही बात है, वाइफ इज लाइफ, लाइफ इज वाइफ। My wife gave me strict instruction not to buy lunch outside today. Guess who's eating homemade roti and dal? क्या बात है? पापा टोयोटा से इन्होंने मैसेज भेजा है। आ गया है मैसेज, दो और मैसेज आए हैं, उनको भी पढ़ लेते फटाफट। स्कूल फिनिश अर्ली टुडे सो आई एम ऑलरेडी होम रेडिंग द फ्रिज। नाइस। ये बोल रहे हैं आई एम 14 ईयर्स ओल्ड and not using my phone from school. Oh, okay. मेरे को ये तो मेरे 4-5 दिन पहले सवाल किया था ना। But glad you responded finally. बोला केतन, the boys at work are arguing over who makes the best fish curry. No work getting done right now. Oh, निलेश भाई ने किया है ये ओटा हूस है। Well, thank you so much आपके messages के लिए सारे। आप बस बने रहिए। थोड़ी देर में लेटेस्ट खबर भी लेके आएंगे और आपके लिए और चटपटी, लेकिन न्यूजीलैंड की जो हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात है वो भी होगी आज इस आर में थोड़ी देर में। तो आप बस बने रहिए और सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

चलिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। वेल यस, मेरा नाम केतन है और आप सुन रहे हैं मुझे हम रेडियो के लंच बॉक्स शो में। 3 जून 1869 की बात है। आज के दिन को न्यूजीलैंड की हायर एजुकेशन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क मोमेंट आया जब यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो को ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया। ये न्यूजीलैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी फाउंडेशन ने कंट्री की एजुकेशन सिस्टम को फ्यूचर में शेप कर दिया। ओटागो प्रोविंशियल काउंसिल ने यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया और इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए 100,000 एकर्स पेस्टोरल लैंड एंडियोमेंट के रूप में अलॉकेट किए गए। एजुकेशन को प्रमोट करना और ग्रोइंग प्रोविंस को स्किल्ड प्रोफेशनल्स देना इसका मेन गोल था। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ओपनिंग 5 जुलाई 1871 को डनेडिन में हुआ। शुरुआत में सिर्फ 3 प्रोफेसर और कुछ डजन स्टूडेंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे लॉ, मेडिसिन, माइनिंग और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स ऐड होते गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो वुमेन को क्लासेस अटेंड करने की परमिशन देने वाले अर्ली इंस्टीट्यूशन में से एक माना था और उस एरा के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप भी माना गया। वैसे आज यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के कैंपसेस डनेडिन के साथ साथ वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, रॉकलैंड में भी हैं और हज़ारों लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी करने आते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो से अपनी पढ़ाई की है।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम।
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
3: और गानों में जस्ट

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ακούν, Τζέκη. Chutney Shots.
1: वेलकम बैक। अभी बात करते हैं चटनी शॉट्स की, यानी कि हम यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिल सके। सो यस, अभी के लिए जो न्यूज़ है वो कुछ अलग अलग जगह से है। लेट मी जस्ट कॉपी इट, जस्ट थोड़ा सा लोड लेने की कोशिश कर रहा है। बट यस, अभी के लिए आप देयर यू गो। जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली अभी एक मैच भी चल रहा है लाइव, ऑल वाइट्स एंड हेटी अंडर वे आफ्टर वेदर डिले इन फ्लोरिडा, यानी कि उनके बीच में मैच हो रहा था और बारिश की वजह से थोड़ा डिले आ चुका है। बट यस, पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। तो पॉलिटिक्स से अपडेट जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि गवर्नमेंट का पोस्ट नेटल हॉस्पिटल स्टे अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि 3 दिन का स्टे पुलिस फेस वाइज इम्प्लीमेंट होगी, ना कि इमीडिएटली सबके लिए। ट्रैवल सेक्टर में एयर न्यूजीलैंड ने अपने लास्ट मिनट चीपर रीजनल फेयर स्कीम्स को स्क्रैप कर दिया है। ये डिसीजन एयरलाइन के फ्यूल कॉस्ट प्रेशर पे ऑप्शन ऑपरेशनल चैलेंज के बीच आया है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एल नीनो कंडीशंस अब 95% लाइकली है, जिसका मतलब न्यूजीलैंड को इस विंटर में ज़्यादा वार्म और ड्राई मिलने के आसार हैं। और साथ में और भी न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट अभी के लिए एंजॉय करो। एक और न्यूज़ आपको बता देता हूँ। यूएस में पॉलिटिकल्स डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल टाइज अब स्क्रूटनी में है, जहाँ एलिगेशंस है कि उनके मूव्स से एलीज और फैमिलीज को बेनिफिट मिल सकता है। वैसे स्पोर्ट्स की भी कुछ खबरें हैं, मैं थोड़ी देर में आपसे रूबरू होकर बताऊँगा। तब तक ये गाना सुनो, कुणाल गांजवाला और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। This

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: वेल एक सवाल आपसे पूछूं उससे पहले मैं बता देता हूं दैट स्पोर्ट्स से कुछ न्यूज़ है। क्रिकेट में इंग्लैंड के बेथिल फिट हो गए हैं और अब वो ब्लैक कैप्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होंगे जो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। साथ में रग्बी से सैड न्यूज़ है, ऑल ब्लैक लेजेंड मो नानो ने 44 ईयर्स की एज में फ्रेंच क्लब को लीव कर दिया है जिससे फैंस काफ़ी इमोशनल है। म्यूजिक वर्ल्ड में फॉर्मर कॉमोडोर्स बेसेट रोनाल्ड लाफ्रेड का ऑकलैंड में 75 ईयर्स की एज में देहांत हो गया है। और बिजनेस न्यूज में अगर बात करें तो कॉमर्स कमीशन अब बीपी के अगेंस्ट कोर्ट एक्शन ले रहे हैं एलिजिड प्राइसिंग एरर्स को लेकर, किसी जिससे फ्यूल प्राइसिंग सेक्टर्स में मेजर स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। वेल यस, एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा जिसका जवाब आप मुझे जल्दी से मुझे बताइए 5599 पे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं बस देख रहा हूँ कौन सा सवाल पूछूँगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए राइट, इंटरेस्टिंग तो साथ साथ में कनेक्टिविटी बैठ सके। वैसे यस ओके, माय सवाल टू यू ऑल, आप यहाँ आए हैं न्यूजीलैंड में एंड ऑफ कोर्स यू लिव्ड विद मेनी पीपल ओवर हियर, हो सकता है आपने खुद एक घर ले लिया हो या फिर आपने किसी का शेयर किया हो, तो आई वांट टू आस्क और मे बी बिफोर दैट एज वेल इन इंडिया एज वेल और इन योर कंट्री एज वेल वेयर यू आर फ्रॉम इवन फ्रॉम फिजी एज वेल, आपने हो सकता है लाइफ में कभी एक बार किसी के साथ रूम शेयर किया होगा, तो वॉट यू नीड टू डू इज विच बॉलीवुड कैरेक्टर वुड मेक दैट रूममेट वर्स्ट। जी हाँ, वर्स्ट नहीं तो कोई भी कैरेक्टर जो है वो आप मुझे बताइए कि आपका जो रूममेट था वो उसका बॉलीवुड का कौन सा कैरेक्टर है जो काफ़ी मैच करता है, आप मुझे 5599 पे इसका जवाब दीजिए एंड लेट्स सी यार क्या इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं, इट गोना बी फन यार, लेट्स फाइंड आउट कि आपका रूममेट्स कौन से बॉलीवुड कैरेक्टर के साथ मैच करता होगा। मैं बताऊँ तो वो था, अगर आपने चुप चुप के मूवी देखी उसमें राजपाल यादव होता ना चिप्स मांग रहा है तो वैसा कैरेक्टर मुझे लगता है मेरा रूममेट जब मैं इन्वकागल में रहता था स्टार्टिंग में, नॉट एवरी टाइम बट स्टार्टिंग में। सो यस, डू लेट मी नो, आप 5599 पे मुझे टेक्स्ट भेजिए और बताइए कि कौन सा कैरेक्टर मैच करता है आपके रूममेट से।

0: चाहे आप हम के ढिंचैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला 40% चांस दिखा रहा है डिक्रीजिंग क्लाउड्स मॉडरेट साउथ वेस्ट विंड मेनली क्लियर रहेगा रात को बढ़िया 5:13 पे होगा आज का सनसेट
0: लंच बॉक्स विद केतन
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी
0: लंच के मंच पे
1: खेड़ा नमस्ते सत श्री अकाल आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं 12 बजे से अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आप बस बने रहिए अंटिल 3 बहुत सारी बातें गपशप एक से बढ़कर एक गाने जिसकी पहली शुरुआत होने वाली है शिरेशा भगवतुला की आवाज में घोड़े पे सवार ये गाना आप एंजॉय करिए डांस करिए थिरकिए जो करना है आप करिए बट यस कीप लिसनिंग टू अस अनटिल 3 माय शो उसके बाद तो सैंडी जुड़ेंगे फॉर द कॉफी ब्रेक तो यस अभी के लिए ये सुनिए मैं लेके आऊंगा थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आज एक्सपेक्ट करिए और एक मैसेज भी मैंने पूछा था कि व्हाट बॉलीवुड कैरेक्टर योर रूममेट माइट फिट उसके जवाब मुझे मिले हैं कुछ और भी भेजिए ताकि लेट्स सी यार काफी एंटरटेनिंग लग रहे हैं सो बस बने रहिए उस चीज का इंतजार करिएगा एंजॉय करिए दो गाने
0: बचाओ क्या

0: वेल बने रहिए बिकॉज इस आर में आपके लिए लेके आऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में लंच टाइम रेंट लाइन, यानी कि आप ऐसे मैसेज मुझे भेजिए जहां पे आप यू फील वेरी वेरी इरिटेटिंग अबाउट समथिंग, कुड बी स्मॉल फॉर अदर पीपल बट आपके लिए बहुत बड़ी बात है एंड उसके लिए मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग. सो यस, वो आप मुझे भेज सकते हैं. उसके बाद मैं आपके लिए लेटेस्ट खबर भी लेके आऊंगा और मैसेज भी पढ़ने वाला हूँ जो थोड़ी देर पहले मुझे मिले हैं, और साथ में बॉलीवुड की खबरें भी मैं आपके बीच लेके आने वाला हूँ. तो यस, आप बस कनेक्टेड रहिए, सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो में अंटिल 3.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
6: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
5: मेरे को समझ में नहीं, एक 2-3 दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने,
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
1: वीकडेज 6 to 10 AM.
7: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
5: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स Reliance Ventilation System से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
8: कॉन्टैक्ट Reliance Ventilation System ऑन 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: Wormsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council to Ararata Creek.
10: Oh yeah, Super Cheap Autos Toolapalooza is on now. With super deals on quality auto tools, it's music to your ears. Make it super. Super Cheap Auto.
9: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
1: Lunchbox with Ketan.
11: Mujhe pasand hai ladka.
1: Hum. Lunchtime Rant Line.
0: लंच टाइम रेंट लाइन में आपका स्वागत है. यहाँ पे हम बात करेंगे उन बातों को लेके जहाँ पे सचमुच यू नो पीपल डू फील वेरी इरिटेट अबाउट, बट ऑफ कोर्स मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट दैट. सो यस, सबसे पहला मैसेज जो है वो आया है हर्षित भाई का. वो कहते हैं पापा लोटे से, व्हाई डू इंडियन पेरेंट्स सेज आई डोंट नो बट स्टिल आर्ग्यू लाइक दे रोट द टेक्स्ट बुक. मैं अभी पेरेंट बना हूँ तो लेट्स सी क्या क्यों करता हूँ मैं या क्यों करने वाला हूँ इन फ्यूचर. दैट वाई डू इंडियन पेरेंट्स सेज आई डोंट नो. बट यहाँ पे कोई है अगर जो मुझे बताना चाहेगा, फील फ्री टू गिव अ काउंटर ऑन दिस. दैट दिस बॉय हर्षित इज आस्किंग व्हाई डू इंडियन पेरेंट्स सेज आई डोंट नो बट स्टिल आर्ग्यू लाइक दे रोट द टेक्स्ट बुक्स. इसका जवाब दे सकते हैं. दिव्या कहती है कि हाय केतन, फ्लैट बुश से एवरी आंटी एट फंक्शन हैज वन मिशन, आस्क योर फुल लाइफ प्लान इन अंडर 2 मिनट्स. डीप थॉट है एक्चुअली, बट ऑफ कोर्स आप कर नहीं सकते ये सवाल. वैसे ये सिर्फ आंटी का नहीं है, ये एक्चुअली ना आप हम लड़कों से भी अगर पूछोगे तो हम भी कहीं जाते हैं सो बेटा आगे का क्या सोचा आपने, ऐसा हमसे करते थे. अब तो ऑब्वियसली जब सब सेट हो चुका है तो जब शादी नहीं हुई थी कॉलेज में थे तब पूछे थे बेटा आगे का क्या, फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, नहीं यहाँ मत जाओ यहाँ जाओ, ये कोर्स मत करो वो कोर्स करो, फिर शादी कब करनी है, शादी बड़े हो रहे हो, ये सब करना है वो सब करना है, ये सारी चीज़ें हमसे भी पूछी जाती है. नॉट जस्ट द फीमेल थिंग बट फॉर मेल थिंग एज वेल. बुला केतन सुरेश फ्रॉम मैंगरे. Fiji Indian that don't need GPS, they use trust me, I know this road. मेरा भी एक दोस्त है गुजरात से है, उसको भी है, वो इतने साल हो गए मैंने आज तक उसको जीपीएस यूज़ करते हुए नहीं देखा भाई। वो घूम लेगा, रबड़ लेगा, भटक जाएगा, बट उसकी हिम्मत मतलब उसकी मजाल जो वो ऐप यूज़ करे। मैंने कहा भाई तेरे को क्या मतलब, क्या ऐप के साथ क्या चैलेंज है तेरा कि भाई तू अगर ऐप यूज़ कर लेगा तो ऐप तेरे से तू बैट हार जाएगा, ऐसा कुछ है भाई? ऐप को पता भी नहीं पड़ना है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो उसको यूज़ करता है नहीं करता है, तो जस्ट यूज़ इट यार, थोड़ा टाइम बचेगा, है ना। वो ऐसा ही करता है, वो एग्जिट मिस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, एंड देन ही विल ट्राई टू ब्लेम सम अदर पर्सन। यार तूने बताया नहीं रास्ता पहले ऐसे। आप भी मुझे बताइए अगर इफ़ यू नो एनी वन हु डज द सेम थिंग। केतन, दिस इज मेहुल फ्रॉम बॉटनी। व्हाई डू ऑफिस फ्रिज हैव वन मिस्ट्री कंटेनर नोबडी डेज टू ओपन? अच्छा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट अगर यहाँ पे कोई है जो जवाब देना चाहता है इसके बारे में तो डू लेट मी नो, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा। हे केतन, शालिनी फ्रॉम हेंडरसन। इंडियन मम्स विल से आई एम नॉट एंग्री इन द एंग्रीएस्ट टोन पॉसिबल। आई कैन रिलेट दैट, मैं गुस्सा नहीं हूँ। बट यू एक्चुअली गुस्से में ही बोल रहे हो। ये मेरी मम्मी भी क्या करती थी। केतन भाई, अनिकेत फ्रॉम अनुरेवा। ऑकलैंड ट्रैफिक लाइट्स चेंज फास्टर देन यू आर ऑलरेडी लेट। ये एक जगह होता है यार, ये मतलब ये जो लेफ्ट या राइट इंडिकेटर वाला होता है ना, वो तो जलता है और कब बुझता है भाई। गाड़ी इतनी भाई, गाड़ी चालू हुई है, सब होती है, उसके बाद फट से चेंज होता है, पता ही नहीं पड़ता है। सो यस, आई एग्री विद अनिकेत भाई। आखिरी मैसेज पढ़ते हैं रिया का, कहते हैं एवरी देसी हाउस होल्ड हैज वन चेयर दैट इज परमानेंटली नॉट फॉर सिटिंग। हैं, ओके, पता नहीं मतलब मैंने तो अभी से ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट थैंक यू रिया, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर लवली मैसेजेस। आप बस ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और ऐसे ही मैसेजेस भेजते रहिए टू यू नो गेट सम एंटरटेनमेंट एंड गेट सम ऑल द थिंग्स। जी हाँ,
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक। अभी की जो लेटेस्ट खबर है उस पर थोड़ी नजर डाल देते हैं। न्यूजीलैंड में कॉमर्स कमीशन ने फ्यूल जायंट बीपी के खिलाफ कोर्ट एक्शन फाइल करने का डिसीजन लिया है एलिजिट प्राइसिंग एरर को लेकर। कमीशन का कहना है कि बीपी के फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम में कुछ डिसरिपेंसिव या एरर हो सकते हैं जिनके कारण कंज्यूमर को इनकरेक्ट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन मिलने का रिस्क बना हुआ है। वैसे अब मैटर कोर्ट में जाएगा और लीगल प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ेगी। ये केस उस ब्रॉडर क्रैकडाउन का पार्ट माना जा रहा है जहां रेगुलेटर बिजनेसेस को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहा है जो प्राइस एडवर्टाइज या डिस्प्ले होता है, वही कस्टमर को चेकआउट पर चार्ज होना चाहिए, वरना इट इज कंसिडर्ड मिसलीडिंग अंडर फेयर ट्रेडिंग एक्ट। वैसे रिसेंट ईयर्स में न्यूजीलैंड में प्राइसिंग एक्यूरेसी पर काफी फोकस बढ़ा हुआ है, स्पेशली सुपरमार्केट्स और फ्यूल सेक्टर में, क्योंकि स्मॉल एरर्स भी लार्ज स्केल कंज्यूमर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी सिग्नल दिया है कि मिसलीडिंग प्राइसिंग के लिए पेनाल्टीज और स्ट्रिक्ट हो रही है और फ्यूचर में कंपनीज को हैवी फाइन्स फेस करने पड़ सकते हैं अगर सिस्टम वीक पाए गए तो। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड सी कि क्या रिपोर्ट आती है इनकी कोर्ट के द्वारा।

0: चलिए फटाफट से कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो रहे हैं ग्रैंड कीर्तन संध्या, जहाँ पे रोनल सिंह, रानू एंड जयने सेवक आ रहे हैं इस फ्राइडे को, यानी कि परसों 5 तारीख को वैदिक सेंटर पापा टोटो में ये होने वाला है 7:30 बजे के बाद। टिकट्स आर ओनली $20, आप ले सकते हैं जयस फ्रेश मार्ट शर्ली रोड पापा टोटो से। उसके बाद आप एक ग्लो रेड फॉर थाल न्यूजीलैंड इसको सपोर्ट कर सकते हैं। एक ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है बाय मुस्कान के ट्रस्ट न्यूजीलैंड, टास्का न्यूजीलैंड, शाइनिंग अ लाइट ऑन थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये आप कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी उन्हें सर्च कर सकते हैं मुस्कान के ट्रस्ट, वहां पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट भी है। अगर कोई डोनेशन अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आप वहां जा सकते हैं मुस्कान के ट्रस्ट .org.nz पे जाके। वैसे बेसिकली जो इवेंट है वो है इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव, जो कि 20 तारीख को होने वाला है, 20 जून को होने वाला है मनुकाओ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर में। आप पहुंच जाइए और जितनी तादाद से आप जा सकते हैं अपने यू नो एनीवन वुड लाइक टू डोनेट द ब्लड दे शुड गो देयर एंड आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण सभा न्यूजीलैंड आप सभी को इनवाइट करती है अधिक मास कथा एंड यज्ञ जो कि 7 जून को होने वाला है रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू में 9:30 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा इस जगह। उसके बाद दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाओ भी अगेन पहुंच जाइए, जहाँ पे 13 जून को 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ पढ़ी जाएगी, जहाँ पे सारे भक्तों को न्योता दिया जा रहा है और वो सुबह 7 बजे के बाद आराम से यू नो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, पाठ पढ़ सकते हैं और प्रसाद एंड महाप्रसाद विल बी सर्व्ड थ्रू आउट द डे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in।

0: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Fiji is on sale now at Flight Centre. Fly Fiji Airways return from $699 per adult and $449 per child. Includes checked baggage, meals and in-flight entertainment. Book online or in-store now. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
2: Discover the magic at Go Bananas Chaike, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Chaike is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chaike Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: Lunchbox with Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
4: इसके पीछे
6: हम
4: लंच के मंच पे।
7: वेलकम बैक। अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं बॉलीवुड से। एक लोकल न्यूज की तरफ से ये न्यूज आई है इंडिया के बॉलीवुड की, जहां पे बता रहे हैं कि फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर न्यू बज ये है कि मेकर्स ने इसको सिर्फ एक कॉमेडी नहीं बल्कि 2026 का बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर एंटरटेनर बनाया है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का मेन आइडिया ये है कि आज के टाइम में जब बॉलीवुड में ज्यादा इंटेंस एक्शन, डार्क थ्रिलर्स और हैवी ड्रामा चल रहा है, तब ये मूवी ऑडियंस को पूरा मसाला कॉमेडी प्लस बिग स्क्रीन फनस्केप देने वाला है। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में है और एक मैसिव मल्टी स्टार कास्ट है जिसमें कॉमेडी, कियोस और नॉस्टैल्जिया का मिक्स देखने को मिलेगा। डायरेक्टर्स और मेकर्स का क्लेम है कि ये फिल्म ऑडियंस को स्ट्रेस फ्री थिएटर एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन की गई है, यानी कि बिना सोच विचार के बस एंजॉय करो, लाफ करो और एंटरटेनमेंट लेते रहो। जी हाँ, फिल्म का जो रिलीज टाइम है वो है मेरे ख्याल से 26 जून, यस 26 जून को ये है और ऑलरेडी इसको 2026 की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म्स में काउंट किया जा रहा है। वाओ यार, दैट इज ग्रेट यार। लेट्स सी क्या रिपोर्ट कार्ड रहती है इसकी। बट यस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं। फ्यू डेज, काफ़ी टाइम हो गया मैंने पढ़ा नहीं है ये। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, इसका अभी तक आया नहीं रिजल्ट। वैसे तो हिट हुई फ्लॉप हुई पता नहीं, बट 1.07 का करोड़ का कलेक्शन किया है। श्री बाबा नीब करोरी महाराज फ्लॉप हो चुकी है, ज़्यादा कलेक्शन हुआ नहीं है। रजनी की बारात भी फ्लॉप हो चुकी है, कृष्णा और चिट्ठी फ्लॉप हुई है। वैसे अभी मैं देख रहा था कि फर्स्ट सिक्स मंथ में बॉलीवुड में करीबन 40 मूवीज जो है रिलीज हुई है, उसमें से सिर्फ दो ही ब्लॉकबस्टर रही है। यू ऑल नो कौन सी, एक तो धुरंधर है और एक और कौन सी है, मेरे ख्याल से हाँ फर्स्ट धुरंधर जो अभी आई थी और एक और फिल्म वो भी रिलीज हुई थी, मैं नाम भूल गया। और तीन जो फिल्में हैं वो हिट रही है, बाकी 35 फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हुई है। दैट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन ऑफ कोर्स, बट यही रिजल्ट रहता है यार, यू नो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू ब्रिंग द ऑडियंस टू द थिएटर, उनको खींच के लाना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। है जवानी, अभी 6 महीने हुए नहीं वैसे तो, है जवानी तो इश्क होना है 5 जून को रिलीज होने वाली, यानी कि परसों मैं वापस आऊँगा ये वो नहीं है। 12 जून को ये रिलीज होने वाली है। कॉकटेल 2 19 जून को रिलीज होने वाला है। मैं कॉकटेल 2 देखने का बहुत मन है और वेलकम टू द जंगल का भी। मैं देखते हैं यार कैसा रहता है, होपफुली आई गेट टाइम। या
4: दिल

0: Welcome, Jenny. Throwback.
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग लंच बॉक्स। वेल, फटाफट से मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ जो मुझे आए हैं। मैंने एक सवाल किया था कि आपका रूममेट, अगर आप कभी रहे हो रूममेट्स के साथ या फिर रहते हो, तो आपके कौन से कैरेक्टर मैच करेंगे बॉलीवुड कैरेक्टर से। वेल यस, रवि का मैसेज आया है, माय रूममेट इज टोटली मुन्ना भाई, ऑलवेज चिल, फ्रेंडली एंड समहाउ सर्वाइव्स एवरी सिचुएशन विदाउट स्ट्रेसिंग। That's so cool, yeah. That's so cool. Good to know. Priya कहती है, one of my roommate is Kareena Kapoor in कभी खुशी कभी गम mode. Dramatic entrance, loud opinions, but big heart. That's so sweet, yeah. Dev कहते हैं, my other flatmate is like a circuit from Munna Bhai MBBS. Fixes things in the house in the most random but effective way. क्या बात है, वही तो चाहिए यार, है ना। इसके बाद अंजलि कहती है, my roommate is basically poo from K3G, यानी कि अगेन सेम आंसर एज बिफोर, ऑलवेज लेट बट ऑलवेज लुकिंग स्टाइलिश। क्या बात है, नाइस। करण कहते हैं, फ्रॉम माउंट रॉस्कल, ही इज लाइक फिर हेरा फेरी बाबूराव व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट। नेहा कहती है, वन इज शाहरुख खान फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस, फुल एनर्जी, ऑलवेज प्लानिंग ट्रिप एट 2 AM। सो कूल यार। आखिरी पढ़ते हैं विकेश भाई, वो कहते हैं, माय फ्लैटमेट इज लाइक मुन्ना भाई प्रोफेसर, सीरियस फेस बट सीक्रेटली वेरी वेरी वेरी वेरी सॉफ्ट। थैंक यू, थैंक यू।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIG SWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
2: Kino could take something small and make it big. In fact, it could turn $1 into $250,000. Will your little go a long way? Play in store or online at mylotto.co.nz.
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल।

0: खेड़ा नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है, आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बने रहिए, इस आर में भी बहुत सारी गपशप होने वाली है। शुरुआत करेंगे एक ढूंढी अखियां इस गाने से, यासिर देसाई की आवाज में। इनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, वो है ना
1: पहली बारिश,
0: नहीं यार वो उसे नहीं,
1: दिल को करार आया,
0: ये भी बहुत प्यारा गाना, बहुत ही अमेजिंग आवाज है यार इनकी, एकदम अलग ही टेक्सचर इनकी आवाज में। बट यस, आप बने रहिए, एंजॉय करिए गाना, मैं लेके आऊंगा लेटेस्ट खबर कुछ ही पलों में।
2: बचाओ क्या,

0: विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और अब बात करते हैं लेटेस्ट खबर की। लेटेस्ट खबर क्या बोलती है, लेट्स क्विकली फाइंड आउट। बहुत ही एक अजीब सी न्यूज है ये जो हमें मिली है अभी थोड़ी देर में। जी हाँ, लेट मी क्विकली पुट इट आउट। थोड़ा सा इंटरनेट आज पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है। इनफैक्ट मेरे घर पे भी जो इंटरनेट है इतना स्लो चल रहा है दैट आई एम एक्चुअली अनेबल टू वर्क स्मूथली। वेल गेस, जो न्यूज़ है वो ये है कि ओटैगो रीजन में एक मिसिंग पर्सन केस का हार्ट ब्रेकिंग एंड सामने आया है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि कुछ ह्यूमन रिमेन्स, जो स्केलेटन को कहते हैं, मिले हैं जो एक ऐसे व्यक्ति से मैच किए गए हैं जो पिछले एक साल से मिसिंग था। अथॉरिटीज के मुताबिक रिमेन्स को फॉरेंसिक टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि डेथ को अब सस्पिशियस नहीं माना जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस अभी भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। ओटैगो ये जगह है जहाँ पे ये हुआ है। वैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि रिमेन्स आइसोलेटेड एरियाज में मिले थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने DNA एनालिसिस के बाद आइडेंटिटी जो है कंफर्म की है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो एक मिसिंग पर्सन केस जो एक साल से अनसॉल्व था उसका क्लोजर मिल गया है, लेकिन अब भी ये समझना बाकी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उनके साथ जो ये सिचुएशन देखनी पड़ी है। अथॉरिटीज ने कहा है कि फैमिली को सपोर्ट दिया जा रहा है और केस को स्टैंडर्ड कोरोनर प्रोसेस के थ्रू क्लोज किया जाएगा।
0: लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: हम
3: वेलकम बैक। वेल यस, लड़कियां पीछे पड़ी है, बट उसमें ये नहीं बताया कि किस चीज के पीछे, मतलब किस चीज की वजह से मेरे पीछे पड़ी है। ये तो भाई आपका काम है पता करने का कि क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या नई खबर है? नई खबर यह है कि एक नया पॉडकास्ट आ चुका है। शैंकी सिंह WWE सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में भी उन्होंने काफी फिल्में की हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है, जब उन्होंने उनको पहली बार देखा मैंने कहा भाई बंदे की गर्दन किधर है। आपको याद होगा वो जो मूवी है ना, कौन सी, फिर हेरा फेरी, वो जो होता ना छत से ऊपर जाता है, ये ऐसा बंदा था भाई। 7 फुट टॉल बंदा है ये। आपने फोटो देखी होगा, थंबनेल देखी होगी, रिज्बे और सैंडी कैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कहता नहीं कि कुछ बड़ा मानव है और एकदम छोटे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा साउंड कर रहा था। बट यस, वो तो चलो देखने में है, बट जितनी अच्छी बातें देखने में लग रही है उतनी ज़्यादा अच्छी बातें सुनने में भी लगेगी। आपको ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए, इतना अमेजिंग पॉडकास्ट है, बहुत सारे सीक्रेट खोले हैं। बचपन से हम WWE देखते हैं और हमेशा हमको लगता था कि यार ये सब रियल है, असली में लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं, और लड़ाने के बाद ये खाना खाते हुए भी साथ में देखते हैं, भाई चले क्या रहा है, कोई कैसे कर सकता है। तो ये उन्होंने बताया कि स्क्रिप्टेड है या नहीं, ये भी उन्होंने बताया। प्लस बॉलीवुड में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे उन्होंने अपने यशराज फिल्म में जाके किस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि लाइक यू नो उनका फर्स्ट विजिट कैसा रहा अक्षय कुमार के साथ, एंड देन ऑफ कोर्स सलमान खान की मूवी भारत में उन्होंने एक फिल्म भी एक्ट की है, उसके अंदर भी वो हैं, जो एक फिल्म के वजह से उन्हें इंटरनेशनल ट्रिप भी मारने का मौका मिला है। तो यस, आप उन्हें देखिए, एक बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज जो है आप तक पहुंचाई गई है इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो यस, फोन उठाइए, या तो मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 भी भेज दीजिए, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर रो ऐप के जरिए। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग। और सबसे खास बात, वीडियो प्रोडक्शन वॉज डन बाय मी। जी हाँ, मेरा नाम केतन है, मैंने इसका पूरा प्रोडक्शन संभाला, एज एन पूरी एडिटिंग मैंने की है इसकी। इंस्पायर मीडिया वर्क्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरी कंपनी है। कोई भी रियल स्टेट हो या फिर मार्केटिंग वीडियोज़ हो या फिर कोई इवेंट से रिलेटेड वीडियोज़ हो, आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर्च करिए इंस्टाग्राम पे इंस्पायर मीडिया वर्क्स, आपको सिल्वर कलर का एक बैकग्राउंड होगा एंड देन IMW लिखा होगा उस पर, वो आप सर्च करके यू कैन जस्ट फ्लिक मी अ मैसेज इफ यू हैव एनी इवेंट्स कमिंग अप। बट यस, आप ड्राइव लिखिए और 5599 में भेज दीजिए इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, और BF लिख के 5599 में अगर भेजेंगे तो आपको एक फ्यू बाइट्स एंड कन्वर्सेशन मिल जाएगी आपको विजन पूजा के ब्रेकफास्ट शो के लिए भी। जी हाँ, तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें टेक्स्ट भेज दीजिए बाय राइटिंग डाउन ड्राइव या फिर BF टू 5599।
2: Hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

ड्रॉ जो है वो ब्रेकफास्ट शो में होगा 5 जून को डिस्क्लोज. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. आप टिकट वैसे ले सकते हैं iticket.co.nz पे जाके. बहुत ही अमेजिंग प्ले है एंड आई पर्सनली हैव सीन इट, सो यस यू शुड बी डूइंग इट. आई मीन लाइक नॉट दिस वन, ये तो कंप्लीट नया मेरे लिए भी, बट आई हैव सीन द ओल्ड परफॉर्मेंस बाय द डुओ. जी हाँ, जल्दी से गजाई टिकट ले लीजिए और अभी हाल फिलहाल आप मुझे BD लिख के 5599 पे भेज दीजिए ताकि ड्रॉ में शामिल आप हो सकें.

0: खबर न्यूजीलैंड में एक और सीरियस माइग्रेंट वर्कर्स एक्सप्लोइटेशन केस सामने आया है, जहां एक लैंडस्केपिंग कंपनी पर एलिगेशन है कि उन्होंने एक माइग्रेंट वर्कर से जॉब सिक्योर करने के लिए $45,000 तक का पे करने को मजबूर किया। आरएनजेड रिपोर्ट के मुताबिक वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट के बदले या वीजा जॉब एक्सेस के लिए हैवी पेमेंट डिमांड की गई, जो कि न्यूजीलैंड के एम्प्लॉयमेंट लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। अथॉरिटीज का कहना है कि ये टाइप की प्रैक्टिस कैश फॉर जॉब एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में आता है, जिसमें वल्नरेबल माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट किया जाता है। वेल, लेबर इंस्पेक्टर और एनफोर्समेंट एजेंसी ने इस तरह के केसेस को सीरियस ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड बताया है, क्योंकि इसमें वर्कर्स को ऑलरेडी वीक वीजा पोजीशन और डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर एक्सप्लॉइट किया जाता है। वैसे ये केस आइसोलेटेड नहीं है, रिसेंट मंथ में न्यूजीलैंड में मल्टीपल केसेस सामने आए हैं जहां वर्कर्स से जॉब के लिए इलीगल पेमेंट ली गई, वेजेस डिले या अंडर पेमेंट हुआ, वीजा डिपेंडेंसी का मिसयूज हुआ। और ऑफिशियल्स का कहना है कि माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनफोर्समेंट और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और भी बढ़ाई जा रही है। सो होपफुली ये चीज़ आगे ना बढ़े और कुछ स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव लॉज तो आने चाहिए, ताकि ऐसे जो भी इंसिडेंट करें उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिल सके।
1: मुझे पसंद है लड़का। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient, because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
3: Non-stop Bollywood.
4: Hum.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: वेल यस, टेक टॉक में हम बात करेंगे बहुत सारी, इतने गजब गजब टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, क्या बताऊं मैं, लाइक लिटरली आई फील लाइक यू नो आई जस्ट गो इनसाइड, क्योंकि कल हम मॉल में गए थे इवनिंग में आफ्टर आई फिनिश वर्क, मैं और खुशबू, और लिटरली मॉल सिर्फ इसलिए गए, खुशबू मेरे को बोल भी रही थी मॉल तुम मुझे घुमाने नहीं, तुम्हारे खुद के ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है ना उसको देखने आए थे मैंने कहा मैं क्या करूँ, व्हेनेवर आई सी ऑल दोस ब्रांड्स जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ, आई जस्ट गो इनसाइड, मेरे को लेना कुछ नहीं है, मैं देख के खुश हो जाता हूँ। ये मैं बचपन में भी करता था, जब बचपन में कुछ मूवी डाउनलोड करनी थी होती है या फिर मूवी देखनी होती तो हम जाते थे ऐसे शॉप्स में, अब वहाँ तो ऑब्वियसली बहुत महंगे मिलते थे, सो वी जस्ट यूज टू गो देयर एंड देन वी यूज टू गो एंड आस्क माई फ्रेंड जो यू नो शॉप्स में होता है तो वो हमारे लिए सस्ते में परचेज अरेंज करके देता था, तो अमेजिंग यार अमेजिंग। सो ये ऐसे और भी चीज़ें यहाँ पे, कल मैंने एक चीज़ देखी है, एक ऑब्वियसली नई चीज़ नहीं है बट इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, प्लस किसी को गिफ्ट देनी है और किसी पे नज़र रखनी है तो ये दोनों एक चीज़ एक साथ रुकती है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि रिंग की तरह दिखती है बट दैट इज़ मोर लाइक जासूसी जासूसी खैर अलग वर्ड हो गया, बट दिस इज़ मोर अबाउट योर हेल्थ ट्रैक करने के लिए, जैसे अभी तक तो हमको लगता था कि फ़ोन के बाद घड़ी है ये जो आपकी हेल्थ को ट्रैक करती है, बट नाउ देयर इज़ अ रिंग जो आप अपने फिंगर्स में पहनते हैं और उस फिंगर्स के थ्रू यू नो वो जो रिंग है उसके थ्रू आप ट्रैक रख सकते हैं कि आपकी जो ब्लड वेन्स हैं उसकी वो सारी डिटेल आपको भेज देती है, लाइक हार्ट बीट हो गया या फिर आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है ये सारी चीज़ आपको बता सकती है, एंड ऑफ कोर्स द लोकेशन एज वेल, जैसे मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया है और पता करना है वो कहाँ पे है तो ये आप उसको दे दो वेल यस। वेल हमारे यहाँ पे सैंडी भी है, सैंडी से पूछता हूँ मैं, उस सैंडी क्या क्या यूज़ करेगी सैंडी, अगर आपको कोई वो रिंग देगा हाँ। तो आप उसको कैसे यूज करोगे,
1: कौन सी रिंग है ये?
0: तो बेसिकली दैट इज मोर लाइक अ हेल्थ ट्रैकर, ऐसा लोग बोले जा रहे हैं।
1: और जो है जो कोहली पहनता है ना,
0: है
1: विराट कोहली,
0: विराट कोहली और कोहली
1: नहीं और... विराट कोहली
0: कोहली
1: हाँ हाँ वही कोहली अगर तुम्हें प्रॉपर बोल रहे तो कोहली
0: कोहली उसका याद आ गया
1: अनुष्का शर्मा
0: कोहली चौका मारना चौका मारना
1: तो तुम उसकी बात कर रहे हो वो जो रिंग पहनते हैं,
0: आप क्या यूज करोगे उसका, लाइक इफ समवन गिफ्ट्स यू?
1: मैं तो फुल यूज करूंगी भाई, मैं ट्रैक रखना चाहती हूँ वॉक वगैरह के लिए, कितनी वॉक हो गई, कितने स्टेप्स हो गए,
0: आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो,
1: अरे दैट इज ओके, इसमें उनको टेंशन होनी चाहिए,
0: मतलब सामने वाले को
1: जिनको जो टेंशन वाला काम करते हैं,
0: अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है ऐसा नहीं हो कि उसके पास ऐप हो।
1: मेरे पास ऑलरेडी है एक, मेरे पास एक एयर टैग है, तो मेरे को जब मैंने सैमसंग का ये फोन लिया था तो दो तीन चीजें साथ में मेरे पास फ्री मिली थी,
0: एयर टैग दूसरे फोन का होता है
1: तो ये सैमसंग टैग जो भी था, हाँ वो सिर्फ टैग
0: ब्रांड है
1: लेकिन वो भी टैग वो भी ट्रैक करता है वो भी,
0: बट उससे बाकी सारी चीजें नहीं होती ना, जैसे उसमें से आप ट्रैकिंग ही कर सकते हो राइट, उसमें आपकी ब्रीथिंग का वो सही बता, लेकिन ये जो रिंग है आपकी ब्रीथिंग से लेके हर एक चीज बताता है।
1: या दैट्स रियली कूल,
0: मुझे एक्चुअली ना ये वो
1: स्लीपिंग पैटर्न सारा कुछ,
0: अभी मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था, स्लीपिंग पैटर्न का अभी तक तो कोई एक्यूरेसी आई नहीं है, बट देयर इज वन डिवाइस व्हिच आई एम ईगरली वेटिंग खुशबू की वजह से, कि खुशबू बहुत कंप्लेन करती रात को नहीं सुबह उठ के कि भाई तुमने मुझे सोने नहीं दिया, मतलब नॉट The other thing, but because of my sound system, और आजकल तो
1: तुम खराटे मारते हो,
0: हाँ
1: snoring करते हो काफी,
0: musically snore,
1: क्या बात है,
0: तो मेरा लड़का भी join कर रहा है मेरे को, not in snoring, but he wake up because of me, वो सो नहीं पाता खुद, फिर वो गाना गाता है, but बहुत cute लगता है, उसने video बनाई मेरे को, खुद को देख के गुस्सा आया मेरे को कि यार इतना वाहियात कौन सोता है भाई,
1: तो snoring वाला क्या तो device है कोई?
0: हाँ
1: जो कंट्रोल करेगा,
0: नहीं कंट्रोल नहीं करेगा, वो ट्रैक करके बताएगा
1: कि कब कब किया,
0: हाँ कब कब किया, मतलब मेरे को यकीन हो जाएगा
1: ना कि बता देगी ना वो ज्यादा अच्छी
0: के लिए लेना है मेरे को कि खुशबू सही बोल रही है एग्जैजरेट कर रही है,
1: ऐसे ही है,
0: तो उस चीज से मुझे पता पड़ जाएगा कि सचमुच कौन सच है, कौन यू नो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बट यार टेक्नोलॉजी इज गोइंग जस्ट ऑन अनदर लेवल है। आपको क्या लग रहा है सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी इन रिसेंट डेज?
1: रिसेंट डेज में AI वगैरह को छोड़ के ना
0: anything
1: मुझे recent days में तो
0: hardware में
1: okay वो hardware में
0: hardware
1: ring I will say I've been talking about it a lot
0: right.
1: मैंने देखी भी है recently different colors में आती है platinum में आती है
0: वो colors बहुत है हाँ
1: yeah वो colors बहुत है तो मुझे लगता है कि जिनको ट्रैक करना है और जिनको वॉच जो ज्यादा नहीं पहन सकते हैं,
0: नॉट लिटरली कि आप ट्रैक करने के लिए ही ले रहे हो, क्योंकि जो लेगा उसको भी, वो भी तो स्मार्ट होगा ना।
1: ट्रैक मतलब कि खुद की जैसे स्टेप्स वगैरह, हेल्थ को अगर आपको ट्रैक करना है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। और मैंने बहुत लोगों को आजकल वो रिंग पहने हुए देखा।
0: एक्चुअली मैंने देखा ना, ये रिंग इज बेटर देन द वॉच, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वॉच हर दिन आपको पहननी वो करनी पड़ती है।
1: या मतलब रिंग इज वेरी कन्वीनियंट कि उठाओ और पहनो।
0: नहीं रिंग वो भी है, प्लस रिंग यूजुअली मैंने देखा है कि लोग उतारते नहीं है। मैं जितना पहना है मैंने कभी उतारी नहीं रिंग, बट वॉच इतनी बड़ी होती है दैट जब सोते भी हो आप, वो कभी आपका हाथ बॉडी के नीचे जाता है तो इट इज वेरी अनकंफर्टेबल।
1: ओनली थिंग आई एम नॉट श्योर इज कि जो रिंग है ये पानी के अंदर इज इट ओके और नॉट।
0: नहीं, अगर वो उस ब्रांड ने बनाई, जिस ब्रांड ने बनाई, आई फील लाइक दे प्रीटी मच मेक अ लॉट ऑफ वाटरप्रूफ थिंग्स, सो कुड बी बट गुड पॉइंट। But thank you Sandy.
1: All good.
0: And nice crossover. So aap kahin mat jaiye, mera to time ho chuka hai. I will see you tomorrow same time 12 se 3, but abhi Sandy judne wali for the coffee break. But main milta hu kal, tab tak ke liye bye bye, take care and love you.

अरे गुट में स्वैग है। अरे गुट में स्वैग है।

0: with Kaitan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत तो बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो.
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: When school is out and the kids are spent,

0: To football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup, and that was ugly. Not the song, the fact that the All Whites have lost 4-0 to Haiti in the World Cup warm-up match in Florida. And India's cricketers are coming on a 12-match, 6-week cricket tour starting late October. There are 5 T20s, 5 ODIs and 2 test matches. And in an hour, the teams for the Super Rugby Pacific qualifying finals this weekend are released.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: मौसम के हालचाल मेट्रोलॉजी के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 16.5 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम इज ऑलमोस्ट फाइन, कुछ बीच में क्लाउडी है, बारिश होने के चांसेस भी है. सनसेट 5:13 पर.
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
4: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
3: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी. एंड अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में. 4 के बाद यहाँ पे मेरा साथ रुजवे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट इज़ 3rd June. अगर आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. या फिर आज आपकी एनिवर्सरी है, खास दिन है, अ वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. वैसे आज एक मैसेज भी आया है, इन्होंने बोला है कि दे ग्रेजुएटेड टुडे. सो वाओ, स्टिल लर्निंग एवरी डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. सो आपके लिए कुछ खास दिन है तो इसके बारे में आप भी शेयर कर सकते हैं 5599 पर.

0: 3:11 हो चुके हैं फिलहाल. कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड ऑकलैंड के ही टीम ने जीता है एप्पल ग्लोबल कॉम्पिटिशन. वेल रिसेंटली ये न्यूज आई थी, अगर आपने मिस आउट की है. एलेक्स, इनका नाम है एलेक्स लियांग, जो कि स्टूडेंट है फ्रॉम ऑकलैंड वेस्ट लेक बॉयज हाई स्कूल. वेल ही हैज बीन नेम्ड वन ऑफ द ग्लोबल विनर्स ऑफ एप्पल्स स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज. एक वर्ल्ड वाइड कोडिंग कॉम्पिटिशन था जिसे एप्पल ने रन किया था. एंड ही वॉज ओनली न्यूजीलैंडर अमंग द विनर्स इन 2024 एंड कंटिन्यू टू इम्प्रेस विद सब्सिक्वेंट एंट्रीज. तो इस साल में भी यही विनर रहा है जिसने क्रिएट क्या किया. एलेक्स ने डेवलप किया है एक स्टार गेजिंग एंड एस्ट्रोनॉमी थीम्ड एजुकेशनल ऐप जो कि बच्चों को सिखाती है अबाउट स्पेस एंड सोलर सिस्टम इन अ वेरी इंट्रैक्टिव वे. तो ये जो ऐप है ये हेल्प करती है यूजर्स को टू लर्न अबाउट द प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी, इंगेजिंग विजुअल्स, गेम प्ले, ये सब कुछ है. सो जैसे कि एक बच्चे का माइंड सीखता है ना, खेलते खेलते सीखना, उस वे से इन्होंने इस ऐप को बनाया है. एंड द एजुकेशन इज़ अबाउट द प्लैनेट्स. सो ही वन दिस अवार्ड. ही कम्बाइंड हिज पैशन फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड कोडिंग एंड देन प्लान टू डोनेट द ऐप टू ऑकलैंड स्टारडोम ऑब्जर्वेटरी एंड प्लैनेटेरियम ताकि जो यंग लोग हैं इनको हेल्प हो सीखने में एंड और भी चीज़ें जो है ये आसान करने के लिए. दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग दो. वेल आप अगर पेरेंट है तो आपने कभी नोटिस किया है कि आपके बच्चे का किस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट बैठ रहा है. सो हाउ डू यू इवन नोटिस दैट, राइट? कई बार बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं और उनका कई बार अटेंशन स्पैन जो होता है बहुत कम भी होता है. वो एक चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड देन आफ्टर अ वाइल मे भी वो चीज़ वो नहीं करेंगे. तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? आपने, आपके बच्चे ने कभी कोई सी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया है एंड आपने मे भी उसके बारे में अरेंजमेंट किया, कुछ लाके भी दिया, बट देन उनका इंटरेस्ट ऑफ हो गया बिकॉज इट वॉज जस्ट अ टाइम बींग इंटरेस्ट. ये सिमिलर स्टोरी है आपके पास तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं. या फिर उल्टी स्टोरी है कि आपने लाके दिया और आपके बच्चे ने उसके ऊपर काम किया एंड दे गॉट समथिंग आउट ऑफ इट. 0800 हम पर आप शेयर कर सकते हैं या फिर मैसेज करके 5599 पर कि हाउ डू यू इवन मोटिवेट योर किड्स टू डू अ स्पेसिफिक थिंग्स. आप उनके लिए कुछ लेके आते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि उनका इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, ये चीज़ करने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है. मुझे लगता है इसमें स्कूल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नॉट जस्ट अ पेरेंट्स. स्कूल में बच्चे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है. सो स्कूल प्लेज़ अ बिग रोल किसी भी बच्चे की लाइफ में. एंड देखा जाए तो बहुत सारे आवर्स जो है आपका बच्चा जो है ये स्कूल में स्पेंड करता है. सो एक घर में मे बी कम आवर्स स्पेंड होते होंगे लेकिन स्कूल में टीचर्स के साथ जो आवर्स है वो एक्चुअली में ज़्यादा स्पेंड होते हैं. सो आप भी शेयर कीजिए आपका क्या व्यू है, आपके बच्चे ने कुछ ऐसा किया, आपने उनके लिए कुछ लेके आए. 0800 हम पर या फिर मैसेज करके 5599 पर. कॉफी ब्रेक विद सैंडी. उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती है और सब बस्त कर देते सब.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, sirf Rova par.
1: Here for all things Brinter. Sniffles on the sofa. Frosty footy games. Oh, riff. Cozy evenings with hot soup. And roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
2: Kiwi kids are active kids. Creative kids. Sporty kids. Are you a wee bits kid?
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ। अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
3: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: 3:18 हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। यू नो, हमने रिसेंटली जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था विद दिल शेर शेंकी, जो कि WWE में परफॉर्म कर चुके हैं, एंड वापस उनका सपना है दोबारा से WWE में जाने का। एंड एक ऐसे है, वेरी फ्यू इंडियंस है जो कि एक्चुअली में WWE में गए हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। शेंकी सिंह वैसे इनका नाम है। इन्होंने हमारे साथ जो पॉडकास्ट किया, बिकॉज वी वर लक्की कि वो न्यूजीलैंड में आए हुए थे, वैसे वो इंडिया से हैं, एंड वो मेलबर्न में एक्चुअली में अपनी एक फ़ाइट के लिए आए थे, एंड न्यूजीलैंड में वो एक फ्रेंड से मिलने के लिए आए थे, जिससे वी गॉट लक्की कि हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, जहाँ पे WWE के रियल फैक्ट्स। जब WWE की फाइट्स देखते हैं, उसमें कई बार आप ब्लड देखते हैं एंड यू आर लाइक कि यार ये स्क्रिप्ट है या क्या है, चल क्या रहा है वहाँ पे। यू नो, कभी कभी एक फ़ाइट दूसरी फ़ाइट अलग होती है। WWE की फ़ाइट इज़ मोर ऑफ लाइक जैसे हम एक मूवी का क्लाइमैक्स सीन देख रहे हैं, जिसमें विलन और हीरो के बीच में फ़ाइट हो रही है, वैसे वाले सीन्स, ड्रामेटिक सीन्स हम देखते हैं। वेल, विलन हीरो कौन है वो उनके फैंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसके पीछे कहानी क्या है, ये शेंकी सिंह ने हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स बताया, फ्रॉम गेटिंग इनटू WWE, कैसे वहाँ पे एंट्री मिलती है एंड वहाँ पे क्या क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है, वो भी उन्होंने शेयर किया। थोड़ा सा बिट वैसे उन्होंने यहाँ पे शेयर किया अबाउट जो ब्लड आता है, यू नो, फाइट के समय पर, स्पेशली इन WWE, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ उन्होंने शेयर किया, आपको सुनाते हैं।
1: जो पहले WWE खेलते थे, आपने वो फिनले का नाम सुना है? फिनले रेसलर होता था, ग्रीन कलर का वो कॉस्ट्यूम डाल के आते थे। तो आज वो कोच थे, वो मेरे को ट्रेन करते थे WWE में। तो वो अलग अलग है, वो कोचिंग है, मतलब वो ट्रेन करते हैं प्रॉपर। तो रिस्क बहुत होता है इसमें, कहीं भी अगर चोट लग, अभी अभी आप देखो, अभी मैंने जस्ट देखा, पहले जो ब्लड होता था, ब्लड आता था वो थोड़ा नकली होता था उस टाइम, अभी जो वो बंद कर दिया उन्होंने, अगर आप आज की डेट में ब्लड देख रहे हो ना, वो प्रॉपर रियल है, प्रॉपर रियल है, क्योंकि सामने वाले ने आपको गलत पेला है, मारा है मतलब। अभी ब्रोन ब्रेकर और सेथ रोलिंस का ब्रोल हुआ था अभी जस्ट रिसेंटली, ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो उसको पीठ में मारनी थी चेयर, बहुत जोर की, वो तो बजती है, वो सारा हिल जाता है बंदा जब चेयर पड़ती है, क्योंकि वो प्रॉपर स्टील की चेयर है। वो पीठ पे मारनी थी लेकिन वो सिर पे लग गई, और सारी अभी देखिए वो क्लिप देखना, पूरा ब्लीडिंग है उस पे। तो ये थोड़ी ना कि भी अगर ब्लीडिंग निकल गई तो हम बैठ गए, यार नहीं नहीं यार खून निकल गया यार, नहीं, वो हमें पता है वो कभी भी हो सकता है।
2: वो पैनिक, फिर वो जिसने मारा वो भी पैनिक कर लेगा ना कि वो मैंने मार लिया,
1: मतलब नहीं नहीं वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि हो जाता है ये तो रेसलिंग है, गलती किसी से भी होती है, क्योंकि
0: वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माइंड है। सो इसके साथ और भी बहुत कुछ इन्होंने शेयर किया एंड बहुत सारे फैक्ट इन्होंने बताए अबाउट WWE। मस्ट लिसन पॉडकास्ट है गाइज, कभी भी आप किसी भी फाइट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, सो यू नो एनी काइंड ऑफ फाइट, जैसे बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती होगी, कुछ भी हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन जो है थ्रू जाता है टू रीच देयर, उस चीज़ के लिए भी। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी ये आपके लिए बन सकता है। टाइप ड्राइव ऑन 5599, तो आपको फुल ऑडियो एंड वीडियो दोनों लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑडियो सुननी है वॉक करते करते, गाड़ी चलाते चलाते, या फिर इधर उधर अपने ऑफिस में काम करते समय, तो ऑडियो सुन सकते हैं। अगर आपको देखना है दिलशेर शेंकी को, शेंकी सिंह को, तो वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच द पॉडकास्ट एज वेल।
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम। ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

हाफ पास थ्री हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। एंड ट्रेल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बातें करते हैं तो दे आर फ्यू ट्रेल्स जो कि एक्चुअली में आप जाके इंजॉय कर सकते हैं इवन इन नॉर्थ ऑकलैंड। एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी, नॉर्थ ऑकलैंड में भी कुछ ट्रेल्स है, दे आर नॉट एज बिग ट्रेल्स एज वेस्ट ऑकलैंड। ईस्ट ऑकलैंड, साउथ ऑकलैंड में भी है, लेकिन बड़ी बड़ी ट्रेल्स आपको वेस्ट ऑकलैंड में ही मिलेगी। नॉर्थ ऑकलैंड में लॉन्ग बे रीजनल पार्क के पास एक्चुअली में ये एक ट्रेल है जो आप कर सकते हैं, जिसका नाम है ओकुरा बुश वॉकवे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोस्टल हाइक्स इन ऑकलैंड, बिकॉज नॉर्थ शोर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वहाँ की ये जो कोस्टल वॉक है ये काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आपको बीच मिलेगी, रस्ते में क्लिफ्स मिलेंगे, फार्मलैंड होगा, नेटिव बुश होगी, काफ़ी अच्छे आपको व्यूज़ मिलेंगे। इट इज़ बेस्ट डन अराउंड लो टाइड, सो इट्स पॉपुलर विद ऑकलैंड हाइकर्स, एंड इसे एक्चुअली में नॉर्थ शोर वॉक में टॉप में रिकमेंड किया जाता है। डिफ़िकल्टी इसकी मॉडरेट है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी वॉक, मॉडरेट है, लेकिन इसका टाइम काफ़ी लगता है, तो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रॉम 2.5 to 4 hours रिटर्न है। सो डिपेंडिंग आप कितनी ब्रेक्स ले रहे हो, किस स्पीड पे चल रहे हो, वहाँ पे एक पॉइंट पे रह के एक पॉइंट पे रह के आप रुक रहे हैं या फिर नहीं रुक रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो तकरीबन 2.5 to 4 hours टोटल रिटर्न वॉक है ये, सो यू नीड टू हैव अ गुड डे एंड गुड टाइम इस वॉक को करने के लिए। इसका नाम है ओकुरा बुश वॉक वे, जो कि लॉन्ग बे रीजनल पार्क के पास।

0: दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Oh no, we'll be late.
2: We'll be all right. I'll call the AA.
3: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today.

3:41 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड अगर आपने कभी थिएटर देखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉट द सिनेमा, लेकिन प्रॉपर थिएटर जहाँ पे आप जाके प्लेज जो है ये लाइव देखते हैं. सो अगर देखा है तो ये एक प्ले जिसके बारे में बताने वाली हूँ ये मस्ट वॉच है. और अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आई विल से कि गो एंड एक्सपीरियंस अ थिएटर. आपको एक थिएटर जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, देन यू विल रियलाइज मैनी थिंग्स अबाउट द एक्टिंग, अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो. बिकॉज थिएटर जो एक प्ले होता है आपके सामने लाइव चल रहा होता है, उसमें कोई टेक्स नहीं है, उसमें कोई रीटेक्स ही नहीं है. मतलब उसमें कोई सीन कट नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ लाइव आउट देयर. सो कोई कट नहीं वहाँ पर कर सकते, कोई सेकेंड चांस किसी को नहीं मिलता है, बिकॉज एक ही बार सबके सामने परफॉर्म करना है. सो द प्रेशर इज रियली हाई. हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो कि थिएटर से निकल के बाद में मूवीज़ की ओर गए हैं, जिसमें इरफान खान का नाम भी आता है एंड मैनी अदर्स. वेल, इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप ही की सुपर सिटी में एक बहुत ही सुपर थिएटर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है. इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए बैलून डॉग ये एक प्ले लेके आए हैं. बैलून डॉग जो है इसे जैकब राजन एंड जस्टिस ल्यूस इन्होंने लिखा है, जो कि अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है जैकब राजन. सो बैलून डॉग जो है इट्स बेसिकली इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स स्टोरी काबुलीवाला. काबुलीवाला आपने ये कहानी पढ़ी होगी या देखी होगी. इसके अराउंड मुझे लगता है एक सीरीज़ भी है, यू नो नेटफ्लिक्स पे एक वो सीरीज़ है जिसका नाम है रविंद्रनाथ स्टोरी, समथिंग सिमिलर नाम है कुछ. एंड उसमें रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी कहानियाँ हैं. एंड उसमें राधिका आप्टे भी है एक कहानी में. सो देयर मेनी स्टोरीज. मुझे लगता है कि शायद काबुलीवाला मैंने वहाँ पे देखी थी, बट इज समवेयर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच टेल्स अ फ्रेंडशिप बिटवीन अ किड एंड अ मैन, जो कि चीज़ें सेल करने के लिए काबुल से आता है वहाँ पे, तो इसीलिए उसका नाम है काबुलीवाला. बट ये जो कहानी है, ये जो थिएटर है जो इसे इंस्पायर्ड है, दिस इज़ इन 21st सेंचुरी ऑकलैंड. तो इस कहानी को नया मोड़ दिया गया है, 21st सेंचुरी ऑकलैंड दिखाया गया है, जहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप दिखाई है बिटवीन अ 5-year-old गर्ल एंड अ लोनली माइग्रेंट वर्कर. एंड जिससे बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, अनकम्फर्टेबल ट्रूथ सामने आते हैं एंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. आई विल बी एक्चुअली रियली इंटरेस्टेड टू गो एंड वॉच दिस थिएटर. सो इसका पहला जो प्रीव्यू सीजन है ये सोल्ड आउट किया था. एंड यू कैन एक्चुअली गो विद योर फ्रेंड्स एंड आप इसको इंजॉय कर सकते हैं. की थिएटर में ये होने वाला है 3rd June से लेके, चूँकि आज से शुरू हो जाएगा, 20th of June तक. सो एवरी डे वो जो थिएटर है वहाँ पे होने वाला है. सो टू बुक योर टिकट यू कैन गो टू iticket.co.nz. एंड अगर आप टिकट यहाँ पे जीतना चाहते हैं, यू हैव अ चांस टू विन अ डबल पास ओवर हेयर एज वेल. इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे BD एज इन की बैलून डॉग BD स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर. सो BD स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599 एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे यू कैन विन अ डबल पास फॉर दिस ब्यूटीफुल थिएटर.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: चार बजकर दो मिनट हुए हैं। गुड आफ्टरनून, यू आर लिस्टिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़्बे। दोनों की हालत थोड़ी टाइट है, लेकिन हम यहाँ पे आ गए हैं आपको उत्साह देने और मोटिवेट करने कि चाहे कुछ भी हो, काम चलना चाहिए।
4: The show must go on. राज कपूर ने बोला था।
3: Yeah.
4: So how are you feeling, रिज़्बे?
3: I'm feeling much better today, Sandy. How are you feeling?
4: मैं लॉन्ग वीकेंड पे बहुत सही थी।
3: हाँ, ये काम करने के टाइम पे खांसी आ जाती है ना।
4: आई नो मैन,
3: आई नो,
4: मुझे लगता है कि पूरा का पूरा स्टूडियो
3: ये देखो
4: सैनिटाइज करना पड़ेगा।
3: हाँ, आई एंड वी शुड स्टार्ट विद यू।
4: Yeah, sanitize me out. I'm happy to take a break.
3: No, we can't afford a break.
4: Yeah.
3: लेकिन मेरा आवाज आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा मफल्ड आवाज आ रहा है ना थोड़ा?
4: तुम्हारा आवाज अच्छा आ रहा है।
3: अच्छा आ रहा है।
4: हाँ,
3: वो शायद मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से।
4: तो क्या?
3: मेरे वो जम गया है ना पूरा।
4: हाँ,
3: हाँ, होता है ना कि आपको ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली ऐसा।
4: या,
3: anyway, ऐसा आपको कैसा लग रहा है हमारा आवाज, प्लीज बताना हमें यहाँ पे। मुझे तो हिमेश वाला फील आ रहा है। मेरे को लगता है एक हाथ दो हिमेश के गाने आज अगर मैं गा लूं तो मजा ही आ जाएगा।
4: बहुत टाइम है तुम्हारे पास।
3: बहुत टाइम है आज मेरे पास।
4: हाँ, तुम गा सकते हो। वैसे मैं बता दूं, आज थर्ड है, कल फोर्थ है, एंड टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस।
3: ओह यस,
4: इट्स द 4th जून गाइस, एंड 4th जून का मतलब है कि न्यूजीलैंड रेडियो एंड पॉडकास्ट अवार्ड होने वाला है कल, जिसमें हम दो कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है। तो वी आर हैप्पी नॉमिनेटेड में, लेकिन अगर किसी एक में कुछ मिल जाते तो वो विल बी मोर हैप्पी आई विल से।
3: अच्छा,
4: हाउ इज दैट?
3: ग्रेट, गुड गुड गुड गुड वे ऑफ पुटिंग इट थ्रू। जीतना है लेकिन हमको।
4: क्या लगता है आपको कि कल इस टाइम पे तो शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे परसों शेयर कर पाएंगे?
3: परसों शेयर कर पाएंगे। बट क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम हारे जीते इससे कुछ आपको फर्क पड़ने वाला है? मतलब लाइक डू यू थिंक?
4: मुझे तो नहीं, तो हल्का सा पड़ेगा मेरे को लगता है एक दिन के लिए, उसके बाद ठीक हो जाऊंगी।
3: एक ही दिन?
4: हाँ, एक दिन इज फाइन ना।
3: मुझे तो एक दिन तो मैं रेडियो पे बोलूंगा, फिर मैं वीकेंड पे प्रॉपरली ड्राफ्ट करूंगा, फिर मैं लिंक्डइन पे अपडेट करूंगा, फेसबुक पे अपडेट करूंगा,
4: इंस्टा
3: पे, हर जगह अपडेट करूंगा।
4: देन यू बी फाइन,
3: देन आई विल फील बेटर। लेकिन ये देखो, ये ख्याली पुलाव अब तक कभी हमने किया, पहली बार ड्राइव शो नॉमिनेट हुआ है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं ड्राइव शो के लिए।
4: ये शो हमारा नॉमिनेट हुआ है फॉर द बेस्ट एशियन लैंग्वेज प्रोग्राम, एंड इट्स अ बिग थिंग। एंड यू नो, एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम बड़े से बड़े लोगों को, यहाँ के ब्रॉडकास्टिंग के लोगों को देखते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे अगर हम जा रहे हैं, नॉमिनेटेड हैं, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज ऑफ आवर लिसनर्स रिज़्बे।
3: या, एंड योर एप्लीकेशन एज़ वेल। आपने मेहनत किया ना पूरा वो डालने में, वो सबमिट करना पड़ता है पूरा ना।
4: ओह या,
3: हां हां, बहुत मेहनत जाता है।
4: ओह या या या, 100%। या,
3: एनीवे, और भी बातें करेंगे आपके साथ, आप तो कर रहे नहीं हो हमें कॉल यहां पे, तो हम खुद से बात कर लेंगे अभी। आप सुनिए ये बढ़िया सा गाना, और उसके बाद माय फेवरेट हिमेश रेशमिया फॉर यू।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे हम लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी ले आते हैं.
1: Yes, and आपको बताते हैं कि आपकी सुपर सिटी में क्या क्या हो रहा है. वैसे आपको यहाँ पे टिकट जीतने का मौका मिल रहा है, एक कॉमेडी शो हो रहा है रुजबे सुपर सिटी में, एंड जहाँ पे आप पासिस जीत सकते हैं. ट्राइविजन इवेंट्स लेके आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर को यहाँ पे.
0: जी, द ग्रेट कॉमेडी नाइट ये होने वाला है, एंड उसके लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे डबल पास जीतने के लिए तो उसका मौका भी हम आपको देंगे. बट यार, न्यूजीलैंड में पहली बार कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव. bookmyevent.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. और अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है तो 02104327200 पे आप कॉल करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके लिए.
1: या सो फॉर नाउ आपको क्या करना है, अगर आपको इस ड्रॉ में शामिल होना है जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है, आपको एक सिंपल से सवाल का जवाब देना है 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ.
0: अच्छा,
1: या सवाल तुम पूछोगे जा मैं पूछूं?
0: नहीं नहीं, आप पूछो. आई अलाउ यू.
1: ओके,
0: लेडीज फर्स्ट.
1: ओ या, लेडीज फर्स्ट बाय द वे एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे, अगर तुमने नहीं देखी है ना, देखना. वेरी नाइस, बताऊंगी इसके बारे में भी.
0: ओके, ठीक है.
1: सो
0: ओ, लेडीज फर्स्ट मेरे को पता है, वो बहुत भारी मूवी है वो. वो अलादीन वाला उसमें एक्टर है ना.
1: या आई थिंक सो.
0: वही है,
1: वही बात कर रहे हो ना जिसमें सोसाइटी बदल जाती
0: फुल
1: है,
0: बदल जाती है, उलट पुलट हो जाती है.
1: या
0: क्रेजी मूवी है वो,
1: बहुत ही ज्यादा. सो एनीवे, फिलहाल ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपको करना क्या है, ड्राइव कीवर्ड के साथ आपको बताना है कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ने साथ में किस शो में काम किया है. 5599 पर. सो कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर दोनों ने साथ में किस शो में कॉमेडी की है, काम किया है, साथ में कहाँ पे अपेयर हुए हैं वो.
0: इतना बढ़िया सवाल रेडी था आपके पास, तो मेरे को क्यों स्पॉट पे डाला.
1: अरे
0: इतना भारी सवाल है यार ये. What a difficult question also.
1: Very difficult question, right? So, drive keyword
0: के साथ. The great comedy night लेकर आ रहे हैं कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर.
1: And राजीव ठाकुर.
0: बताइए कौन से शो में उन्होंने साथ में काम किया है.
1: Actually में दो शो है.
0: दो शोज है.
1: दो शोज में साथ में काम किया है.
0: ठीक है, बताइए यहाँ पे फटाफट 5599 पे drive keyword के साथ. And you can get a double pass ना.
1: Yeah.
0: Double pass के draw में. Daily dose of wisdom, wit and wild conversations.
2: The Drive Show with Sandy and Rizbe. आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए.
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब, क्या
6: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
5: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
7: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
3: वीकडेज 6 to 10 a.m.
8: Professional Financials है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
10: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
11: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
12: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना.
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
14: And award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
15: Kahani of Indelible Homes.
16: TradeDepot.co.nz. Trade Depot now helps people in Auckland save hundreds on hardware. Double power points, $7.
17: Clear silicone sealant, $4. Painter masking tape, $2. Stainless steel flexi hoses, $4. Save hundreds on hardware, tools, plumbing, electrical and paint supplies. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online. TradeDepot.co.nz.
18: Oh my, oh my, Great South Road, greater than ever.
19: South Auckland's buses just became a lot better.
18: Weymouth Road, way better buses.
19: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
18: Woody, no worries. MIT, A-OK.
19: Search AT Better South Auckland Buses for details.
18: Airport, got your transport.
19: Then turn up and go.

0: कॉकटेल 2 का ये गाना आप सुन रहे थे, राघव चैतन्य महमूद और उनके साथियों की आवाज में। बहुत ही बढ़िया ये गाना, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कॉकटेल 2 का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जो हम कोशिश करेंगे आपके लिए लेकर आए।
1: थोड़ी देर में टेंशन डाउन, थोड़ी देर,
0: क्या है आवाज था ये? ओके,
1: कान से आ रही वाली थी रोका में, ये वो आवाज थी।
0: अच्छा
1: यार, ट्रेलर जो गाइस देखो ना, एक तो
0: देखो सैंडी की आवाज गई है, फिर भी वो मेहनत कर रही है, काम कर रही है। आप ऐसे हंसो मत उसके ऊपर,
1: तुम मत हंसो मेरे पे।
0: मैं किधर हंसो सैंडी, आप ही हंस रहे हो यार।
1: तुम उसको इग्नोर भी कर सकते थे।
0: मैंने इग्नोर ही किया, आपने उसको और ज्यादा बढ़ाया।
1: एनीवे
0: फिर से करके दिखाओ ना वो आवाज जिसने मिस आउट कर लिया।
1: समथिंग लाइक दैट, इतनी बुरी भी नहीं थी।
0: अच्छा,
1: कॉकटेल 2 का ट्रेलर थोड़ी देर में हम प्ले करेंगे, अगर वो प्ले करने लायक हुआ तो।
0: We
1: have to just double check it.
0: Yeah, we have to make sure.
1: But फिलहाल you got some sad news.
0: Sad news नहीं, मतलब अभी All Whites को बहुत ही बुरी तरह बीट किया हाइटी ने इन वर्ल्ड कप वार्म अप मैच। ऐसा कह रहे हैं कि वर्स्ट लॉस इन 9 years।
1: वाओ,
0: और ये पहला वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच था 16 जून को एक्चुअली न्यूजीलैंड टाइम। ऑल व्हाइट्स आर गोइंग टू फेस ईरान इन देयर फर्स्ट फीफा मैच।
1: ओके, और कहां ये वाला मैच, एनी आइडिया कहां पे हो रहा है?
0: ये पूरा यूएस में हो रहा है वर्ल्ड कप, बट ये वाला मैच फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा।
1: ओ, फ्लोरिडा में हो रहा है। ओके,
0: फोर आईटी 4, हाँ ऐसा कुछ तो भी। ऑल व्हाइट 0, मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट डिफीट इन 9 years, 4-0 लूज किया इन्होंने।
1: सो
0: इंटर मायामी स्टेडियम इन फोर्ट लॉडरडेल।
1: ओके,
0: फोर्ट लॉडरडेल नाम है भाई।
1: ओके, मुझे लगा पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहे हो
0: ना, तो फिर से मेरे को बोलेंगे आई यू नीड टू हेजिटेट, नाम है ऐसा लॉडरडेल।
1: तो बार बार क्यों बोल रहे हो?
0: अरे बट है ना, मैं
1: 5 बार बोल सकते हैं क्या तुम सही से?
0: नहीं, मैं बोल दिया अभी 2-3 बार।
1: ओके, फीफा 2026 की अपडेट्स भी वैसे यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे वर्ल्ड कप की, कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं। अगर आप किसी टीम को अदर देन ऑल वाइट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बढ़िया, टिंसल टाउन की न्यूज आपके लिए बस थोड़ी देर में।

अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए 5 बजे तक होता है. 5 के बाद यहाँ पे पावर ड्राइव एट 5 शुरू होता है. और आज क्या ट्यूसडे नहीं वेनसडे आज.
2: या
1: ओह आज वेनसडे मतलब आज हम
0: सिचुएशनशिप
1: लेकर आएंगे आपके लिए.
2: yes.
1: 5 बजे के बाद जहाँ पे आप हमें एक सिचुएशन दोगे और उस सिचुएशन के ऊपर हम फिर आपको डालेंगे और फिर आप बताएंगे हमें इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे.
2: सो वो सिचुएशन भी आपके लिए लेके आएंगे. लेकिन फिलहाल आपके लिए हम ट्रेलर लेके आए हैं टिंसल टाउन में कॉकटेल 2. इस मूवी का जो ट्रेलर है ये आ चुका है. काफी बातें हो रही है इसके बारे में. इट्स अबाउट फ्रेंडशिप लव. काफी क्यूरियस है. सो लेट्स सी. इसका म्यूजिक अच्छा होने वाला है. एक गाना तो डेफिनेट इसमें रीमेक है फ्रॉम द कॉकटेल मूवी
1: और बहुत बढ़िया लग रहा है वो भी
2: जो आप ट्रेलर में सुनेंगे.
1: एक्चुअली में काफी गाने बहुत बढ़िया है.
2: Yeah.
1: बाकी वो माशू का भी अच्छा गाना है.
2: माशू का जो आप ऑलरेडी सुन रहे हो इट्स ऑलरेडी अ नाइस सॉन्ग.
1: एक और कोई गाना आया था उनका वो भी काफी अच्छा था.
2: या सो प्यार दोस्ती इन सब चीजों की ऐसा कंफ्यूजन है इस ट्रेलर में. बट तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. आई विल से शाहिद कपूर इज लुकिंग फैब. कृति सैनन बहुत अच्छी लग रही है. बहुत डिफरेंट लग रही है.
1: वो रश्मिका मंदाना
2: वो वैसे ब्यूटीफुल है. सो तीनों एक्चुअली में बहुत अच्छे लग रहे हैं.
1: तीनों बहुत स्ट्रांग है.
2: वेरी स्ट्रांग एक्टर्स.
1: सो लेट्स चेक आउट द ट्रेलर.
3: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना एक्साइटिंग होता है. क्यों नया होता है. नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती. पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं. लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं. और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सलूशन रह जाता है.
4: Like a threesome?
1: बहुत ही बढ़िया लोकेशंस है सर. And it looks to be a very fun movie.
5: For your handsome boyfriend.
3: No, I'm not her.
6: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो. इतनी बुरी हूँ मैं.
3: मैंने तो ये सोच के कहा था कि तुझे बुरा ना लग जाए.
5: पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं.
6: कपड़े पहन के कौन सोता है.
5: तो वैसे ही
6: ट्राई करना. योर गर्ल्स एंड योर बॉयज. वेल थैंक यू बेबी. यार इट्स टू लेट.
3: मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था.
6: रियली
3: व्हाई नॉट.
1: पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया है वैसे मूवी का.
2: Dressing and everything is really cool.
1: Yeah, very cool. Location बहुत बढ़िया लग रहा है यार.
3: तू अब तक सिंगल कैसे.
6: जो जब तक है तब तक है. ये forever वाली बकवास है. तुम बोली सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है. राइट.
1: एक्सपायरी डेट के बाद दवा जहर बन जाती है.
2: हाँ कभी भी नहीं चाहिए.
6: इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
7: वो कुछ कर तो नहीं लेगा ना.
8: हमारी बेवकूफी पे वो अपनी जान क्यों लेगा.
7: जान लेगा.
8: What is wrong with you. तू सीधा सुसाइड पे पहुंच गई.
7: और क्या मतलब सब कुछ करेगा.
8: अरे मुझे नहीं पता. चिल्लाने मत तेरे एमसी के नाम. क्यों नहीं ड्रिंकिंग.
9: मां दुल्हन के लिए मेकअप.
1: तो क्रेजी कंफ्यूजन और क्योस है इस मूवी में.
2: दोनों ही दुल्हन बन जाती है.
1: हां ऐसा कुछ
2: दुल्हन के मेकअप में दोनों है.
1: थोड़ा क्रेजी है ये मुझे लग रहा है.
2: सो फार ट्रेलर में जो दिखाया गया है वो कपिल देव.
1: बताओ बताओ
2: वो कपल दिखाया है.
6: सादा कर रहे तेरा.

0: मैंने कहा हीरा मिल ही गया है तो बोली लगा ले।
1: मैं हीरा नहीं कोहिनूर हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे खरीद।
2: जून को ये रिलीज होने वाली है मूवी और ऐसे लग रही है बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स टू बी अ वेरी अपीलिंग मूवी,
0: फन मूवी लग रही है। सो मैं बोल रही थी कि कपल इस ट्रेलर में जो सो फार दिखाया है रश्मिका और शाहिद कपूर का दिखाया है एंड कृति सैनन का जो करेक्टर है वो फ्रेंड ऑफ रश्मिका है। सो वहां पे ट्विस्ट क्या है
2: अब ये आपने ये सिर्फ ट्रेलर पे से जज किया है,
0: ये ट्रेलर में दिखाया है ना कपल तो वही दिखाया है।
2: हाँ, kind of, yeah.
0: कपल तो रश्मिका और शायद कोई दिखाया है, कृति सैनन का दिखाया है,
2: वो थर्ड व्हील है,
0: थर्ड व्हील है एंड या कृति सैनन का मोर इंटरेस्ट दिखाया है ऑन शाहिद कपूर देन शाहिद कपूर का इंटरेस्ट ऑन कृति सैनन।
2: ऐसा बोलते हो क्या?
0: ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी बाकी जो मूवी आती है तो ऐसा मेरी प्रेडिक्शन है।
2: 19 जून को मूवी रिलीज होने वाली है सो लेट्स सी कितने लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए।
0: या आप भी बताइएगा कि अगर आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड
2: हैं। अच्छा है, ट्रेलर बहुत लेट निकला ना इस मूवी का,
0: तो इन्होंने उल्टा किया ना। पहले क्या होता है कि ट्रेलर आता है गाने आते हैं, इन्होंने उल्टा किया, गाने पहले रिलीज किए और ट्रेलर बाद में।
2: राइट, तो अलग वेज है। एक्चुअली लव फिल्म्स की मूवी है, लव फिल्म्स वही है जो प्यार का पंचनामा और वो सोनू की टिट्टू,
0: सोनू की टिट्टू की स्वीटी,
2: ऐसे सारे मूवीज जिन्होंने बनाए थे, काफी हिट मूवीज रहे मोस्टली
0: एंड एक्चुअली मसाला एंटरटेनर मूवीज है ये सारी।
2: या क्वाइट गुड मूवीज। सो एनीवे आपके साथ हम शेयर करेंगे और भी बातें, बट अभी के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में दिस इज अरिजीत सिंह फॉर यू।

0: Happy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे गाने भी लेकर आते हैं और कुछ बातें भी लेकर आते हैं. सैंडी, मेरे पास एक सवाल है. आपको पता है 1800s में एक ऐसा कॉन्डिमेंट था which was used as a medicine.
2: Okay, what is it?
1: So, it was tomato ketchup.
2: क्या बात कर रहे हो?
1: Tomato ketchup in 1800s, 1834, Dr. John Cook Bennett, इन्होंने invent किया था. Ketchup based on a Chinese recipe called ke siap. जिसको केचप फिर बाद में नाम निकला ना,
2: केचप. तो केचप को यूज किया एज अ मेडिसिन.
1: ही सेड कुड क्योर, केचप कुड क्योर इनडाइजेशन, डायरिया एंड जॉन्डिस.
2: वाओ.
1: या सो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. अभी ये वर्ल्ड गेट्स डिवाइडेड ऑन टू दिस, बट अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर कैन हैव और नीड केचप विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग.
2: या
1: लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, लाइक मेरे डैड, आप उनको कोई भी खाना दो, नॉट कोई भी बट मोस्ट खाने दो, उसमें वो केचप डालेंगे. चाहे वो राइस भी हो, ये भी हो. आई वॉन्ट टू नो हमारे लिसनर्स में कितने ऐसे हैं जो किसी के साथ भी केचप खा सकते हैं.
2: वाओ, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो.
1: आपको केचप पसंद है?
2: पसंद है, बट नॉट विद एवरी फूड.
1: किस चीज के साथ आप केचप खा सकते हो?
2: चिप्स के साथ खा सकती हूँ बेसिकली, या फिर
1: फ्रेंच फ्राइज, मतलब जो
2: हाँ फ्रेंच फ्राइज है, या फिर वो भी मेरे को चिप्स वैसे ही अच्छे लगते हैं है? बट कभी हाँ मेरे को वैसे ही अच्छे लगते हैं. कभी कभी उसके साथ केचप, या फिर कभी कभी दिस इज नॉट हेयर, लेकिन इंडिया में, इंडिया में यू नो जो बाहर मैगी मिलती है ठेले पे, उसके साथ वो जो साथ में देते हैं केचप, वो मेरे को वो कॉम्बिनेशन वहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं अच्छा लगता.
1: यहाँ पे अपने को 50 सेंट्स देना पड़ता है ना केचप का, इसलिए वो मजा नहीं आता. मेरे को भी यहाँ पे आके ना मेरा केचप का आदत छूट गया.
2: लेकिन केचप के पैकेट्स कई बार फ्री में भी मिलते हैं ना, जब आप टेकअवे लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है.
1: तो मुझे
2: हे भगवान.
1: बट या
2: आई एम नॉट अ केचप केचप पर्सन.
1: यू आर नॉट अ केचप केचप पर्सन.
2: ना. व्हाट अबाउट यू?
1: 0800-004-866 नंबर पे आप भी कॉल करके बताइए कि आर यू अ केचप पर्सन और नॉट.
2: आप कितनी केचप लेते हैं, किस किस चीज के साथ केचप?
1: व्हाट इज द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग जिसके साथ आपने केचप लिया है?
2: तुमने किसके साथ केचप लिया है?
1: मैंने वियर्डेस्ट नहीं, मैं यूजुअली मेरे को ना जब हम पुलाव उलाव खाते तो उसमें केचप मेरे को डाल के खा के अच्छा लगता है.
2: कईयों को पुलाव में चिप्स डाल के खाना भी अच्छा लगता है.
1: मैं भी हूँ,
2: मैंने भी कई बार किया है, इसलिए मैंने मेरे को ये पता है,
1: क्योंकि
2: मेरे को अच्छा लगता है.
1: यू लाइक क्रंच ना? आप चिप्स वो बोल रहे हो ना, वेफर वाला चिप्स?
2: हाँ, वेफर वाले चिप्स या कोई भी चिप्स, या वो जो आते हैं ब्लू बर्ड वाले चिप्स भी आते हैं.
1: नॉट फ्रेंच फ्राइज वाले चिप्स?
2: नो नो नो,
1: क्योंकि आपने पहले उसको चिप्स बोला.
2: हाँ, लेकिन उसको क्योंकि यहाँ पे चिप्स बोलते हैं. हाँ, हम फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चिप्स बोलते हैं.
1: इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना, वो भी चिप्स है, ये भी चिप्स है, कौन सा चिप्स?
2: आई नो मैन, टेल मी अबाउट इट. बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन है. तुम्हें पता है एक और बात मुझे पता चली है.
1: हाँ.
2: कि न्यूजीलैंड में इतना तो मैंने सुना था कि हर कोई पेट्रोल स्टेशन कहता है, पेट्रोल स्टेशन कहता है,
1: गैस स्टेशन
2: यहाँ नहीं बोलते,
1: नहीं
2: बोलते. दिस इज वन थिंग. गैस स्टेशन,
1: फ्यूल पंप,
2: बहुत सारी ऑल कंट्रीज में बोलते हैं. हाँ, फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशन बोला जाता है.
1: पेट्रोल पंप यहाँ पे नहीं बोलते, इंडिया में पेट्रोल पंप बोलते थे हम लोग.
2: वहाँ पे पेट्रोल पंप बोलते हैं, और मेरे को लगता है यूके वाली साइड में गैस स्टेशन इज क्वाइट अ वर्ड. वहाँ पे गैस भराई तुमने, गैस फिल करवाई.
1: यूएस में गैस वाला,
2: यूएस में, यूके में, उधर की साइड में बहुत गैस स्टेशन ये बहुत कॉमन है. बट यहाँ पे इट्स मोर ऑफ पेट्रोल, चाहे डीजल ही भरा रहे, बट इट्स अ पेट्रोल,
1: इट्स पेट्रोल.
2: एनीवे, सो केचप आपने किस किस चीज के साथ खाई है वो बताइए यहाँ पे आज कॉल करके 0800 हम पर. सो तुमने यूजली मैगी के साथ और किसके साथ, पुलाव के साथ तुमने बोला?
1: मैं पहले बहुत केचप खाता था, लेकिन काफी बार ऐसा कंसिडर होता है देख, जो खाना बना रहा है ना, अगर उसने खाना बनाया और तुमने केचप डाला ऊपर से, तो वो काफी बार बहुत इंसल्टिंग ले लेते हैं.
2: रूड होता है वो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम वो फ्लेवर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो.
1: हाँ हाँ,
2: दैट इज ट्रू.
1: सो मैंने छोड़ दिया केचप खाना.
2: नहीं तो फ्लेवरफुल खाना नहीं मिलेगा.
1: बट आई
2: तुम केचप ही खाओ.
1: आई गेट दैट पॉइंट आल्सो ना, कि अगर तुमको केचप डालने की जरूरत पड़ रही है मेरे खाने में, मतलब यार मेरे खाने में दम नहीं है क्या?
2: या मुझे हर एक खाने के साथ वो बहुत आदत है, मिर्ची, हरे ग्रीन चिली. I love green chili.
1: Okay.
2: तो मैं ग्रीन चिली काफी ज्यादा लेती हूँ बहुत सारे खाने के साथ, मतलब घर पे इंडियन फूड ही होता है,
1: बट उसमें ग्रीन चिली, रॉ ग्रीन चिली,
2: रॉ साथ में जो खाते हैं सैलड में, साथ में जो होती है,
1: वाओ,
2: वो मैं बहुत खाती हूँ. वो मुझे और मेरे भाई को बहुत आदत है.
1: राइट.
2: सो ग्रीन चिली की आप भी बताइए केचप पर्सन है कि नहीं
1: या
2: है?
1: पिकल पर्सन हो आप? काफी लोग देखो पारने वाला भजिया, भजिया भी काफी लोग खाते हैं ना, भजिया के साथ केचप।
2: हाँ भजिया के साथ तो अच्छी लगती है, भजिया के साथ, भजिया के साथ चटनी और वो जो होती है एक तो ग्रीन चटनी होती है
1: और इमली की चटनी होती है,
2: एक इमली की चटनी नॉट मीठी वाली, एक प्रॉपर होती है इमली की चटनी
1: प्रॉपर,
2: या
1: थोड़ा कहीं कहीं
2: मिलती है, थोड़ी थिक होती है वो, वेरी नाइस वन।
1: या तो बताइए, चलो अगर आपको भी भूख लगी थोड़ी कॉल करके यहाँ पे शेयर कीजिए बातें। 5599 इज द नंबर टू टेक्स्ट या फिर 0800-004-866।
2: टाइम हो गया,
1: अब ऐसा टाइम हो गया है ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ देखो अच्छा हो गया बच गए। हाय आपका स्वागत है।
3: आपका भी स्वागत है, गोविंद जी शेफ बात कर रहा हूं।
1: अरे गोविंद शेफ, अरे भाई
2: सॉस की खाने की बात कर रहे हैं आप, कॉल ना करें ऐसे कैसे हो सकता है।
3: मैं गाड़ी में बैठा तो आप सॉस की और ग्रीन चिली की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मौके पे चौका लगा।
1: ये अच्छा मौका है ब्रांड प्रमोट करने का।
2: क्यों नहीं है ना।
3: ये भी तो चाहिए ना जी।
1: हाँ
2: जी जी बताइए,
3: प्रमोट हो जाता है ना।
2: हाँ कोई बात नहीं, बताइए।
3: आपको पता ही है, मैं जैसे अभी रुस्मे ने बताया कि इमली की चटनी टैमरिंड सॉस हम बनाते ही है, तो वो चाहिए साथ में अगर खाना है तो, और साथ में चाहिए जो अभी आपने भी बोला मिंट की, जो हम फ्रेश मिंट गार्डन में लगा हुआ है उसमें दो चार हरी मिर्चें पीस के वो भी बना लेते हैं।
2: अरे वाह क्या बात
3: है, यहाँ तो सब कुछ इंस्टेंट है, मिक्सी में डाला और बन गया सब कुछ।
2: मैंने तो, ये जी बताइए,
3: और साथ में कभी कभी जैसे ऑर्डर होते हैं हमारे पास तो उनके चने भटूरे के साथ ना, एक आपने देखा होगा पंजाब में स्पेशली, आप तो जानते ही हो कि गाजर मूली का अचार बनता है इंस्टेंट वाला, तो वो मेरे घर में बना होता है हमेशा।
1: गाजर मूली का अचार इंस्टेंट वाला मतलब क्या?
3: उसको इंस्टेंट बना सकते हैं, जैसे आपने आज गाजर मूली को उसको राई और मसाले बना के रखा, थोड़ा विनेगर डाल के रखा, नमक मिर्च मसाला जो भी आपने डालना, उसको थोड़ा सा हम एक बार कढ़ाई में गर्म कर लेते हैं और उसको बाद उसको एयर टाइट करके रख देते हैं, तो वो अंदर अपनी गर्मी से ही इंस्टेंट में ही बन जाता है, जैसे दिन में बनाओ तो शाम को आप खा सकते हो उसको।
1: अच्छा
2: आप ये कह सकते हो कि मैं फ्रेश अचार बनाता हूँ, फ्रेश अचार मिलेगा आपको।
3: फ्रेश भी है
2: अचार, यूजली फ्रेश नहीं होते ना।
1: हाँ टाइम लगता है ना उनको।
3: यूजली नहीं होते, सही बात है, यूजली नहीं होते।
1: नाइस।
3: तो ये चीजें हैं जो आपके खाने को चार चांद लगा देती है और टेस्ट को भी।
2: नाइस यार, वेरी नाइस,
1: थैंक यू सो मच गोविंदी शेफ यहाँ पे शेयर करने के लिए बात। वैसे इनके पानी पूरी और चाट बहुत बढ़िया होता है,
2: बहुत बढ़िया होता है, रेडिथॉन में आप जब भी लेके आते हो।
1: जी जी नहीं इनवॉइस भेज दूंगा मैं, अरे थैंक यू ना को रे बाबा।
3: नहीं आप बिल भेजेंगे, मैं बदले में पानी पूरी भेज
1: दूंगा। हां नहीं बढ़िया है,
2: मेरे को लगता है ना वही मेरे को लेनी चाहिए रुस्बे।
1: क्या लेनी चाहिए?
2: ये खांसी को अभी किल कौन करेगा, जहर को जहर ही मारता है।
1: आप इनके खाने को जहर कह रहे हो?
2: नहीं नहीं मेरे कहने को आप समझे ना गोविंद
3: जी। जी जी
2: खांसी को अभी किल कौन करेगा?
3: आपको नहीं नहीं आपको डेफिनेटली चाहिए, पता क्यों?
2: हाँ
3: जब मैं लेके आता हूँ उस वक्त आप डेफिनेटली मुझे दो तीन साल हो गए लाते हुए, आप उस टाइम बिजी होते हो और मैं कहता रहता हूँ, आप बोल देते हो कि नहीं गला खराब हो जाएगा आप, क्योंकि
2: हाँ क्योंकि वो रेडिथॉन कर रहे होते हैं तो तब खा नहीं पाते।
3: बस बस वही बात है जी, तो
2: सही है,
3: आपको जरूर हम करेंगे।
1: जी जी थैंक यू,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: तो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो 5599 पर, पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए 5 बजे के बाद लेकर आएंगे, जहाँ पे और भी टॉपिक्स ले आएंगे, आपसे और भी बात करने का मौका मिलेगा। सुनते रहिए हम

0: पर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक
2: Popeyes चिकन $5 डील
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 11 degrees. Reports of a crash on the southern affecting northbound traffic around the Penrose and Ellerslie off-ramps, but southbound 45 to Monaco and hour 5 to Drury. On the northern and hour 3 to Silverdale, 42 to Constellation Drive. Slow over the Harbour Bridge, but it eases up once you get through Northcote. And on the northwestern to Massey, taking 38 minutes.
2: Three spicy wings for $5 this week at Popeyes. Love that chicken from Popeyes.
4: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
5: क्यों क्या हुआ
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424
7: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
8: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
9: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
10: Auckland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert, along with Shah Zaman Ali Khan, Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6077.
11: This is an announcement from Civil Defence. Between 6 and 7 p.m. on June the 14th, we're testing the emergency mobile alert. Therefore, we advise against partaking in hide-and-seek and other hiding-centric activities. For more, here's Barry Kane from Hidden Arts New Zealand. Barry? Where did Barry go? Anyway, on June the 14th, between 6 and 7 p.m., listen out for the emergency mobile alert.
12: Yeah! What was that?
11: Oh, Barry, you were behind that curtain. Very devious.
13: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways travel deals are on now. Fly to Fiji from just $329 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like Canada from just $999 one way, Japan from $685, Hong Kong from $739, Samoa from $305, or Vanuatu from $365 one way. Book now at fijiairways.com or call your local travel agent. Conditions apply.
0: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm Kay Yam Adams with the latest at 5. Consumer NZ is welcoming a probe into claims of pricing errors at BP Connect. The Commerce Commission is taking BP Oil NZ to court, accusing the fuel giant of failing to give customers discounts they were entitled to. CEO John Duffy says companies must be held to account.
15: Consumers should be able to assume that sophisticated businesses have got their systems right and that they are being charged appropriately.
14: It's believed residential construction costs may trend upward for some time yet. New figures suggest a recent fall in diesel prices hasn't been enough to offset hikes elsewhere in the industry. QV cost builders Martin Bissett calls it a waiting game.
16: If diesel starts going back down to the levels that we had before, then we'll see some changes.
14: Several cars have been sprayed with mud after a geothermal bore burst near Rotorua's CBD. Water, steam and concrete also spewed into the air, creating a geyser effect on Tariwa Road. The area has been fenced off while contractors regrout the bore. Masses of sewer waste, known as fatbergs, have been washing up on a Nelson beach. The City Council says recent storm activity has caused the wastewater network to overflow and material from it has been coming ashore at Tahunanui's back beach. It's urging people to keep dogs away. Football updates brought to you by Hisense, and All Whites coach Darren Baisley will be giving it the "we have plenty to work on" line, but his team was well short of the morale boosting win they could have hoped for. The All Whites overpowered by Haiti 4-0. They play England on Sunday morning. And Moana Pacifica is facing more than 8 million in creditor claims. That's according to the first report from liquidators appointed to the collapsed Super Rugby franchise.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: आज थोड़ी बहुत बारिश हुई दोपहर को सुबह को मतलब और अभी ईज आउट भी हो रहा है. साउथ वेस्टर्लीज ईजिंग दिस इवनिंग. फाइन वेदर रहने वाला है थोड़ा बहुत. शाम को 5:13 पे होगा सनसेट. फील्स लाइक 15 डिग्रीज. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 10 डिग्रीज टुनाइट. कल इज गोइंग टू बी क्वाइट अ वार्म डे.
18: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
19: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
20: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
17: 5:02 ho gaye hai. You're listening to The Drive Show, Power Drive at 5 with Sandy and Rusbe. Hi Sandy, good evening.
21: A very very good evening. Aaj aapke liye hum character guess karne wale hain, not situationship.
17: Acha, character guess karne wale kyunki kal miss ho gaya.
21: Kal miss ho gaya, lekin is gaane ke baad. Lekin isse pehle hum rule samjha dete hain sabko.
17: Ha, rule samjhao.
21: Character guess mein today is my turn guys. I'm very excited. And आज क्या होने वाला है कि करेक्टर को मैंने सोचा हुआ है.
17: So basically पिछले 2-3 हफ्तों से हम ये गेम खेल रहे हैं आपके साथ, जहाँ पे हर हफ्ते या तो सैंडी या तो मैं, हमने ऑल्टरनेट किया है. अब तक सैंडी ने भी एक गेस किया, मैंने भी एक मतलब कैरेक्टर सोचा था और दोनों का सही गेस हो गया.
21: Yes.
17: आज अभी सैंडी का अगेन टर्न है टू थिंक अबाउट अ कैरेक्टर
21: जिसके बारे में रुजबे को कोई आइडिया नहीं है.
17: मुझे कोई आइडिया नहीं है. सैंडी हमें सबको साथ में कुछ हिंट्स देगी एंड देन We will have to ask her some questions.
21: जिसका जवाब मैं yes और no में दे सकती हूँ.
17: जी.
21: तो और आपको guess करना है basically रुजबे के साथ मिलके कि मैंने किसके बारे में सोच के रखा है.
17: और आपकी ही
21: मेरा mind पढ़ना है आपको.
17: आपको mind पढ़ना है Sandy का. और मुझे लगता है कि आप Sandy को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हो than me.
21: तो let's
17: see. So I think you should be able to help me out. Last time भी आपने help किया था. Last time आपने क्या सोचा था? आपने
21: रतन टाटा.
17: आपने रतन टाटा सोचा था और मैंने मेरे को कहीं से भी गेस नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे फिर मैसेज करके बताया था कि ये रतन टाटा हो सकते हैं. और मेरा भी कैरेक्टर ऐसे ही था. मैंने फर्स्ट टाइम पे पोपोए सोचा था.
21: पोपोए. देन सेकंड वाज
17: अमरीशपुरी. या तो ये दो अब तक हुए हैं.
21: इट कैन बी एनी वन. इट कैन बी अ सेलिब्रिटी. इट कैन बी अ पॉलिटिकल फिगर. कोई इंडस्ट्रियलिस्ट. कोई भी हो सकता है. ये
17: समवन दैट वी ऑल वुड नो.
21: और एक बार हमने वो भी तो सोचा था आई थिंक पूजा. वन ऑफ द करेक्टर गेस्ट में जो हमने सोचा था वो था पूजा फ्रॉम विजय फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो.
17: फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. यस.
21: तो कोई भी करेक्टर हो सकता है. अभी आप समझे एग्जाम्पल्स के साथ ना. तो आज का भी कोई भी करेक्टर होगा जिसके बारे में इस गाने के बाद मैं कुछ हिंट देने वाली हूँ. फिर आपको यहाँ पे कॉल करना है और उसबे के साथ मिलकर गेस करना है.
17: कितने क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास?
21: सो 5 मैं हिंट दूंगी, 5 तुम्हारे क्वेश्चन है.
17: ओके.
21: ठीक है. तो इस वे से हम इसको खेलेंगे.
17: सो टोटल वी हैव 10 चांसेस लाइक 10 थिंग्स टू.
21: जैसे 10 का दम होता है ना. सो
17: वैसा ही 10 का दम चल रहा है. ठीक है. तो
21: कैरेक्टर गेस इन 10.
17: इस गाने के बाद हम बात करेंगे आपके साथ अबाउट कैरेक्टर गेस.

0: मेट्रो इन दिनों का ये गाना राघव चैतन्य की आवाज में, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार,
1: वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत ही अच्छे से गाया है. एंड ऑफ कोर्स हैज अ कनेक्शन विद ओ मेरी जान, केके की आवाज में जो था.
0: इट एक्चुअली साउंड्स सो मच लाइक दैट यार, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. काफी लंबा गाना है इसलिए हम काफी बार आपको सुना नहीं पाते, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया गाना फ्रॉम मेट्रो इन दिनों.
1: या सो अभी आते हैं आज के गेम पे.
0: जी आज का गेम जो है वो है ये कैरेक्टर गेस. कैरेक्टर गेस हम आपके साथ खेलते हैं. आपके साथ के बिना ये गेम नहीं खेल पाएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ. आज ने सैंडी ने एक तो गेस किया है, मतलब सैंडी ने आज सोचा है
1: कैरेक्टर के बारे में.
0: वो हमें कुछ हिंट्स देगी, 5 हिंट देगी टोटल. एंड उन 5 हिंटों में हमारे पास 5 सवाल है पूछने के लिए. एंड वी विल हैव टू गेट थ्रू एंड देन गेस कौन है ये इंसान.
1: सो सबसे पहला हिंट मेरा जो है, दिस पर्सन इस पर्सनैलिटी के साथ दो वर्ड्स तो डेफिनेटली जुड़ते हैं.
0: दो वर्ड्स जुड़ते हैं इस पर्सनैलिटी के साथ.
1: एम्पथी.
0: अच्छा.
1: इन्फ्लुएंसर.
0: एम्पथी एंड इन्फ्लुएंसर.
1: या सो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, बहुत लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया है काफी चीजों के लिए. एम्पथी तो इनके नाम के साथ ही है.
0: ओह अच्छा.
1: या जो उन्होंने काम, मतलब या एम्पथीज, एम्पथी वाज ऑलवेज देयर.
0: ओके ओके ओके ओके. सो सवाल पूछ ले हम लोग पहले से.
1: हाँ व्हाई नॉट. मतलब तुम्हारी विश है तुम्हें अपने 5 सवाल कब यूज करने हैं.
0: सो मैं पहला सवाल, मैं अभी कोई अभी यहाँ पे अगर कॉल करे डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो है कि इज दिस पर्सन लिविंग और डेड.
1: तो तुम्हें डिस्कस करना है किसी लिसनर के साथ कि ये पूछना चाहिए कि नहीं.
0: और
1: अभी
0: सवाल अगर है तुम्हारे मन में जो तुम्हें लगता है कि नहीं पूछना चाहिए, ये मत पूछ, कुछ और पूछ, तो 0800-004-866 इज द नंबर. यू कैन गिव मी अ कॉल क्विकली राइट नाउ.
1: एंड 0800-00 हम पे कॉल कीजिए,
0: क्योंकि इतना याद रखना अगर मैं हारा तो मैं अकेला नहीं हारा हूं, मतलब आप लोग भी हारे मेरे साथ. आई एम जस्ट सेइंग ओके.
1: एंड आई कैन ओनली आंसर यस और नो,
0: ओनली यस और नो. सो वी हैव टू आस्क, आई एम गोइंग टू आस्क इज दिस पर्सन डेड नॉट लिविंग.
1: So your question is this person dead? Yes.
0: Yes. All right. So this is a yes. तो ये मेरा सवाल गया नहीं ना अब तक.
1: क्यों नहीं गया? गया हाँ ना.
0: Oh okay okay.
1: One question आज गया, अब तुम्हारे पास 4 सवाल
0: हैं. मुझे लगा सिर्फ no वाले सवाल count होंगे.
1: कुछ भी.
0: सिर्फ no वाले नहीं count होते.
1: ऐसा नहीं होता है. So आप call कीजिए यहाँ पे 0800-00 हम पर. एंड हेल्प रूज बे. सो फार आपके पास है कि दिस पर्सन इज नॉट अलाइव. ठीक है, इस पर्सन के साथ दो चीजें कनेक्ट होती है, एम्पथी
0: और इन्फ्लुएंस.
1: इन्फ्लुएंसर मतलब बिग इन्फ्लुएंसर. सो अगला हिंदू में या फिर वेट करना चाहोगे?
0: मैं तो सीधा नाम गेस करना चाह रहा हूँ.
1: तुम सीधा नाम गेस करना चाह रहे हो, देख लो.
0: ये
1: इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो. मतलब तुम्हारा एक क्वेश्चन चला जाएगा.
0: वही ना यार, यही एक प्रॉब्लम. नहीं ना, नहीं, मैं गेस नहीं कर सकता, मुझे क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा.
1: या
0: लेकिन यहाँ पे कोई कॉल करो यार 0800-004-866. क्या लगता है आपको? आपको कोई और हिंट देना है अभी और के नहीं?
1: तुम्हारी मर्जी है, इट्स अप टू यू.
0: या गिव गिव मोर, वन मोर.
1: ओके अनदर हिंट. ये जो पर्सन है इज इनके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी है.
0: कॉन्ट्रोवर्सी भी है?
1: या इनके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही है.
0: करो क्या लगता है आपको यार,
2: किसी में सवाल जो है आपका आज ये वाला.
0: हाँ मतलब ये जो इनके बारे में सोच रही है, कैरेक्टर गेस खेल रहे हो ना आप, उसके लिए कॉल किया ना आपने?
2: हाँ उसके लिए कॉल किया, लेकिन सेकंड हिंट सुन नहीं पाया. सेकंड हिंट,
0: सेकंड हिंट बता देना.
1: सेकंड हिंट ये है कि उनका नाम कंट्रोवर्सीज में भी रहा है.
0: काफी कंट्रोवर्सी में नाम रहा है. इन्फ्लुएंस और एम्पथी से इनका नाम जुड़ा जाता है.
1: व्हिच एक्चुअली
0: एंड पर्सन इज नॉट अलाइव. नॉट अलाइव.
2: महात्मा गांधी.
0: आप महात्मा गांधी सोच रहे हो? दैट्स ऑल्सो वेरी गुड गेस एक्चुअली. मैं कौन सा नाम सोच रहा था?
2: हाँ बोलो.
0: मैं मदर टेरेसा सोच रहा था, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी कोई जुड़ी नहीं है उनके साथ, मेरे को नहीं लगता. सो महात्मा गांधी, यस यू आर राइट, बिकॉज कंट्रोवर्सी भी काफी जुड़ी है उनके साथ,
2: काफी जुड़ी हुई है, काफी इन्फ्लुएंशियल है, और नाम भी महात्मा, तो
0: कहीं ना कहीं हाँ एम्पैथी उनके नाम में है, महात्मा. यस एक्चुअली दैट इज वेरी कूल यार.
2: भेजो चॉकलेट, भेजो घर पे यार.
0: बट मेरे को पता नहीं
1: अभी तक मैंने जवाब दिया नहीं है. आप मुझे कंफर्म करो, कुछ सवाल पूछो ना.
0: कुछ सवाल पूछ सकते हैं ना,
1: जो उसके रिलेटेड हो, जो आपको थोड़ा कैटेगराइज करने में हेल्प करे,
0: कैटेगराइज करने में मदद करे. ऐसा कोई सवाल अगर है आपके पास तो मेरे को बताओ.
2: हाँ वो जेल भी गए हैं. क्या वो जेल गए हैं?
0: ऐसा पूछ सकते हैं हम लोग. एक मिनट, ये एक सवाल है, लेकिन मैं परविंदर से भी बात करके देखता हूँ वो क्या बोलती है. हाँ हेलो परविंदर जी, बताइए.
3: हेलो,
0: क्या yes. लगता है आपको? अच्छा, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है अभी
1: रेंज बताओ, कुछ साल बताओ ऐसा.
0: हाँ, मतलब आपके मन में कौन आ रहा है? अगर अभी हुए होंगे तो क्या, कौन सा नाम आ रहा है आपके जहन में?
3: देखो मैंने तो मिडिल में ज्वाइन किया था ना कॉन्वर्सेशन का, तो मैंने लिविंग नॉट लिविंग वाला पार्ट मिस किया था.
0: हाँ नॉट लिविंग है और एम्पथी है उनके नाम से.
3: नहीं सुना था जब तक मैंने ये नहीं सुना था, मेरे दिमाग में राखी सावंत आ रहा था, लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी.
0: अरे नहीं नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस और एम्पथी.
1: सो एम्पथी आप इस करेक्टर के साथ काफी कनेक्ट करोगे व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्सन ना, तो उनकी काफी कहानियां हैं एम्पथी को लेके. एंड इन्फ्लुएंसर मतलब दिस पर्सन बीन इन्फ्लुएंसर नॉट अलाइव एंड बीन इन सम कंट्रोवर्सीज एज वेल,
0: बीन इन सम कंट्रोवर्सीज एज वेल. सो अभी के तक के लिए हमारे लिए पास, हाँ बोलो.
3: रुजबे ने बोला मदर टेरेसा के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. आई थिंक यू मिस्ड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड मदर टेरेसा.
0: हां क्या बताओ, क्या है, क्या हुआ है, मैंने मिस कर दिया यार.
3: लोग ना ऑफेंड हो जाए अगर मैं बोलूंगी तो.
0: हाँ वही तो, ऑफेंड हो तो जाएंगे लेकिन आप करोगे. मैंने तो मिस कर दिया.
3: मतलब मैंने कंट्रोवर्सी पढ़ी है.
0: अच्छा.
3: कि वो जैसे डोनेशन के नाम पे, जैसे हॉस्पिटल रन करती थी तो डोनेशन के नाम पे जैसे जो पैसे आते थे, शी यूज्ड टू सेंड इट टू हर कंट्री इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर इंडियन पीपल.
0: अच्छा ओके, ये आपने अभी अभी के टाइम पे सुनी है क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी?
3: कब से चल रही है ये तो.
0: अच्छा तो ठीक है.
3: और भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कि आई डोंट नो ये बोलना चाहिए.
0: नहीं आप मत बोलो यार, आप फंसा दोगे आप.
3: पर मुझे एक वो भी लग रहा है, लाल बहादुर शास्त्री.
0: लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन उनके नाम में एम्पथी ऐसा एम्पथी वाला.
1: इट्स नॉट अबाउट नेम, इट्स अबाउट द पर्सन.
0: इट्स अबाउट द पर्सन. पर्सन में एम्पथी है काफी. अच्छा
3: जितना मैंने बचपन में पढ़ा था, हिज लव टुवर्ड्स एनिमल.
0: ओके चलो ठीक है, अभी एक मिनट मैं इससे भी बात कर लेता हूँ. हाय बताइए, कैसे हो आप?
4: हाय मैं अच्छा, आप कैसे?
0: एकदम एक नंबर. क्या लग रहा है यार, एफआर कौन है?
4: मेरा क्वेश्चन है उसके पहले कि ये जो पर्सन है ये एजुकेशन रिलेटेड कुछ है?
0: एजुकेशन रिलेटेड
4: जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज है वो एजुकेशन रिलेटेड कुछ है.
0: अच्छा कौन लग रहा है आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसा?
4: महात्मा फुले आएगा.
0: ज्योतिबा फुले उनका क्या?
4: ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले. क्या उन्होंने नहीं अपने, अब जैसे इंडिया में उन्होंने लेडीज लोगों को एजुकेशन का स्टार्ट करवाया था.
0: हाँ बट ये अपन ने इनके बारे में ना महाराष्ट्र बोर्ड में सीखा है, ये मेरे को नहीं लगता है बाकी कोई बोर्ड में इनके बारे में सीखा है कुछ. ज्योतिबा फुले के बारे में सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड में सीखा है हमने. नेल्सन मंडेला भी एक गैस आया है. रोनाल्ड आपका ये गैस भी सही लग रहा है मेरे को.
1: वेरी इंटरेस्टिंग.
0: आई थिंक इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन बट लेट्स चेक विद हिम. हाय
1: सो आई विल ओनली गिव हिंट.
0: आपको लग रहा है चंद्रशेखर आजाद हो सकते
1: हैं? मैं तभी हिंट दूंगी जब आप लोग मुझसे पूछेंगे. ठीक है.
0: हाँ हाँ हाँ ठीक है. अभी हम सवाल पूछे क्या आपको, क्या आप हिंट दे रहे हो? आपने दो हिंट दिए ना, आपने दो हिंट दिए ना.
1: दो हिंट दिए मैंने.
0: एक और हिंट दे दो अभी.
1: ओके एक और हिंट देती हूँ मैं. सो इस पर्सन के ऊपर मूवी भी है.
0: अरे यार ये तो बहुत ही ब्रॉड हो गया है.
1: इस पर्सन के ऊपर मूवी भी है.
0: मेरे को ऐसा लगता है
1: मूवी स्लैश सीरीज अवल से.
0: अच्छा तो मुझे ये पूछना है कि क्या ये पर्सन, एक मिनट, आपका भी स्वागत है. हेलो आपने सुना ये हिंट सुना आपने? एक और
1: इस पर्सन के ऊपर मूवी स्लैश सीरीज भी है.
0: हाँ, ये मैं भी यही सोच रहा था कि ये सवाल पूछ लेता हूँ. तो इन्होंने क्या, मैं अब इनको सवाल पूछता हूँ, सैंडी को आप सुनो लाइव. क्या इन ये शख्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका नाम कभी हुआ है, मतलब इन्होंने कभी पार्ट लिया है इस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में?
1: नो.
0: देखो ये है ना सीन, नो. मतलब इसमें हमारे सारे नाम ऑलमोस्ट चले जाते हैं, एक ही नाम रह जाता है रोनल्ड
5: तो
0: का.
5: मैं एक क्वेश्चन करो.
0: हाँ हाँ बोलो.
5: ये गुजराती था
0: इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, अगर नहीं है तो गुजराती मतलब कौन सोच रहे हो आप यार?
5: सरदार वल्लभ भाई पटेल.
0: अरे बट वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में यस होगा ना फिर आंसर. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल पीपल यार. हाँ
5: सॉरी.
1: ऑल गुड.
0: कोई बात नहीं. क्या नाम है आपका?
5: संदीप.
1: बहुत अच्छा ट्राई था आपका.
0: थैंक्स फॉर कॉल मैन. अच्छा तो ये काफी अभी,
1: सो मैं समराइज करती हूँ सो फार जितना हुआ है. ठीक है, और गाना सुनते हैं और मे बी मैसेजेस सुनते हैं, देन वी गेट बैक. सो दिस पर्सन एम्पैथी इनमें काफी रही है, इन्फ्लुएंसर भी, पर्सन इज नॉट अलाइव, कॉन्ट्रोवर्सीज में भी नाम रहा है, नॉट अ फ्रीडम फाइटर, इंडिया की फ्रीडम फाइटर में इनका नाम नहीं था. ठीक है, दिस पर्सन हैव अ मूवी स्लैश सीरीज बेस्ड ऑन दिस. मतलब इस पर्सन के ऊपर मूवी स्लैश सीरीज है.
0: ओके ओके,
1: दिस इज सो फार यू नो अबाउट दिस पर्सन.
0: क्वीन एलिजाबेथ. एम्पैथी कहां से जुड़ता है भाई क्वीन एलिजाबेथ के नाम से? अभी मैं गलत कंट्री में हूं ये सब बोलने के लिए.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic. Beat fuel prices with AT.
2: Cloudy overnight for Auckland, a low of 11 degrees. Things are improving on the northern. It's 54 minutes now to Silverdale, 38 to Constellation Drive. Still getting reports of a crash affecting northbound traffic around the Ellerslie off-ramp on the southern, but to Drury it's an hour and 45 to Monaco. On the southwestern, slow around Puhinui Road and Mangere Bridge.
1: Beat pump prices by taking public transport. Tag on with any smart card and go.
3: Maddie didn't think she needed a DVS system.
4: I've got a heat pump. That should do.
3: But it didn't do it, did it, Maddie?
4: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
3: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. That's 0800 4786 86. लिमिटेड स्पेसेस.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे गाने तो ला रही है, लेकिन आज मेरा माइंड फ्राई हो रहा है थोड़ा, because
4: फ्राई हो रहा है literally.
3: Because we are playing character guess. Character guess में होता ये है, Sandy ने character के बारे में सोचा है, उसके बारे में उसने हमें कई hints दिए हैं.
4: और आपको मेरा माइंड रीड करना है यहाँ पे.
3: And we have to think कि भाई इसने किस character के बारे में सोचा है. तो अभी तक के लिए हमने उनको पूछे है दो सवाल.
4: So मैंने बताया था कि इनमें empathy काफी रही, influencer. And the person is not alive, जो तुमने पूछा. मैंने बताया कि ये कंट्रोवर्सी में भी दिस पर्सन वाज देयर.
3: राइट.
4: तुमने पूछा कि फ्रीडम फाइटर इंडिया में इनका नाम शामिल है. मैंने बोला नहीं. एंड आई सेड कि इनके ऊपर मूवी स्लैश सीरीज भी बेस्ड है.
3: ओके.
4: ठीक है.
3: सो ओके ओके.
4: मेरे अगले हिंट से पहले मेरा अगला हिंट मैं बोलूं अभी क्या?
3: नहीं, एक मिनट होल्ड कर. हमारे पास हमारे यहाँ पे राहुल और वंदना है. हाय राहुल एंड वंदना, वेलकम टू द शो. कैसे हो आप?
5: बहुत बढ़िया, थैंक यू.
3: ये वंदना ने मुझे ऑफर बहुत झापा. उसने बोला तुम ऐसे कैसे ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते. तो बताओ आप मेरे को क्या, कौन सा सवाल पूछना चाहिए फर्स्ट?
6: देखो मैं कह रही हूँ कि आप एक बेसिक दो क्वेश्चंस पूछने हैं. सबसे पहला तो मेल और फीमेल, हमें यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं. और दूसरा हम ये भी नहीं पता हमें कि एक्चुअली इंडियन है कि नॉन इंडियन है. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंडियन, इट कुड बी टोटली आउटसाइड ऑफ इंडिया
3: हो सकता है
6: हमको पता, क्योंकि that's what we are thinking.
3: तो अभी हमारे पास कितने हिंट बाकी है सैंडी?
4: सो आपके पास, तुमने मुझसे दो सवाल पूछे हैं ना?
3: मैंने दो सवाल पूछे हैं, मतलब तीन सवाल बाकी है. और हिंट कितने बाकी है?
4: मेरे पास भी एक दो हिंट बाकी है.
3: अच्छा, तो मुझे लगता है हमने एक हिंट पूछ लेते हैं और फिर हम दो सवाल पूछेंगे, क्या बोलते हो?
5: तो पहला तो हिंट ये पूछ लीजिए कि वो मेल है फीमेल है.
3: वो हिंट देगी ना अभी?
5: अच्छा,
3: हिंट वो अपने आप
4: देगी. हिंट मेरा अगला ये है, this person is known for disregarding strict rules.
3: Disregarding strict rules.
4: Strict rules.
3: Achha.
4: This person is known for disregarding.
3: Hey, यार ये तो मेरे को महात्मा गांधी लग रहा है, लेकिन आपने बोला ये बहुत गलत किया आपने सैनी. आपने बोला है फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं पार्ट था उनका, इंडियन
6: नहीं, नहीं, रुज़बे, अब आप पूछो इंडियन नॉन इंडियन पूछो. पहले
3: इंडियन नॉन इंडियन पूछते. चलो ठीक है. इज दिस पर्सन इंडियन?
4: नो,
3: इट इज नॉट इंडियन. दिस पर्सन इज नॉट इंडियन.
5: ओके.
6: उसके बाद फीमेल है कि मेल है पूछो.
5: फीमेल है.
6: फीमेल है.
3: फीमेल है आप बोल रहे हो. अच्छा ठीक है. इज दिस पर्सन फीमेल?
4: यस.
3: अच्छा ओके ओके.
6: गेस है प्रिंसेस डायना स्पेंसर.
3: प्रिंसेस डायना स्पेंसर
4: आपका ये गेस है?
6: ये हमारा गेस है. ब्रुज़बे आप उनसे और हिंट पूछना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? डोंट नो.
3: ये अलग ही प्रेशर आ गया मेरे ऊपर.
4: तो मैं अपना हिंट फिर से रीडिफाइन करती हूँ. दिस पर्सन वॉज ग्लोबली नोन फॉर डिसरिगार्डिंग स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन फिजिकल कॉन्टैक्ट.
3: ऑन फिजिकल कॉन्टैक्ट.
5: मेंटेन
6: फिजिकल कॉन्टैक्ट.
4: ऑन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिकॉज दिस पर्सन वॉज once upon a time appeared somewhere जहां पे टच करना अलाउड नहीं था. दिस पर्सन वेंट अहेड एंड टच्ड दैट पर्सन.
3: अल्लाह,
4: मतलब इट्स अ बिग बिग थिंग दिस पर्सन डिड.
3: ये
4: और भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स इस पर्सन ने तोड़े.
3: मेरे को लग रहा है ये मदर टेरेसा है अभी, क्योंकि ये जो इन्होंने बोला है ना, मेरे को लग रहा है वो प्रिंसेस डायना. और भी मैसेज आ रहे हैं. प्रिंसेस डायना ने किया कैसा?
6: प्रिंसेस डायना ही लग रही है मेरे को.
5: वही
6: लग रही है.
5: दिस इज व्हाट शी डिड इन अफ्रीका.
6: शी डिड दैट इन अफ्रीका.
3: ओके. अच्छा ठीक है. थैंक यू राहुल एंड वंदना. एक और कॉल लेता हूँ.
4: थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू. हाय, आपका भी स्वागत है.
7: सैंडी कैसे हो?
4: बढ़िया बढ़िया.
3: बस सैंडी को ही पूछोगे?
7: मैं बोला रुज़बे कैसे हो.
3: अच्छा अच्छा ठीक है. हाँ हाँ बताइए.
7: प्रिंसेस डायना है.
3: प्रिंसेस डायना आप भी बोलते हो?
7: बच्चे को उठाया था.
3: हाँ, बच्चे को गोद में उठाया था. अच्छा ठीक है. थैंक यू. क्या नाम है आपका?
7: बॉब नायडू.
3: बॉब नायडू. थैंक यू बॉब नायडू. थैंक यू. प्राइवेट नंबर से कॉल करते हैं बॉब नायडू. अच्छा अभी हमें यहाँ पे
4: बोलना है,
3: आंसर सारे आ गए, आंसर बोलना है सीधा,
4: अभी सिंपल आंसर बोलना है रुज़बे,
3: तो
4: नो
3: ठीक है
4: वे,
3: या। अभी आई कांट मेस दिस अप यार, आई हैव गॉट, मैं राहुल और वंदना, मेरे को लग रहा है वंदना आप ही आंसर बताइए मेरे बिहाफ पे।
6: देखो मैं तो बोल चुकी हूँ पहले,
3: प्रिंसेस डायना,
6: हमारे हिसाब से प्रिंसेस डायना,
4: आंसर इज प्रिंसेस डायना,
3: प्रिंसेस डायना इट इज।
4: Well, you guys are right.
3: Yay!
6: Yeah!
3: Well done.
4: That's
3: yeah.
4: Princess Diana. So this happened. बहुत सारी charities उन्होंने की थी. She went ahead, shaked hand with AIDS patient as well in 1987 without gloves. And also, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि जहाँ पे बच्चे hospital bed पे बीमार है. And क्या होता था कि as a princess, she was not allowed to remove her gloves.
3: Oh.
4: तो वो ग्लव्स उतार के उन बच्चों को ऐसा पकड़ती थी।
3: शी
4: वाज अ बिग इन्फ्लुएंसर, आई विल से आई एम अ बिग फैन ऑफ लेडी डायना, बिग फैन, एंड इनके ऊपर सीरीज भी है, मूवीज भी है, सो आई विल डेफिनेटली से कि यू नो उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वैसे फेमस है, द रिवेंज ड्रेस शी डिड एंड देन द चैरिटीज शी डिड, आज तक लोग ना उसे मानते हैं लेडी डायना, जैसे मुझे नहीं लगता है कि रॉयल फैमिली में कभी कोई आया है। Everyone tries to be in her shoes. Also, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने बहुत सारे रॉयल रूल्स जो है ना उसने तोड़े थे अपने बच्चों को नई चीज़ें करवाने के लिए। रॉयल फैमिली में कुछ होते हैं डूज एंड डोंट्स, उसने बहुत सारे डोंट्स किए थे।
3: वाओ।
4: एंड या कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ कोर्स व्हेन शी पार्टेड वेज फ्रॉम द किंग चार्ल्स, उसके बाद यू नो उनका जो अफेयर था उसको लेके उनकी फोटोज वायरल होना, वो सब चीजें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी। इनफैक्ट उनकी डेथ आज तक कॉन्ट्रोवर्सी में है,
3: पता नहीं क्या क्या
4: उसमें क्या था, बट या काफी लोगों ने सही गेस कर लिया था यार,
3: रियली वेल डन यार, थैंक यू सो मच
4: गाइस
3: एंड थैंक यू वंस अगेन राहुल एंड वंदना, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम
4: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था
4: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू
3: Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
7: Power Drive at 5.
8: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

0: थ्रोबैक में आपके लिए मस्त सा गाना लेकर आएंगे एक, एंड टुडेज थ्रोबैक सॉन्ग गोज विद द थीम ऑफ द शो टुडे.
1: यस, आज की जो थीम है वो है आज,
0: बताओ,
1: 3rd June ना?
0: नहीं, उसके साथ नहीं ये थीम जा रही है कुछ.
1: क्यों?
0: आज का जो थ्रोबैक का गाना है गोज विद द थीम ऑफ द शो, उसका
1: थीम
0: मतलब क्या?
1: शो,
0: हाँ, मतलब क्या है उसका?
1: उसका मतलब है कि दोनों की तबीयत खराब है. ये
0: इसका मतलब ये है कि हम दोनों की नाक से आवाज आ रही है, या एटलीस्ट मेरी तो नाक से आवाज आ रही है.
1: मेरी नाक से नहीं, मेरी आवाज से ही आ रही है, लेकिन उसमें खांसी आ रही है.
0: खांसी आ रही है आपकी आवाज में, लेकिन हम बीमार है.
1: तो थ्रोबैक का जो गाना है वो आवाज में
0: क्योंकि वो
1: इससे पहले कि आप बोले हमें, हम ही बोल रहे हैं.
0: नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन लोगों को मेरा फेवरेट है हिमेश रेशमिया, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसका मजाक बनाऊं.
1: हक बनता है तुम्हारा,
0: मेरा हक बनता है, ठीक है. तो मेरे साथ प्लीज ऐसे मत करना कि मेरे इसको बुरा लग गया, मेरे उसको बुरा लग गया. प्लीज मैं कर सकता हूँ वो मजाक, क्योंकि मेरे को पसंद है हिमेश रेशमिया.
1: जस्टिफाई कर रहे हो?
0: नहीं, मेरे को फिर वो मैसेज देखते फिर ऐसे लगता है कि अरे यार कहाँ पे किसका दिल दुख गया इसमें यार. अब मेरी बातों से दिल नहीं दुखना चाहिए किसी का. अभी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज के बारे में. इंडियन इंक थिएटर कंपनी लेकर आ रहे एक बहुत ही धासु प्ले, इट्स कॉल्ड बलून डॉग. अब इनके जो प्लेज है हमने पहले भी देखे है. वी आर टॉकिंग अबाउट द अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन. He is MNZM. इसका मतलब है सैंडी कि ये है मेंबर ऑफ द न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट. ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस टाइटल होता है.
1: 100% it is.
0: और काफ़ी मतलब लोगों को वो अवार्ड किया जाता है टू रिकग्नाइज आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द क्राउन एंड द नेशन.
1: एंड लास्ट मैंने इनका प्ले अटेंड किया था नरुज में, जैकब राजन का. इट वॉज गुरुज ऑफ चाय.
0: गुरुज ऑफ चाय,
1: अमेजिंग.
0: मैंने एक प्ले देखा था उनका पैराडाइज करके, पैराडाइज आइसक्रीम या ऐसा कुछ था वो प्ले, बहुत ही ब्यूटीफुल. इट वॉज अबाउट हाउ वल्चर्स गॉट एक्सटिंक्ट.
1: ओह वाओ.
0: एंड दिस टाइम दे हैव कम अप विद अ प्ले दैट सेट इन द 21st सेंचुरी.
1: सो दिस इज इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स स्टोरी काबुलीवाला. काबुलीवाला एक कहानी है, एंड उस कहानी में क्या है कि एक बच्ची जो है उसकी फ्रेंडशिप होती है एक वेंडर के साथ जो कि काबुल से आता है एंड चीज़ें बेचता है. तो उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है, एंड देन फ्यू थिंग्स हैपन्स. तो वो कहानी के ऊपर बेस्ड है ये कहानी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इंस्पायर्ड उससे लेकिन न्यूजीलैंड का सेटअप दिया,
0: थोड़ा न्यूजीलैंड वर्जन दिया इसमें. सो इट्स गॉट बेसिकली लाइक एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल एंड अ लोनली माइग्रेंट वर्कर. सो एक बहुत ही ब्यूटिफुल ये स्टोरी रहने वाली है, एंड ये एक मास्टरपीस है, मास्टरपीस दैट ब्लेंड्स ह्यूमर, हार्ट, लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस एंड प्योर थिएट्रिकल मैजिक.
1: सो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है. 3rd से लेके आज से लेके 20th June तक इसके जो शोज है रहने वाले हैं.
0: एंड ओह, सो आज ये खुल गया है, मतलब ओपन हो गया है,
1: ओपन अप हो चुका है.
0: वाओ, दैट्स अमेजिंग यार.
1: इसका जो प्रीव्यू सीजन था इट वाज अ सोल्ड आउट. जो प्रीव्यू गया सीजन वो पहले सोल्ड आउट था, उसके बाद ये बाकी पब्लिक के लिए पूरा का पूरा ओपन अप हो चुका है अभी.
0: सो दिस प्ले इज रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लुइस एंड डायरेक्टेड बाय जस्टिन लुइस. एंड इसमें जो स्टार कास्ट है, मैं एक को जानता हूँ जो वन ऑफ द मेन लीड्स प्ले कर रहे हैं, जहांगीर.
1: ओके,
0: बहुत ही बढ़िया एक्टर है, परफॉर्मर है, एंड अमेजिंग, लाइक very versatile.
1: Okay.
0: So definitely if you like theater, this is something that you should definitely check out.
1: और मैं ये कहूँगी actually में कि अगर आपने कोई भी theater आज तक नहीं देखा है, कोई play अगर आपने नहीं देखा है, you go and watch.
0: This will be a great opportunity.
1: It will be a great start for you, I will say. Because आपको ना, हम movies में, series में देखते हैं, different takes के साथ चीज़ें बनाई गई होती है. Reels आजकल पता नहीं कितनी takes के साथ बनी होती है, कितने editing होती है. Play में there is no editing. It's just one take.
0: It's all live. And you will really get... I think theater gives you inspiration.
1: Yeah.
0: You get inspired after watching it. Because wo art hi aisa hai. Sab kuch live ho raha hai wahan pe. It's live audience as well. Everything is just happening on that day. And there's so much of practice that gets put in. कि इसको मुझे लगता है इतना अप्रिसिएशन मिलता नहीं है इस मीडियम को जो ये डिजर्व करता है. क्यू थिएटर में आप भी पहुंच सकते हैं फ्रॉम टुडे अंटिल द 20th June. और अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ में हिस्सा लेना है,
1: अगर आपको टिकट जीतनी है, तो आपको BD एज इन के बलून डॉग BD स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है सिंपल 5599 पर
0: जी. तो ये 5 जून को ड्रॉ होने वाला है ब्रेकफास्ट शो में, लेकिन इसके टिकट्स अगर आपको लेने हैं तो iticket.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. दिस इज श्योरली गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल थिएटर एक्सपीरियंस. तो आज ही जाइए और अपने टिकट्स आप बुक कर लीजिए. क्यू थिएटर फ्रॉम 3rd to 20th of June, बलून डॉग, इसको आप चेकआउट कीजिएगा.

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: 6 बज चुके हैं. You're listening to Trend Makers. आज 3rd of June. ट्रेंड मेकर्स में सैंडी गुड इवनिंग. क्या हो रहा है आज?
4: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग. यस, ट्रेंड मेकर्स में आज हम आर माधवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. आर माधवन का बर्थडे था ओवर द वीकेंड, सो वी डिडंट गेट अ चांस. कल हमने सोनाक्षी सिन्हा का बर्थडे सेलिब्रेट किया. वीकेंड पे नहीं, मंडे को बर्थडे था एक्चुअली.
3: मंडे को बर्थडे था, लॉन्ग वीकेंड पे अपना लॉन्ग वीकेंड था.
4: या सो आर माधवन के गाने आज आप सुनने वाले हैं. आर माधवन के देखा जाए तो उनकी मूवीज हिट है, उनके मूवीज ऐसा डिफरेंट है, बट ही इज नॉट इन एवरी सॉन्ग ऑफ हिज मूवीज.
3: ही इज नॉट नोन फॉर हिज सॉन्ग्स.
4: या एग्जैक्टली, एक्सेप्ट फॉर दैट वन मूवी जिसका गाना प्ले करेंगे थोड़ी देर में, रहना है तेरे दिल में.
3: और हाँ, मतलब बाकी सारे गानों में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, लाइक ही इज बीन पार्ट ऑफ द मूवीज. तो हम आपको ऐसा आज शो लेकर आने वाले.
4: लेकिन आज हम आर माधवन के कुछ फैक्ट्स, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ तो डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं. बट बिफोर दैट, What is your favorite movie of R. Madhavan?
3: हाँ.
4: R. Madhavan की ऐसी कौन सी मूवी है कि R. Madhavan का नाम सुनते ही वो मूवी आपके जहन में आती है?
3: कौन सी मूवी आपके जहन में आती है? आप 5599 पे हमें लिखकर यहाँ पे बता सकते हैं. मैं बोलना नहीं चाहता अभी क्योंकि I don't want to influence.
4: नहीं, तुम बोल सकते हो ना, तुम अपना तो दे ही सकते हो आंसर.
3: So R. Madhavan सुन के जो फर्स्ट मूवी मेरे जहन में आती है वो है रहना है तेरे दिल में.
4: मैडी.
3: मैडी.
4: या
3: मैडी.
4: मैडी. मतलब ये नाम ही नहीं हमें भूलता है.
3: मैडी. और वो यार माधवन, मैडी, आई डोंट नो, जस्ट आज भी लोगों ने कितना मैडी बुलाते हैं.
4: या
3: आई थिंक
4: एंड बिकॉज़ ऑफ, कईयों को लगता है कि शायद उनका निकनेम है मैडी.
3: हो सकता है ना,
4: बट इट्स नॉट, इट्स फ्रॉम द मूवी ना.
3: अच्छा.
4: या
3: बट माधवन मैडी, मतलब यू नो इट मैचेस ना.
4: काफी लोग, या काफी लोग इसको यूज करते हैं. इमेजिन करो जिस बंदे ने रोमांटिक मूवीज के साथ शुरुआत की, eventually कितने evolve हुए हैं वो movies में.
3: But he's always been a very like versatile actor. Like वो south में भी बहुत popular थे, बहुत hit थे.
4: Yeah.
3: And then after that when he made his debut in Bollywood, bhai, he became like a charmer.
4: Yeah.
3: सबको मतलब एकदम ही ऐसे दीवाने हो गए उनको. अभी भी काफी लोग मतलब इसलिए मैडी बुलाते हैं ना.
4: Yeah, अभी भी इसीलिए.
3: Forever crush है वो. Like he's a forever crush.
4: सो आज उनके गाने हम यहाँ पे प्ले करेंगे, उनकी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे. तो आप भी यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं कि माधवन की, आर माधवन की ऐसी कौन सी मूवी है जो आपकी फेवरेट है. 5599.
3: यू नो, वैसे रहना है तेरे दिल में कि हम बात कर रहे थे ना, रहना है तेरे दिल में 2001 में उनका बॉलीवुड डेब्यू था. लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे इनिशियली स्मैश नहीं किया था इसने. बट बाय द एंड, बिकॉज गाने इतने बढ़िया थे और जो उनका रोल इतना बढ़िया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको बहुत प्यार मिला उस मूवी को. बट इनिशियली इट वाज नॉट अ क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स ऑफिस
4: ब्लॉकबस्टर ऐसा मूवी नहीं थी वो.
3: या इट वाज नॉट अ ब्लॉकबस्टर इनिशियली. बट या लॉट ऑफ पीपल इवन नाउ हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज अबाउट रहना है तेरे दिल में.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. देखो एक खास बात सैंडी के साथ शो करने की ये है कि कोई भी आर्टिस्ट यहाँ पे हो जिनका बर्थडे हो कुछ हो, हमें ज्यादा दूर नहीं देखना पड़ता है कंटेंट के लिए. कंटेंट हमारे इर्द गिर्द ही है, सैंडी के अराउंड ही है.
1: Yes, he's talking about this interview. Rocketry actually में उनकी मूवी आई थी. It was his as a director also उनका डेब्यू था ये मूवी.
0: और बहुत ही बढ़िया मूवी थी यार ये.
1: The Nambi Effect.
0: The Nambi Effect. इसमें शाहरुख खान ने एक गेस्ट अपीयरेंस में रोल प्ले किया था.
1: Yes.
0: And he had not charged a single penny for it.
1: Yeah.
0: In fact, खुद की मेकअप वैन लेकर आके उन्होंने सब कुछ कराया था, मतलब खुद से ही सब किया था.
1: And also इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था रुजबे फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म. ये अवार्ड भी इस मूवी को मिल चुका था.
0: सो रॉकेट्री के बारे में एक सवाल पूछा था सैंडी ने इनसे कि अबाउट नाम्बी
1: जो है खुद वो कितना इन्वॉल्व थे इस मूवी में.
2: He was completely involved. मतलब ये पूरी कहानी उनके लाइफ के बारे में है. तो हर एक देखिए वो रॉकेट साइंटिस्ट है, उनका वो ये समझना कि उन्होंने क्या किया, कैसे इंजन बनाया, उसे समझने के लिए मुझे लगभग 1.5 साल लग गए सिर्फ ये समझने के लिए कि उनकी खासियत क्या है. क्योंकि आप जब आप किसी बायोपिक बनाते हो, अगर मान लीजिए वो डांसर है, सिंगर है, फाइटर है, तो ये दिखाना बहुत आसान है कि वो कौन से क्षेत्र में कितने काबिल हैं. क्योंकि अच्छा गा लेते हैं ये दिखाना आसान है, अच्छा फाइट कर लेते हैं ये दिखाना अच्छा है आसान है. पर एक रॉकेट साइंटिस्ट कितना अच्छा है वो आपको मैं कैसे दिखाऊं जब तक मैं सब्जेक्ट ना समझूं. तो वो हमेशा हमारे साथ थे, मैं वो सब्जेक्ट समझा, उन्होंने जो इंजन बनाई उसकी खासियत है. पर इस फिल्म में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई हैं जो पहली बार किसी भी सिनेमा में दिखाया हो. फॉर एग्जांपल, आज तक आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन या रियलिस्टिक फिल्में देखी होंगी जहाँ पे हमने रॉकेट का लॉन्च दिखाया है, रॉकेट दिखाया है, स्पेस दिखाया है, पर आज तक किसी भी फिल्म में रॉकेट इंजन नहीं दिखाया गया कि ये रॉकेट इंजन दिखता कैसा है. और मैं आप लेडीज को बता दूं कि अगर आप ये रॉकेट इंजन देख लोगे ना तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल डायमंड ज्वेलरी की तरह लगता है, बिल्कुल डायमंड ज्वेलरी की तरह, इतनी खूबसूरत और इतना साफ सुथरा एंड शाइनी कि मेरी बीवी कहती थी काश मैं इसको अपने गले में पहन पाऊं, इतना ब्यूटीफुल. पर जब ये चालू होता है तो इसकी जो आवाज है ये इंसान से के कानों से सुनने वाला सबसे लाउडेस्ट नॉइज माना जाता है. तो इस इंजन को बनाना, इसको दिखाना और इसकी खासियत, इसका डेंजर क्या है और कितने मतलब जानों जान को जोखिम में डालते हुए इन्होंने बनाया ये इंजन हमारे रॉकेट साइंटिस्ट, और पहली बार में कैसे सफल हुए और फिर कैसे इनको नीचे गिराया गया, कैसे इनको अरेस्ट किया गया.
1: तो ये देख रहे हो उसमें उनका पैशन अबाउट अ मूवी, जिस वे से उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया और 1.5 साल उन्होंने लगाया उस चीज को समझने के लिए बिफोर मेकिंग अ मूवी ऑन दैट सब्जेक्ट. So, उनका पैशन जो है उनकी आवाज में वो झलकता है जिस वजह से वो एक्सप्लेन करते हैं.
0: मैं ऑनेस्टली मैं खो गया था उनकी बातों में. लाइक
1: ही इज नॉनस्टॉप
0: सो वेल
1: एंड
0: ही लाइक ही इज मल्टी टैलेंटेड. लाइक पहले काम भी करते थे ना एक्टर बनने से पहले. And he's done a lot of struggle also.
1: Lot of struggle. और बहुत कम मूवीज बॉलीवुड में कम मूवीज की है, I will say. साउथ सिनेमा में काफी मूवीज की है और ये उनका एज अ डायरेक्टर डेब्यू था. तो इसलिए स्टडीड द सब्जेक्ट एंड ही मेड अ मूवी जो यंगस्टर्स को इंस्पायर कर सके.
0: जी सो रॉकेटरी का अनफॉर्चुनेटली कोई गाना नहीं है आपको हम सुना सके, लेकिन इनका एक छोटा सा रोल था इन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवी रंग दे बसंती.
1: ओह या ब्यूटीफुल.
0: ही वाज नॉट डायरेक्टली associated to a rocket but he was a pilot.
1: He was a pilot or
0: that's the closest we could get.
1: और उन्हीं के character के ऊपर जो होता है उसी के ऊपर पूरी की पूरी movie का climax
0: plot
1: based है.
0: हाँ पूरी movie का plot है उस एक character के ऊपर. So yes we are celebrating R Madhavan today. His birthday was on 1st of June. But अभी के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए.

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर। यार
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
5: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
6: We've got double glazing.
5: Have you still got that cold, damp feeling?
7: Yeah, we do.
5: So Tori and Ben got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
12: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
13: Worry? No worries.
14: South Auckland's buses just became a lot better.
13: Oh my, oh my.
14: With better bus routes, more frequent buses, and more.
13: Grey South Road, now even greater.
14: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
0: The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good brands mein hai.

0: इस गाने को सुनकर आप समझ ही गए रहेंगे कि आज हम आर माधवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका बर्थडे क्या 1 जून को, हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए लेकिन देर सही दुरुस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: वैसे आर माधवन के बारे में बोला जाए, उनका जो बेटा है ना, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। सो उनके बेटे ने एक्चुअली में कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ चूज किया था एज अ चैम्पियन कॉम्पिटिटिव स्विमर। सो काफी हेडलाइन भी रही है इन द वर्ल्ड, लाइक ही वन मल्टीपल गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स जहाँ पे इंडिया को उसने रिप्रेजेंट किया है।
0: जी एंड ही इज वेरी प्राउड, लाइक वो बोलते भी है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सन। एंड जिस हिसाब से उसको एक अलग फील्ड में उन्होंने यू नो काबिल बनाया है, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक्चुअली में ट्रेन भी हुए है बाय द ब्रिटिश मिलिट्री। सो लॉन्ग बिफोर इन्होंने कभी मूवी कैमरा फेस किया था, उनका ड्रीम था टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी और वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, इसमें इनको बेस्ट NCC कैडेट इन महाराष्ट्र इन्होंने ये अवार्ड जीता था।
1: wow.
0: और इसके कारण उनको एक रेयर स्पॉट मिला था टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, जहाँ पे उन्हें ऑफिशियल ट्रेनिंग मिली थी अलोंग साइड द ब्रिटिश आर्मी, द रॉयल नेवी एंड द रॉयल एयर फोर्सेस।
1: नाइस यार,
0: सो कूल।
1: मुझे लगता है कि शायद यही चीजें थी जो मे बी होता है ना कि ड्रीम होता है कि मुझे कुछ कंट्री के लिए अचीव करना था, देन आई थिंक उनके बेटे में वो चीज़ें आई कंट्री के लिए कुछ अचीव करने के लिए, अकम्पलिशमेंट्स के लिए, अपने बेटे के लिए उनको सिखाने के लिए। द एक्टर एंड द वाइफ दे एक्चुअली मूव टू दुबई।
0: Oh, wow.
1: काफी समय इसलिए वो गायब भी थे बॉलीवुड उन सब चीजों से,
0: इसलिए अभी अब जब देख रहे थे तब ज्यादा मूवीज नहीं दिख रही है उनकी।
1: या बिकॉज़ दे मूव्ड टू दुबई बिकॉज़ वहां पे वर्ल्ड क्लास ओलंपिक साइज स्विमिंग फैसिलिटीज है ताकि उसको वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। बट सो कूल ना, वहां पे उसने ट्रेनिंग ली, वहां पे स्टडी की, देन वेंट बैक टू इंडिया एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया।
0: ओह वाओ यार, एक्चुअली दैट्स एक्चुअली फैसिनेटिंग यार। एक्चुअली मैं ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की थी आर माधवन ने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था पब्लिक स्पीकिंग में, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते थे कोल्हापुर में।
1: और जो गाना हम अभी सुनने वाले हैं फ्रॉम तनु वेड्स मनु, आई लव द करेक्टर मैन।
0: अरे सुपर्ब कैरेक्टर,
1: मतलब एक कॉमेडी को भी आर माधवन ने एक रोमांटिक रोल भी किया, मतलब इन्फ्लुएंस करने वाले रोल भी किए, बट देन अगेन देन ऐसा करेक्टर किया जो फुल ऑफ कॉमेडी है,
0: full of life, full of comedy,
1: full of life and comedy,
0: and situational comedy काफी किया है उन्होंने इसमें।
1: Yes, serious face में comedy.
0: Yes. So आपके लिए from Tanu Vaidmanu this beautiful track.

0: Trend Makers.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. R Madhavan ko aaj hum tribute de rahe hain, shout out de rahe hain for kyunki unka birthday tha 1st of June.
2: Yes, and jis movie ka abhi aap gana sunne wale hain, kaafi logo ki favorite movie hai, Three Idiots.
1: Yes, I can watch this movie anytime, any day.
2: और इसमें जो इनका करेक्टर था ना, जैसे उसका फोटो में, फोटोग्राफी में शौक, ये काफ़ी लोग रिलेट कर पाए होंगे, बिकॉज इंडियन पेरेंट्स को या साउथ एशियन फैमिलीज़ को कह सकते हैं कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं होता कि फ़ोटो वीडियो में कोई करियर हो सकता है, दे लाइक कि पढ़ के कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, लाइक इसीलिए काफ़ी लोगों ने इसके फरहान करेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया था.
1: एंड काफ़ी लोगों ने ना आमिर खान के बारे में बात की थी कि आमिर खान ने कैसे एकदम यंग लगे थे वो, बट किसी ने माधवन के बारे में नहीं बोला था. माधवन भी काफ़ी यंग लगे थे,
2: बहुत यंग लगा था,
1: बहुत ही सॉलिड.
2: एंड द वे ही कैरीड द रोल फ्रॉम द फर्स्ट सीन ऑफ एयरप्लेन में जब वो बैठा होता है, वो एक्ट करता है हार्ट अटैक का, है ना, एक्ट करता है वो.
1: यस,
2: वहां से लेके ट्रैवल करना, फाइंडिंग द फ्रेंड, आमिर खान के करेक्टर को ढूंढने निकलना,
1: उसमें भी कॉमेडी करना, yeah.
2: तो वो सब चीजें, मतलब वहां से लेके टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स, इट वाज अमेजिंग एक्टिंग ऑफ आर माधवन.
1: उसका डायलॉग था ना कि अगर इस टाइम पे अगर वो कहता ना कि मेरा बेटा ये ये बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन फिर वो बमन इनानी तो भी बोलते हैं कि वो फुटबॉल लात मारता है, फुटबॉल बने. ओह गॉड,
2: आई थिंक ईच एंड एवरी डायलॉग ऑफ द मूवी इज अमेजिंग,
1: इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग. लेकिन अविशाल ने यहाँ पे मैसेज भेजा था, हमने बोला था, पूछा था कि आर माधवन ये सुनकर आपके मन में कौन सी मूवी आती है,
2: कौन सा कैरेक्टर आता है.
1: सो रामजी लंदन वाले, आई थिंक दैट वाज अ मूवी दैट अ लॉट ऑफ पीपल लव्ड, आर माधवन की मूवी,
2: कॉमेडी थी वो भी,
1: रामजी लंदन वाले. ये मूवी ज्यादा चली नहीं थी,
2: but like it was a nice movie, matlab aisa one time watch, achhi movie thi ye.
1: Yeah, a lot of people love the movie. But yeah, abhi jo gana aapko suna rahe, Three Idiots ka ye gana hai. I hope you love this one.
2: Aur isi note pe hum aapko yahan pe tata bye bye kehte hain.
1: Oh yes, hamare kalti maarne ka bhi time aa gaya. To ek jaane se pehle ab hum Three Idiots ka ye gana baja rahe hai, to ek aur cheez aapko bata de ki Three Idiots ka jo wo ek famous jo scene hai jahan pe वो लोग कॉलेज के वाटर टैंक पे जाके वायरस को यू नो गाली देते हैं कि ये क्या कर रहा है ऐसे वैसे, तो उसमें आमिर खान ने कन्विंस किया कि मेथड एक्टिंग करो और सबको थोड़ी थोड़ी दी थी.
2: ओ
1: या सो उन्होंने एक्चुअली में बहुत ही हैवीली ड्रिंक किया था बिफोर द कैमराज रोल, और माधवन ने बाद में एडमिट भी किया था कि दे ड्रैंक सो मच दैट बाय द टाइम बैंगलोर एयर हिट देम, it took them hours just to deliver a single line of dialogue.
2: Oh no,
1: wo kar hi nahi paye wo deliver kyunki log ne bahut zyada pee li thi, to unse ho raha tha, isliye
2: zyada character mein aa gaye,
1: zyada character mein aa gaye the wo log.
2: Anyway guys, thank you so much aapke saath ke liye. Isi note pe aapko hum kehte hain tata bye bye, ab aapse kal mulaqat hone wali hai.
1: Yes, take care of yourself, bye.

से भी हो सकता है ये प्यार तो है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

Rewind, सिर्फ रोवा पर। फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल

0: Healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
1: The heart of a healthy home, DVS.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: We've got your ticket to relax in paradise with The Islands on sale now with Air New Zealand. Create unforgettable memories. Hurry, sale ends midnight, 4 June. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or with your preferred travel agent.
5: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
6: हाँ. अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: நன்றி, நமஸ்காரம்.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: Happy Hour on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Consumer NZ is urging customers to check they're getting the discounts they're entitled to. The Commerce Commission is taking BP Oil NZ to court over alleged pricing errors at BP Connect stations. Customs says the seizure of methamphetamine valued at $13 million at Wellington Airport over the long weekend is another case of young New Zealanders being lured into dangerous criminal activity. And masses of sewer waste known as fatbergs have been washing up on a Nelson beach. The City Council says recent storm activity has caused the wastewater network to overflow, and material from it has been coming ashore at Tahunanui's Back Beach. In sport, football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup, and New Zealand's first World Cup warm-up match, and the All Whites were humbled by Haiti, losing 4-0. It marked New Zealand's worst defeat in 9 years. According to coach Darren Baisley, they came into the game with good preparation. They play England on Sunday morning our time. And the basketball, the NBL clash on Auckland's North Shore, the Auckland Tuatara hosting the Canterbury Rams. It's half-time. The Tuatara ahead, 57-47.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
8: Good afternoon everyone, welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट नाइट कैफे लेकर. लेकिन जबकि आज वेंसडे नाइट है, 3rd June है, तो नाइट कैफे के अंदर आपके लिए होता है एक स्पेशल सेगमेंट 8 to 9 PM जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं. विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं नाइट कैफे मिड वीक मसाला.
0: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है मिड वीक मसाला.
8: गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू द शो. मैं क्रिश लेकर आ गया हूँ आपके लिए नाइट कैफे मिडवीक मसाला, जिसमें बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें, लेटेस्ट मसालेदार गॉसिप आपके लिए रहेगा. साथ ही में क्या कुछ हो रहा है हमारे ग्लिट्स एंड ग्लैमर दुनिया में वो भी बताएंगे. डॉन 3 फॉलआउट एस्केलेट्स और इससे इंडस्ट्री वाइड डिवाइड हुआ है. राम गोपाल वर्मा ने फॉइस को FWICE जो है उसको उसके एक्शन को कैंगरू कोर्ट कहा है. रणवीर सिंह को बुडापेस्ट में देखा गया है अमिट कॉन्ट्रोवर्सी. साथ ही में 40 करोड़ का डिमांड, कॉम्पेंसेशन डिमांड किया जा रहा है फ्रॉम रणवीर सिंह फॉर फॉलोइंग हिज एग्जिट. पद्मिनी कोल्हापुरी ने रणवीर सिंह को पब्लिकली सपोर्ट किया है. और उर्वशी रौटेला ने वायरल AI रैंकिंग इमेज को क्रिटिसाइज किया है या रिएक्ट किया उसको लेकर. इस पर जानकारी आज रहेगा आपके लिए नाइट कैफे मिडवीक मसाला में. सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। शुरू करते हैं उर्वशी रौटेला से। इन्होंने कंडेम किया एक वायरल AI जनरेटेड इमेज रैंकिंग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, और इस इमेज ने काफ़ी डिबेट शुरू किया है अबाउट टॉक्सिक कंपैरिजंस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है। इन्होंने कहा है कि ये हार्मफुल और मिसलीडिंग है, और कंट्रोवर्सी ने हाईलाइट किया है कि AI का मिसयूज़ बहुत हो रहा है बॉलीवुड में और दुनिया भर में। एक्चुअली फैंस और सेलिब्रिटीज़ ने डिबेट किया है कि डिजिटल एथिक्स बॉलीवुड में बरकरार रहना चाहिए, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, और भी बॉलीवुड खबरें बहुत ही जल्दी आपको सुनाएंगे।

नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और भी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। पद्मनी कोल्हापुरी ने रणवीर सिंह को पब्लिकली सपोर्ट किया है और CINTAI मेंबर पद्मनी ने पब्लिकली रणवीर सिंह को बैक किया है और उन्होंने कहा है कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज प्रोफेशनलिज्म एंड रेपुटेशन। और इनका स्टेटमेंट कंट्रास्ट करता है विद फॉइसेस एक्शन और ये सपोर्ट हैज़ एडेड कॉम्प्लेक्सिटी टू द इंडस्ट्री स्प्लिट, क्योंकि अभी इंडस्ट्री इज़ लिटरली डिवाइडेड ओवर दिस इशू और ये इशू कंटिन्यूज टू पोलराइज बॉलीवुड फिगर्स। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि रणवीर सिंह के अगेंस्ट 40 करोड़ रुपीज़ का कॉम्पेंसेशन डिमांड है। साथ ही में रणवीर सिंह को बुदापेस्ट में भी देखा गया है यहाँ पर विद एन आर्सेनल फुटबॉलर, जबकि कंट्रोवर्सी इधर मुंबई में या इंडिया में जारी है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। रणवीर सिंह को बुडापेस्ट में देखा गया और वो भी आर्सेनल फुटबॉलर डेक्लन राइस के साथ में। ये अपीयरेंस तब हुआ जब फॉइसेस डायरेक्टिव अगेंस्ट हिम वाज स्टिल एक्टिव। फोटोज ऑफ हिम मीटिंग हिम वेंट ऑन वायरल ऑनलाइन और एक्टा को भी रिलीजियस साइट्स विजिट करते हुए देखा गया है, जबकि कॉन्ट्रोवर्सी इधर इंडिया में जारी है। फैंस ने इंटरप्रेट किया हिज एक्शंस एज हिम स्टेइंग काम अमिड प्रेशर। तो प्रेशर बहुत है इनके ऊपर आई एम श्योर इस कंट्रोवर्सी को लेकर, लेकिन ही वाज सीन और स्पॉटेड इन बुडापेस्ट विद डेक्लन राइस जो फुटबॉलर है, आर्सेनल फुटबॉलर। कुछ देर में मैं आपको रामगोपाल वर्मा ने फॉइस एक्शन को कैंगरू कोर्ट कहा है इस पर जानकारी दूंगा।

0: माई एफएम के वाइब्स। मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: वांट टू गो हाल्फ्स विद मर्क्यूरी? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून।
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटेड एम।
4: थोड़ा हटके थोड़ा स्पाइसी ये है मिड वीक मसाला आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम।
5: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। रामगोपाल वर्मा ने कहा है कि जो वॉइस एक्शन है वो एक कंगारू कोट है। डायरेक्टर काफ़ी क्रिटिकल कमेंट्स देते हुए पहले भी नज़र आए हुए थे, सुर्खियों में थे और इस बार भी आए हैं, जिन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया है वॉइस एक्शन अगेंस्ट रणवीर सिंह। इन्होंने कहा है कि डिसीशन अनफेयर है और लाइकेंड इट टू ए कंगारू कोट। वर्मा ने आर्ग्यू किया है कि स्टार्स आर एसेंशियल टू द इंडस्ट्री सर्वाइवल और इनका कमेंट्स ने फ्यूलेट किया है टू एन ऑलरेडी हीटेड डिबेट जो चल रहा था। और इस स्टेटमेंट से पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ही देर तक और आपके लिए जारी रहेगा नाइट कैफे मिडवीक मसाला।

नाइट कैफे मिडवीक मसाला में एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 40 करोड़ रुपीस का डिमांड हुआ है अगेंस्ट फॉर कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट रणवीर सिंह. रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि डॉन 3 प्रोड्यूसर्स ने कॉम्पेंसेशन मांगा है आफ्टर रणवीर सिंह एग्जिट, और ये लॉसेज आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 40 to 45 crore. फाइनेंशियल डिस्प्यूट ने लीगल प्रेशर एड किया है टू द कॉन्ट्रोवर्सी, जहाँ पर लॉयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, और इंडस्ट्री बॉडीज ये सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इससे बहुत अनसर्टन हो सकता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. बॉलीवुड खबरें आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऑब्वियसली बाकी शिफ्ट्स में और आगे चलकर भी बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, लेकिन मिडवीक मसाला में आज के लिए इतना ही. अगले घंटे पर मुलाकात होती है.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: to 10 a.m. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
1: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. Four teenagers are lucky to be home safe after becoming stranded in Tasman's Richmond Ranges. The group was forced to hunker down at Mid Wairoa Hut after flooding made it too dangerous to cross a river on Monday. They were choppered out yesterday. Six people are facing a combined 61 charges for alleged mortgage fraud. The Financial Markets Authority says their alleged actions undermine trust and confidence in the country's lending system and banking institutions. It's believed residential construction costs may trend upward for some time yet. New figures suggest a recent fall in diesel prices hasn't been enough to offset hikes elsewhere in the industry. In sport, football updates brought to you by Hisense. The All Whites have suffered their worst loss in 9 years, just 9 days out from the World Cup. They've been outclassed 4-0 by Haiti in Florida. There's another warm-up game on Sunday morning our time against England. And the basketball, the NBL clash on Auckland's North Shore. The Auckland Tuatara led the Canterbury Rams by 10 at halftime. And they've gone on to win. They just hung on 100-97.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
2: 3rd जून है और मैं क्रिश नाइट कैफे लेकर आ गया हूँ आपके लिए. फर्स्ट आवर में आपने सुना नाइट कैफे मिडवीक मसाला, जिसमें बॉलीवुड खबरें थी, और सेकेंड आवर में आपके लिए बहुत कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हम लेकर आएंगे. खासतौर पर सामाजिक सूचना है जो मुझे आपको बताना है. इसके अलावा इंडियन इंक थिएटर कंपनी द्वारा एक इवेंट होने को है, इस पर जानकारी देंगे. पॉडकास्ट पर भी जानकारी हमारे पास है, आप ये सुनना ना भूलें. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातें हो रही है, ये सभी कुछ इसी घंटे पर लेकर आएंगे. बट फर्स्ट आप न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में आपको तो पता है कि क्या होगा आपके लिए. 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक. बहुत ही प्यारा ये लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स मैंने रखा है आपके लिए, जो आप सुनेंगे एक के बाद एक. सो शुरू करते हैं आतिफ असलम, श्रेय घोषाल की आवाज़ों में. फिर सिद्धार्थ बसरूर आएंगे, अभिजीत, सुनिधि चौहान, फारिस शाफी और सचिन टेंडन जैसे कलाकारों को आप सुन पाएंगे अमेजिंग ट्रैक्स के साथ. एंजॉय कीजिए. नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में तो आपने सुना होगा, रिज़्बे और सैंडी के साथ बहुत ही वंडरफुल इंटरव्यू होते हैं अलग लोगों के साथ. WWE में क्या होता है, क्या ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है या रियल फाइटिंग है, इस पर कुछ बातें होंगी. और इनका इंटरव्यू हुआ है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शंकी सिंह, एक 7-foot-tall रेसलर है ये, और हु मेड इट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन ऑफ हरियाणा टू ग्लोबल WWE स्टेज. कुछ ऐसी बातें यहाँ पर होगी जो आप सुनना चाहेंगे. द ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड है एंड व्हाट्स रियल. ब्रूटल जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू WWE फ्रॉम इंडिया. लाइफ बिहाइंड द सीन्स एट द परफॉर्मेंस सेंटर. रिस्क, इंजरीज और फिजिकल टोल ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग. साथ ही में इनका टाइम विद सलमान खान जब इन्होंने फिल्म भारत में काम किया इनके साथ में, और अनटोल्ड स्टोरीज और लॉकर रूम रियलिटीज़ और थिंग्स जो फैंस को कभी पता नहीं चलता है. इनका ट्रेनिंग अंडर द ग्रेट खाली ये कैसा रहा, टू परफॉर्मिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस, इस पर भी बातें होंगी. तो आप टेक्स्ट करते हैं ड्राइव 5599 पर तो ऑडियो और वीडियो एपिसोड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा. ये वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है बाय इंस्पायर मीडिया, बाय इंस्पायर मीडिया वर्क्स, जो मार्केटिंग, रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोस करते हैं. आप केतन से बातें कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स. कुछ देर में ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बातें करेंगे आपके लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती है रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: From climate change to a lack of loose change. From small changes to changes in global power. Change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News. Change is in the air.
5: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe where dreams begin.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways travel deals are on now. Fly to Fiji from just $329 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like Canada from just $999 one way, Japan from $685, Hong Kong from $739, Samoa from $305, or Vanuatu from $365 one way. Book now at FijiAirways.com or call your local travel agent. Conditions apply.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
8: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Hum.
0: Night Cafe on Hum.
10: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका है पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा यहाँ पर रहेंगे ये जो इवेंट है श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है 5 to 11 June के बीच ये होगा और महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर आप जा सकते हैं 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ओकलैंड आपको पहुंच जाना है और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है
11: हेलो हेलो साहब कदरदार
12: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या
13: अबे नौटंकी बंद करो पिंकी आ रही है

0: ओके बाय.
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: नाइट कैफे आपके लिए जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 3rd June आज है, आपका जन्मदिन है. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको विश करना चाहेंगे. ऑनलाइन लिसनर्स जितने भी है, आपका भी अगर जन्मदिन है आज है, आप हमें सुन रहे हैं या आपका स्पेशल डे बहुत ही जल्द आने वाला है, टाइम डिफरेंस की वजह से शायद आपका अभी भी ख़त्म हुआ या बस आने वाले हैं कुछ ही घंटों में, तो फिर हैप्पी बर्थडे आपको विश करना चाहेंगे टीम हम की ओर से. बहुत सारा प्यार, बेस्ट विशेज हमारी ओर से आप तक पहुंचे. रोवर लिसनर्स को भी शामिल करते हैं अगले गाने पर. नाइट कैफे में मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं, मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा.
4: चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे. पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz. Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
3: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
4: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Consumer NZ is welcoming a probe into claims of pricing errors at BP Connect. The Commerce Commission is taking BP Oil NZ to court, accusing the fuel giant of failing to give customers discounts they were entitled to. Nearly 40 kgs of meth have been intercepted at Wellington International Airport. Two New Zealand women arriving on a flight from Malaysia were arrested after the drug was found hidden in their suitcases in foil packets of branded tea. The country's fuel stocks have dipped across the board. Diesel is down the most by almost 4 days. However, all are still within normal levels. In sport, Moana Pacifica facing more than $8 million in creditor claims, according to the first report from liquidators appointed to the collapsed Super Rugby franchise. And a boost for the New Zealand cricket summer, India coming here for a 12-match tour from late October. There are five T20s, five ODIs and two test matches. One of the ODIs in Wellington is on election day. 12 matches are the most internationals scheduled for an inbound tour in New Zealand cricket history.
5: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
6: नाइट कैफे आपके लिए जारी है हम पर और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं नाइट कैफे में। इट्स पास 10 आफ्टर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट। 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक हम शुरू करेंगे आपके लिए इस घंटे पर। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकते हैं ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि विंटर के दौरान मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो सकता है, मेनली थ्रू रिड्यूस सनलाइट, लोअर एक्टिविटी और मोर आइसोलेशन। तो कुछ प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड वेज में आपको बताऊंगा कि आप अपना मेंटल वेलबींग मेंटेन कर पाएंगे ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स, और बहुत ही जल्दी ये टिप्स मैं इसी घंटे पर आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल नॉनस्टॉप म्यूजिक आपको सुनाते हैं 30 मिनट्स के लिए। रेखा भारद्वाज, अरिजीत सिंह, उदित नारायण, सुनिधि चौहान, चिन्मयी, श्री राम चंद्रा, राहत फतेह अली खान जैसे धुरंधर सिंगर्स की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा ये लिस्ट आपके लिए तैयार किया गया है। एंजॉय एवरीवन।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You are listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. पॉडकास्ट आप सुन पाएंगे हमारे अनाउंसर्स द्वारा. अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में मैंने आपको बताया और ब्रेकफास्ट कैचअप एक और पॉडकास्ट है जो आप सुन पाएंगे. कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा, अलग अलग मुद्दों पर बातें होती है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. अगर आप टेक्स्ट करते हैं BF5599 पर तो आप कैचअप कर पाएंगे ऑन द पॉडकास्ट. तो BF टेक्स्ट करें ना भूलें 5599 पर, जहाँ पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, लिंक मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे और क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ किन टॉपिक्स पर बातें होती है, कन्वर्सेशंस होती है विद विजय एंड पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये भी सुनने का मौका रहेगा. सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: Night Cafe.
7: आप सुन रहे हैं आपका नंबर

गई है यहाँ पर आपके लिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और भी जानकारी के लिए 021-0299-1219 पर आप संपर्क कर पाएंगे। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: नाइट कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24 कहीं भी। rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains and most ferries with any of them. Just turn up, tag on and save when you ride with Auckland Transport.
2: MediaWorks complaints. How can I help?
3: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
2: Thank you.
3: It's all I can think about.
2: What does it sound like?
3: Yeah, I'd rather not.
2: Go on, why don't you have a crack?
3: Okay, got a plumbing problem.
2: Oh, I need a bit more than that.
3: They've got your back.
2: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
3: Oh, okay.
4: There's no better plumber to give it a crack.
2: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
3: No, I want a plumber.
5: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
6: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
7: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
6: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
7: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
8: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: हम टाइम चेक। हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
14: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Consumer NZ is welcoming a probe into claims of pricing errors at BP Connect. The Commerce Commission is taking BP Oil NZ to court, accusing the fuel giant of failing to give customers discounts they were entitled to. Nearly 40 kgs of meth have been intercepted at Wellington International Airport. Two New Zealand women arriving on a flight from Malaysia were arrested after the drug was found hidden in their suitcases in foil packets of branded tea. The country's fuel stocks have dipped across the board. Diesel is down the most by almost 4 days. However, all are still within normal levels. In sport, Moana Pacifica facing more than $8 million in creditor claims, according to the first report from liquidators appointed to the collapsed Super Rugby franchise. And a boost for the New Zealand cricket summer, India coming here for a 12-match tour from late October. There are 5 T20s, 5 ODIs and 2 test matches. One of the ODIs in Wellington is on election day. 12 matches are the most internationals scheduled for an inbound tour in New Zealand cricket history.
13: Sports News. Brought to you by Sony.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe Jari aur main Krish aapke saath de raha hoon. Final hour mein aapka swagat hai. 3rd June aaj hai. Aur jitne bhi humare pyare listeners apna janamdin celebrate kar rahe hain. Kuch special occasion hai. Kuch something interesting hua hai. Aur aap celebrate kar rahe hain. Ya celebrate aapne kiya hai. Toh humari or se bahut sari badhaiyan. Is ghante par kuch tips denge aapko ki kaise aap winter ke dauran apna mental health bana kar rakh sakte hain. Kuch interesting jankari jo hume mila hai. Wo aapke saath share karna main zaruri samajhta hoon. Toh ye bhi aapko main bata. बहुत ही जल्दी फिलहाल बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाता हूँ. ये सॉन्ग्स जो है बहुत ही प्यारी लिस्ट है, आप खुद ही सुने और आप हमें बताएं कि आपको ये लिस्ट कैसा लगा जो आपके लिए हम लेकर आए हैं. गिने चुने गाने जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और ऐसे ही हमारा साथ मिडनाइट तक चलता रहेगा. वेलकम बैक एवरीवन एंड प्रेजेंटिंग 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक फॉर यू. एंजॉय.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: विंटर के दौरान मेंटल वेलबींग को बनाकर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिड्यूस सनलाइट, लोअर एक्टिविटी और आइसोलेशन की वजह से मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकता है. तो पहला टिप ये है कि डेलाइट आपका जो सर्कैडियन रिदम है और मूड है उसको रेगुलेट करता है, इसलिए आप बाहर जाए मॉर्निंग या मिड डे. अगर क्लाउडी भी हो 10 से लेकर 30 मिनट तक वॉक अप ज़रूर करें और इट कैन मेक अ नोटिसेबल डिफरेंस. और कर्टन्स को ओपन रखें ड्यूरिंग द डे ताकि लाइट अंदर आए. और अगर सनलाइट लिमिटेड है तो एक लाइट थेरेपी लैंप भी आप ले सकते हैं जो कुछ लोगों को हेल्प कर सकता है. एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन के बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी जानकारी दूंगा.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है अपने मेंटल हेल्थ को बना के रखने के लिए ड्यूरिंग विंटर. मूवमेंट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूड स्टेबलाइजर्स बताया गया है. इंटेंस वर्कआउट शायद आप नहीं कर पाए, लेकिन वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा या होम वर्कआउट, ये सब सभी कुछ काउंट करता है. इससे एंडोफिन्स रिलीज होते हैं और स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है. इवन 10 से 15 मिनट तक अगर आप डेली कुछ करते हैं, ये विंटर स्लगिशनेस को कम कर सकता है. द की इज़ कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी नहीं, तो आप कंसिस्टेंट रहे यही बड़ी बात है. इन बातों के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात कल होती है. बाकी की रात अच्छी तरह बीते, कल का दिन अच्छी तरह बीते. गुड नाइट एवरीवन.

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Night Flight on.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है. 6 to 10 a.m.

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June।
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटेड एम।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Budget gaane.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June।
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटेड एम।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फिजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस।

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Playing Bollywood's biggest hit.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur West City Omura Jaiku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System, performance bhi, efficiency bhi, aur all electric J5 EV, zero emissions, maximum savings. Aaj hi West City Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit westcityautogroup.nz or search for West City Auto Group on socials.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
6: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods.
7: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
8: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 6. A study on the impact of meth on the brains of former long-term users is being described as a jumping-off point. It has so far found a link with shrinkage in areas which help with impulse control. Lead author Ben Bristow says they'll follow the subjects for a year.
10: Where we can look over time, depending on if they've stayed abstinent or relapsed, do we see changes in the brain? Does the brain recover?
9: It's hoped a major investment of solar panels for schools will help them become a hub during emergencies. The Principal Federation's Jason Miles says there are learning opportunities too.
11: It would be wonderful to see the government also looking at how students can be educated in regards to solar that is going into schools.
9: Ticket prices for the Te Huia train service between Auckland and Hamilton are going up 25%. Waikato Regional Council Chair Warren Mayo says it's only fair.
12: Te Huia's run at a fairly low fare recovery. Also recognise the fact of rising fuel costs and the fact that it is subsidised by ratepayers and taxpayers.
9: Donald Trump admits using expletives when addressing Israel's Prime Minister and calling him crazy during a recent phone call. But he told a New York Post podcast he wasn't angry at him.
13: I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, maybe we got to stop this.
9: In sport, for the first time in 49 years, there will be no Grand Slam tennis champions at the French Open semi-finals. Women's number one, Aryna Sabalenka, going down in the quarterfinals to Diana Schneider.
14: No thoughts, no emotions, just want to quit tennis right now.
9: Auckland Tuatara have gone to the top of the National Basketball League with a 100-97 win over the Canterbury Rams.
0: Sports News,
8: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Ross Skill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: 11 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain aaj ka high 20 overnight kam se kam 15 degrees badal chhaye rahenge sham ke waqt kuch halki barish ho sakti hai sunrise subah 7:26 minute par aur aaj ka sunset sham 5:13 minute par hoga
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja
0: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins Fortune fuels every win big or small bring home the fortune
8: Breakfast catch up
15: 3 minutes हो रहे हैं 6:00 नमस्कार अ वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आपका खास स्वागत हम कर रहे हैं बृहस्पतिवार की ये सुबह आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग
16: गुड मॉर्निंग नमस्ते आप सभी को भी आज के सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से
15: और होपफुली कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा और अब एक नई सुबह के लिए एक नए दिन के लिए आप तैयार होंगे और अपनी तैयारियों में आप हमें भी शामिल कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
16: जहाँ कहीं भी है आप साथ आप हमारे दे रहे हैं आज की सुबह की शुरुआत आपने हमारे साथ की है अपना कीमती समय और साथ आपने हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनफैक्ट जितना आपका शुक्रिया अदा करें उतना कम है पर खुशी इस बात की है कि आप हमारे साथ आज बने हुए हैं और आज के सफर की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर ब्रेकफास्ट कैचअप हम आपके लिए लेकर आए हैं तो हम भी आपके साथ एक क्विक कैचअप जरूर करेंगे
15: और इस घंटे ग्लोबल हेडलाइंस हैं आपके लिए साथ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपको देने वाले हैं फन एंड एंटरटेनमेंट कॉम्पिटिशंस में भी हिस्सा लेने का मौका और मिलकर हम और आप आज का ये सफर जो है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा तय करने वाले हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से डिटेल्स जो है ये हम आपको देते रहेंगे शुरू करेंगे आज के सनी साइड अप स्टोरी के साथ थोड़ी ही देर में

0: Sunnyside Up.
1: अभी आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है ये एक यंग पर्सन के बारे में है। ये जो है अपने घर से अपनी फैमिली से दूर रहते थे और वहाँ काम शहर में काम करते थे एंड इनके पिता जो है इस दुनिया को छोड़ चले। तो वो वापस अपने घर जा रहे थे जब एक गैराज के पास ही उनकी गाड़ी जो है ये ख़राब हो गई। तो गैराज के बिल्कुल पास ही थी, वो गए गैराज में और जो मैकेनिक है उनसे कहा कि उनके पास स्पेयर सिर्फ $50 पैसे हैं बट ही डेस्परेटली नीडेड द कार ताकि वो 3 घंटे का सफ़र अपना तय करके अपनी फैमिली के पास पहुंच सके। तो मैकेनिक जो है इनको तकरीबन 2 घंटे लगे जो प्रॉब्लम्स थी उसे सॉल्व करने में और गाड़ी को ठीक करने में, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी की चाबियां जो हैं ये उस यंग पर्सन को दी, उस शख्स को दी और उनसे $50 पैसे जो हैं ये ले लिए। और लड़का जब आकर गाड़ी में बैठा और when he got into the driver's seat उसने देखा कि $50 का एक नोट जो है उसके कप होल्डर में था और उसके साथ एक हैंड रिटन रिसीट था, पेड इन फुल, ड्राइव सेफ And go be with your family.
2: तो ये जिन्होंने गाड़ी ठीक की उन्होंने रखा।
1: हाँ।
2: But why?
1: Why क्या?
2: Like what was the reason he did that? He felt like he's going to meet his family and he felt emotional about it and he just wanted to help the boy.
1: Yeah, definitely help करना चाहता था और साथ ही में उसने $50 पैसे जो है और ये रख दिए वहाँ पर क्योंकि लड़के ने पहले ही बोल दिया था कि उसके पास सिर्फ $50 पे है ना।
2: Oh, so he gave it back to him.
1: Yeah.
2: Yeah, this is so beautiful ना कि आप कभी-कभी most unexpected way में आपको कोई ना कोई आप you know आपको खुश कर देता है, आपकी मदद कर देता है and you just remember that moment. Oh, you remember that person. बिना उनका नाम जाने, बिना उनकी पहचान के बारे में ज़्यादा पता किए आपको वो शख्स याद रह जाते हैं और कहीं ना कहीं आप यू नो उनसे कुछ सीखते हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ हमेशा जुड़ जाता है। सो दिस इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड ऐसी ही खूबसूरत यू नो ब्यूटिफुल सनी स्टोरीज जिसे हम कहते हैं सनी साइड अप में आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।
1: थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस जो है ये आपके लिए होंगे।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
2: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
3: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: The beat of Bollywood,
11: world's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
12: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
13: सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में, यूएस मिलिट्री द्वारा एक ऑयल टैंकर को डिसेबल करने के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में यूएस बेसिस और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक वेसल पर पलटवार करते हुए अटैक्स किए हैं। ईरान ने इन स्ट्राइक्स के दौरान कुवैत एयरपोर्ट पर एक इंडियन नेशनल की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच यूएस ईरान पीस अग्रीमेंट के बीच इसराइल द्वारा बेरूत पर अटैक्स की धमकी से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हैं और आज यूएस में इसराइल लेबनान के बीच नए राउंड की बातचीत चल रही है। डीके शिवकुमार के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद को नया स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और अब पार्टी के अंदर एक बड़े नेशन वाइड रिशफल की उम्मीद है। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ एक मीटिंग की थी, जहां आधे से ज्यादा स्टेट्स के इंचार्ज और प्रेसिडेंट्स को बदलने पर चर्चा हुई। फिजी के कॉन्स्टिट्यूट रिव्यू कमीशन के चेयरमैन सेवलोनी वालिनी तंबुआ ने कहा है कि उनके पास 31 अगस्त तक रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल तैयार करने के लिए काफी वक्त है और उनका फोकस इस समय पूरे देश से पब्लिक फीडबैक लेने पर है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार कमीशन ने कॉमन नेम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेक्युलर स्टेट और बिल ऑफ राइट्स जैसे अहम मुद्दे निकालकर सामने इस रिव्यू में ये सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही नेशनल यूनिटी और सोशल कोहिजन पर फैसला लिया जाएगा। आज सुबह एक बार फिर कई इंटरनेशनल फुटबॉल फ्रेंडलीज खेले जा रहे हैं। अभी गिलबर्टा की जीत ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के खिलाफ 3-0 से हो रही है। अल्बेनिया इसराइल 0-0 से बराबर हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेनमार्क के बीच प्रथम हिस्से में खेल जारी है और दोनों टीमें 0-0 से बराबर है। 7:45 बजे 3 मैचेस खेले जाएंगे। लक्समबर्ग की भिड़ंत इटली से होगी, नेदरलैंड्स अल्जीरिया से खेलेगा और पोलैंड का मुकाबला नाइजीरिया से होगा। आज दिन में 1:15 पैनामा डोमिनिकन रिपब्लिक से खेलेगा, जबकि 1:00 साउथ कोरिया और एल सेल्वाडोर का मैच होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
10: Hollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
15: मैं लाऊं अपना A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
4: दोनों डील कर
0: टाइट वेरी टाइट

0: 6:30 बज रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, आपको याद है?
1: हाँ जी, मैंने देखी है ना ये फिल्म. आई थिंक इसमें राजकुमार राव और कृति कुल्हारी ये थे,
0: पता नहीं कौन थे.
1: अच्छा, आपको याद भी नहीं?
0: मैंने नहीं देखी है.
1: ओके.
0: लेकिन ये अभी एक थीम जैसा बन गया है इन इंडिया और हिंदी फिल्म लवर्स के बीच.
1: कैसा थीम?
0: शादी में जरूर आना.
1: मतलब
0: शादी हो रही है.
1: किसकी?
0: आमिर खान और गौरी स्प्रेट की.
1: ओह अच्छा, ओके. मुझे लगा आप किसी फिल्म के बारे में ही बातें कर रहे हैं, बिकॉज़ वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन विद द मूवी टाइटल. अच्छा, कब कर रहे हैं शादी?
0: 5th ऑफ जुलाई को इनकी शादी होने जा रही है.
1: अगले महीने
0: दोनों ने अब डिसीजन लिया है कि अपने रिलेशनशिप को ये फॉर्मलाइज करेंगे थ्रू ए रजिस्टर्ड मैरिज. घर पर ही उनके ये होगा. इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट दी है. और अभी हालांकि इनकी शादी जो है आमिर खान के घर पर होगी, उतना ज़्यादा पब्लिक या फिर गेस्ट शायद नहीं हो. हालांकि अभी तक गेस्ट लिस्ट रिवील नहीं किया गया है, लेकिन देयर इज बज कि सलमान और शाहरुख ये शायद इन अटेंडेंस हो.
1: Okay, that's interesting. And of course, if they've decided to do that, it's good on them. Many, many congratulations. 5th of July is the date, jahan par let's see what happens. Aapko update wagera jo hai ki hum zarur dete rahenge. Aur dusri aur ye khabar bhi aa rahi hai that jo ban lagaya gaya tha Ranveer Singh par, if you remember. Over you know that situation
0: Don 3 ko lekar,
1: Don 3 ka, yeah, unhone Don 3 se exit jo hai ye kiya tha, aur us situation ko lekar inke upar jo ban lagaya gaya tha. Apparently, खबरें आ रही है that the ban has been finally lifted. और मैं एक रिपोर्ट जो है ये पढ़ रही थी, आई थिंक ऑन स्कूप ऑफ इसे अपडेट जो है ये किया गया था. एंड वहां पर ये बात जो है ये सामने आई है. They've published the article saying कि finally the ban has been lifted over Ranveer Singh. और ये जो बैन है इन्होंने विदड्रू किया, मतलब FWICE ने विदड्रू किया. और इट वाज अ नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव जो रणवीर सिंह के अगेंस्ट लगाया गया था ऑन द 3rd of June. इसे हटाया गया है. ये कहा जा रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है ये तब शुरू हुआ जब फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 से रणवीर सिंह ने एग्जिट जो है ये लिया. इट वेंट टू द कोर्ट्स एंड उसके बाद में चलकर ये जो फॉल आउट उनके बीच हुआ उसको लेकर भी काफी बातें हुई हैं. काफी एलिगेशंस जो है ये लगाए गए हैं दैट द एक्टर्स डिपार्चर हैड कॉस्ट द प्रोडक्शन हाउस 45 करोड़ का नुकसान. और ये पूरा का पूरा सिचुएशन जो है ये सामने आया, जहां पर आई थिंक वी हैड स्पोकन अबाउट दिस कल या परसों ने बातें की थी अबाउट सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, और साथ में जो इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स है उनका एसोसिएशन है, और उसके अलावा और भी कई इंडस्ट्री बॉडीज है जिन्होंने बोथ साइड ऑफ द पार्टीज को अर्ज किया कि आप एक कॉमन ग्राउंड पर आकर यू नो ट्राई एंड फाइंड अ सोल्यूशन. तो FWICE के जो प्रेसिडेंट है BN तिवारी, इन्होंने ये बात क्लियर की है दैट द मूव शुड नॉट बी रेड एज अ विक्ट्री और डिफीट फॉर एनीवन, क्योंकि वो स्ट्रेस कर रहे हैं दैट द फोकस मस्ट रिमेन ऑन अ रेजोल्यूशन जो काम करे फॉर एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स अलाइक. और इनके जो चीफ एडवाइजर है अशोक पंडित, उन्होंने कहा है कि दिस वर्ड बैन बेसिकली इसे अब हटा देना चाहिए, क्लैरिफाइंग दैट द फेडरेशन ओनली हैज द पावर टू इशू नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव्स टू इट्स मेंबर्स एंड कैन नॉट स्टॉप एनी आर्टिस्ट फ्रॉम वर्किंग. तो ये कोई बैन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट कोऑपरेटिव नहीं है, दैट्स द थिंग. एंड दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, यू नो कास्टिंग डायरेक्टर्स कि वो उस पर्टिकुलर शख्स को चूज करते हैं या नहीं. मीनवाइल FWICE ने कन्फर्म किया है दैट इट हैड रिसीव्ड अ लीगल नोटिस फ्रॉम रणवीर सिंह, और उनका जो लीगल टीम है वो फिलहाल उस लीगल नोटिस को रिव्यू कर रहे हैं.
0: ओके, तो मामला आगे अभी बढ़ रहा है. लेट्स सी जो भी होता है, होपफुली देयर इज एन एमिकेबल सॉल्यूशन टू दिस होल फियास्को, क्योंकि काफ़ी ये सीरियस समय के साथ होता जा रहा है. और अगर आपने जो कहा कि रिपोर्टें आ रही हैं कि मैं भी ये जो नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू किया गया है उसे अपलिफ्ट कर लिया जाए या फिर उसे हटा लिया गया है, तो और भी बढ़िया बात है. खैर, बॉलीवुड में तमाम चीज़ें और भी हो रही हैं, इनके बारे में बातें एज वी मूव अलोंग हम आपको देते रहेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. अभी 26 मिनट रह गए हैं 7 बजने में.
2: The show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: हम एक
3: accurate traffic.
4: New Zealand runs on fibre.
5: Good morning. Showers, then a cloudy afternoon with a high of 20. On the northern, 24 minutes from Constellation Drive to the city. On the northwestern, it's 25 from Massey, congested in patches to Te Aratu. On the southern, half an hour from Monaco, it's 58 from Drury. And the southwestern is slow citybound at Puanui Road. And the run to the airport taking 25 minutes at the moment.
4: Traffic jams should be contained to the roads and not your internet. Ask for fibre.
6: Professional Financials has saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
7: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
6: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
7: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
8: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
9: We've got double glazing.
8: Have you still got that cold, damp feeling?
10: Yeah, we do.
8: So Tori and Ben got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
12: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 23 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और सबसे पहले अभी तो आपके जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस अभी तक आए हमारे पास राम राम जय साई राम हैप्पी थर्सडे एवरीवन हैव अ ग्रेट डे मिस्टर माटा माटा आपको भी इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं
3: और इनके अलावा अगर देखा जाए तो एक मैसेज आज आया है मैनी की ओर से गुड मॉर्निंग विजय पूजा हैव अ गुड डे इन्होंने कहा है
2: बड़े दिनों बाद आज अश्विन का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग विजय भाई एंड पूजा जी हैव अ नाइस डे गॉड ब्लेस यू बोथ आपको भी इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं
3: और साथ में बॉबी मान जी हर सुबह की तरह इन्होंने आज भी हमें याद किया है जय साई राम गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय हैप्पी थर्सडे इन्होंने कहा है थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: साई राम भाई विजय एंड पूजा कीप हमिंग हैव अ ग्रेट डे संजेश आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ वंडरफुल डे
3: जय श्री राम पूजा और विजय हैव अ ग्रेट डे राधा कृष्ण ब्लेसिंग्स ऑन यू ऑल परमा महाराज जी की ओर से ये मैसेज आया है अब इतने मैसेजेस आपने भेजे हैं तो एक और एक मैसेज भेजने का हम आपको रिमाइंडर दिला दें और वो है आज अगर आपका या फिर आपके समवन रियली रियली क्लोज का बर्थडे है या फिर वेडिंग एनिवर्सरी है तो 5599 पर आप हमारे पास मैसेजेस जरूर भेज सकते हैं बिकॉज अगले घंटे हम आपको विश करने वाले हैं और आज ये जो स्पेशल डे है आपका 4th of June इसे और भी स्पेशल हम बनाएंगे आपके लिए हम पर आपके अपनों को विश करते हुए
2: वैसे ये भी आपको बता दें कि एशबर्टन का एक पर्सन है जिन्होंने $28.2 million जो है ये कल रात जीते
3: अच्छा जीत लिया किसी ने
2: ओके तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको ये टिकट जो है फोस्कोया नेदरबाय में बेचा गया था एंड इट इज मेड अप ऑफ $28 million पावरबॉल फर्स्ट डिवीजन और $200,000 लोटो फर्स्ट डिवीजन जो है यहाँ पर चार अन्य लकी लोटो प्लेयर्स जो हैं विल आल्सो बी सेलिब्रेटिंग विनिंग 200,000 लोटो फर्स्ट डिवीजन में विनिंग टिकट्स जो हैं निवोल ब्राउन्स बे इन ऑकलैंड ग्लेन इन डेयरी लोटो आउटलेट ऑकलैंड और दो जो है एट फोस्कोया नेदरबाय इन एशबर्टन अच्छा और भी विनर्स वहां से हुए हैं
3: तो मतलब चारों के चारों जो यू नो बाकी जो विनर्स है 200,000 के ये भी सारे आउटलेट से टिकट्स लिए गए
2: या तो
3: मेरे $20 बर्बाद हो गए
2: अभी इस साल अगर देखें 14th जनवरी को somebody won $10.2 million, 21st January $5.3 million, 14th February $5.08 million, तीन लोगों ने जीते थे 18th February $4.5 million और उसके बाद 28th March को दो लोगों ने $12.75 million जीते 15th April को $14.3 million, 22nd April को $5.5 million और कल $28.2 million
3: Interesting. Yeah, congratulations to all the winners. But being very honest, यार, अगर human nature के बारे में आपको समझना है तो ऐसे बड़े बड़े लोटो ड्रॉज जब होने वाले होते हैं ना तब आप टिकट लीजिए और अगर आप नहीं जीतते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि टाइम्स बुरा लगता है जेलेसी भी होती है और मेरे को गुस्सा भी आ रहा है कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए मैं सोच रही हूँ और कुछ भी नहीं जीता राइट लाइक फॉरगेट अबाउट द जैकपॉट लेकिन जो सेकंड डिवीजन में प्राइजेस जो जीते हैं जिस किसी ने भी उस चक्कर में भी देखो ना कोई भी इधर ऑकलैंड के विनर नहीं है आई मीन ऑकलैंड
2: में होंगे ना पूरा लिस्ट हम मेरे पास नहीं है
3: हाँ जितना भी है बट वही है ना 200,000 थोड़े ना किसी ने जीता चलो मिलियन तो छोड़े जो एनीवेज व्हाट टू डू नथिंग मच इधर फिलहाल चलिए आज एक बड़ी जरूरी टॉपिक पर आपसे हम कुछ बातें जो है ये करना चाहते हैं और ये जो टॉपिक है इट्स बेसिकली अबाउट द ऑब्सेशन इंडियंस हैव विद मैंगोज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विड अग्री विद दिस बट देयर हैज बीन समथिंग दैट यू नो आई हैव नोटिस्ड एंड मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा चर्चा जरूर करते हैं एंड दिस इज समथिंग जो मैंगोज को लेकर आम को लेकर इतना ज्यादा क्रेज है

0: उसकी जो पिटाई की है। एक तो आम भी नहीं मिली क्योंकि पिटाई खाने के चक्कर में आम भी हाथ से छूट गए।
1: पिटाई खाने के चक्कर में?
0: हाँ, मतलब जब वो मार रहे थे उनको ना,
1: हाँ,
0: तो डंडे पे डंडा जब उनको पड़ा तो उनके हाथों से आम भी छूट गए। और मैं दूसरी ओर ये भी सोच रही थी कि लाइक इतना क्या क्रेज, भाई चलती ट्रेन से उतर गया आम लेने के लिए। और मैंने ये भी देखा हुआ यहाँ पे भी, न्यूजीलैंड में भी, जब इंडिया में मैंगो सीजन होता है तो यहाँ पे भी यू कैन सी बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ मैंगोज। और यू नो, जगह जगह पर वो मैंने बोर्ड्स वगैरह देखे कि यहाँ पर ये आम बिक रहे हैं, ये आम बिक रहे हैं, पीपल एक्चुअली बाय इट। आई नो समवन हु बाइज द एंटायर बॉक्स ऑफ मैंगोज और फिर उसका मजे लेकर वो खाते भी है, फिर बाद में ये भी बोलते कि बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा, बट खाते जरूर है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो बिकॉज आई हैवंट ट्राइड मैंगोज फ्रॉम इंडिया बेसिकली।
1: तो आप ट्राई कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है उसमें।
0: नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मैंगोज भी इतने खास पसंद नहीं।
1: $20 का लोटो टिकट ले सकती है, आम नहीं खरीद सकती।
0: $5 का एक आम आता है।
1: हाँ।
0: आम के रिटर्न में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। लोटो टिकट लेती हूँ मैं जब, तो रिटर्न में एटलीस्ट जीतने की उम्मीद तो होती ना पैसों।
1: तो आम के बदले में फिर आपको पता चलेगा ना कि क्यों
0: क्रेज क्यों है।
1: हाँ, ये क्रेज क्यों है।
0: बट मैं जनरली आई वांटेड टू आस्क एवरीवन टुडे कि आर यू ऑल्सो अ क्रेजी मैंगो फैन, आर यू ऑल्सो अ मैंगो पगलू, एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट मैंगो से, अपार्ट फ्रॉम मैंगो जो एक्चुअल फॉर्म होता है जो उससे बनता है वो लोग ट्राई करते हैं, दे लव हैविंग इट। आई नो, आई डोंट नो, मेरे मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, बट आई रियली लाइक दिस वन पर्टिकुलर थिंग जो आम से बनता है, मैंने खाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स कॉल्ड गुड़म्मा, हैव यू एवर ट्राइड गुड़म्मा?
1: या या,
0: हाँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है। इट्स बेसिकली पका हुआ जो मैंगो होता है उसको इन चटनी फॉर्म बनाते हैं विद लॉट्स ऑफ चिलीज एंड ऑल। आई थिंक
1: हम लोग तो बोलते हैं कि वो करी है।
0: हाँ, ए टाइप ऑफ करी, या एग्जैक्टली, आम की करी। बट या, लेट्स सी हाउ मेनी इफ यू आर आल्सो अ क्रेजी क्रेजी फैन ऑफ मैंगोज एंड व्हाट फॉर्म, इन व्हाट फॉर्म वुड यू लाइक टू हैव योर मैंगोज।
1: सबसे पहली बात ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है जो हम इंडिया से नहीं है कितने टाइप ऑफ, मैंने अल्फोंसो
0: और केसर मुझे दो याद है,
1: दो मुझे
0: एक और एक टाइप है आई थिंक,
1: आई डोंट नो हापुस क्या है, मुझे नहीं पता। कितने टाइप्स ऑफ मैंगोज जो हैं ये होते हैं वो भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी। खैर, आपको, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania trade prices this month.
4: Good morning, showery this morning, then a cloudy afternoon with a high of 20. On the northern, it's 28 minutes from Constellation Drive to the city. On the northwestern, 33 from Massey. On the southern, it's 34 from Monaco and an hour 9 from Drury with heavy patches between Papakura and Market Road. The southwestern slow city bound at Puanui and the run to the airport, 25 minutes.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and get trade prices. T's and C's apply.
5: Freezing on the way to the car every morning? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is now on, with up to 50% off branded gear and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.
6: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains and most ferries with any of them. Just turn up, tag on and save when you ride with Auckland Transport.
7: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
9: Award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. Uske liye apno ko khane pe bulaye, rishton ko aur kareeb laye. Kashish Premium Basmati Rice. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up. Throwback.
13: नौ मिनट रह गए हैं अभी सात बजने में. सात पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आने वाले हैं और तमाम अन्य स्टोरीज जो हैं ये भी सामने आ रही हैं. एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट एटलस की, और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये मुझे इसमें कुछ पढ़ने को मिला या देखने को मिला अबाउट बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड.
14: अच्छा.
13: हाँ, 100 बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड रिवील किए जा चुके हैं और टॉप सिटी में है मुंबई का वड़ा पाव.
14: ओह नाइस, इंटरेस्टिंग.
13: एंड सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि वड़ा पाव को सैंडविच की कैटेगरी में भी रखा गया है.
14: बिकॉज़ इट इज काइंड ऑफ अ सैंडविच ना. इट्स बेसिकली अ बन जिसके अंदर एक स्टफिंग जो ये होती है ना, स्टफिंग बेसिकली कंटेंट होता है.
13: ओके. आपको पता है कि किस कंट्री का सैंडविच जो है टेस्ट एटलस में नंबर वन रेट किया गया है?
14: आई हैव नो आइडिया.
13: तो पता लगाकर हमें बताएं 5599 पर टेक्स्ट करके.
14: व्हाट?
13: हाँ, 7 बजे के बाद हम आपको बताएंगे उसके बारे में. एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है जो कुछ मैंने अभी तक इसके बारे में पढ़ा है. और कई सैंडविचेस जो हैं इनका तो मैंने कभी नाम सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं. पहली बार मेरी आंखों के सामने ऐसे नाम आए हैं.
14: वेरी इंटरेस्टिंग. बट आपने पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ी, उसके बावजूद भी आप हमसे जानना चाहते हैं.
13: हाँ,
14: कि नंबर वन कौन सी है?
13: नहीं, नंबर वन सैंडविच जो है किस कंट्री से है?
14: किस कंट्री से है?
13: हाँ, okay. किस कंट्री okay. से है आपको लगता है? 5599 पर अपने मैसेजेस जो है ये आप हमें भेजें. जब तक आप आज का हमारा पहला थ्रोबैक एंजॉय कर रहे हैं
14: और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, इसे आप ज़रूर सुने. बहुत बड़ा ही कमाल का यू नो गाना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग है ये. व्हेन इट रिलीज इन द ईयर 2000 इट डेफिनेटली गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. और डांस नंबर तो है ही, लेकिन इट्स समथिंग दैट यू एंजॉय, द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट यू गेट टू लिसन टू फ्रॉम द ईयर 2000s.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 12.5 degrees temperature अभी आप feel कर रहे हैं. आज का high 20 है. Overnight कम से कम 15 degrees. बादल छाए रहेंगे. रहकर कुछ बारिश होगी, especially in the afternoon. Sunset आज का शाम 5:13 पर होगा.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja brought to you by Fortune.

0: Morning Madness.
1: Welcome to Morning Madness on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits 104.2 FM और रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं. अभी तो 3 मिनट हुए हैं 7:00 और इस घंटे आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे. अगर मैसेजेस आपने नहीं भेजे हैं, यू स्टिल गॉट सम टाइम टू डू सो.
2: एब्सोल्युटली, आपके पास अभी भी समय है. 5599 पर आप हमारे पास अपने मैसेजेस भेज सकते हैं. इसी घंटे आपको हम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जो है ये विश करने वाले हैं.
1: और लास्ट आवर में हम बातें कर रहे थे अबाउट द 100 टॉप सैंडविचेस ऑफ द वर्ल्ड.
2: जी,
1: मैंने पूछा था बताइए किस कंट्री से है द नंबर 1 सैंडविच.
2: यस, और दो लोगों ने कोशिशें की है, अपने अपने आंसर्स इन्होंने हमारे पास भेजे हैं. एंड आई हैव आल्सो ट्राइड माय लक एंड आई हैव गॉट द आंसर इन फैक्ट ऑल थैंक्स टू गूगल. तो अभी सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिवनेश ने हमारे पास अपना जवाब जो है ये भेजा है. किस कंट्री से, मेरे ख्याल से वो इन्होंने नहीं लिखा है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो पर्टिकुलर सैंडविच है उसका नाम लिखकर भेज दिया है.
1: ओके, कोई नहीं.
2: और उसके अलावा नितिका, इन्होंने अपना आंसर भेजा है. तो इन्होंने सैंडविच का नाम भी भेजा है, कंट्री का नाम भी भेजा है.
1: आपके पास कौन सी कंट्री का नाम है?
2: टर्की.
1: टर्की,
2: हाँ.
1: तो दैट्स करेक्ट. 4.5 रेटिंग मिला है टेस्ट एटलस पर इसको. टॉम्बिक डोना, ये एक टाइप ऑफ डोना कबाब है जहां पर श्रेडेड मीट जो है इसको स्टफ किया जाता है इन अ बन शेप्ड फ्लैट ब्रेड. इसको कुछ बोला जाता है टर्किश में, तो वो तो पता नहीं. ब्रेड जो है इसका एक्सटीरियर क्रिस्पी होता है और इंटीरियर सॉफ्ट होता है. और ये डिश जो है इस टिपिकली सर्व्ड विद एडिशनल इंग्रेडिएंट्स जैसा कस्टमर का चॉइस हो, जैसे टोमेटोज, अनियंस, लेटस या अन्य वेजेस, सॉसेस, जो भी आप चाहें उसके साथ ये आप इंजॉय कर सकते हैं. सो दैट्स द नंबर 1 सैंडविच ऑफ द वर्ल्ड.
2: सो वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने ये कभी ट्राई नहीं की है, आप ट्राई कर सकते हैं. आई थिंक देर आर सम प्लेसेस जो यहाँ पर भी यू नो ये सारे सैंडविचेस आपको मिल सकते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. पर फिलहाल के लिए रिमेम्बर कि थोड़ी देर बाद आपको हम विश करने वाले हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. अपने मैसेजेस जरूर भेजिएगा. लेटर इन द प्रोग्राम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे साथ होकर पासिस जो है ये जीतने के लिए भी ऑफ सम अमेजिंग शोज जो होने वाले हैं इन सुपर सिटी ऑकलैंड बहुत ही जल्द. और कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए भी आपको हमारे साथ ही बने रहना है.
1: और आज का सेलिब्रिटी अलार्म भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है.
2: ओ यस, कल कौन थे बाय द वे?
1: मैं नहीं था.
2: कौन थे, मैं भी भूल गई यार. बट एनीवेज, आज कौन है जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, बिकॉज डेफिनेटली पूछेंगे तो हम आपसे ही कि क्या आपने इनकी आवाज को पहचाना है या नहीं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papio. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो ये है आज के आपके राशि वाइब्स. सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपको पैसे मिलेंगे लाइफ पार्टनर से. आज फाइनेंस को लेकर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसी के मुताबिक काम होंगे. वैसे अपने बच्चों की बिहेवियर पर आज प्लीज नजर बनाए रखें.
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज सिंह माफ कीजिएगा वृष यानी टॉरस, सिंह यानी लियो कहाँ पहुंच गई मैं, वृष यानी टॉरस, आज आपके लिए कहा गया है कि आज फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी. आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, इसकी वजह से लोग आपसे काफ़ी आकर्षित होंगे, मतलब अट्रैक्टिव होंगे आपके टूवर्ड्स, क्योंकि आप जिस तरह से उनके साथ बर्ताव करेंगे वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी. आपसी विचार और जो आपका आइडियोलॉजी है ये आज आपके काफ़ी काम आ सकता है, और इससे आप दूसरों को गाइडेंस भी देंगे जिससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा.
2: मिथुन यानी जेमिनी, पैसों का फायदा आपको होगा. और शायद कोई सपना था कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी या व्हीकल आपके पास हो, तो ये सपना भी पूरा हो सकता है. लेकिन प्रॉपर्टी का कोई भी डील करते समय थोड़ा सावधान रहें. फैमिली एनवायरनमेंट एक दूसरे के प्रति काफी सपोर्टिव रहेगा. वैसे पॉपुलैरिटी भी आज आपकी बढ़ेगी.
3: करके ने कैंसर, आज आपके लिए कहा गया है कि पुराने जो दोस्त हैं, संबंधी हैं, इनके साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा. आपका बिजनेस अच्छा चलेगा. और साथ में आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज आपका जो एक्साइटमेंट है ये आज आसमान छुएगा, क्योंकि कुछ ऐसी खबर भी आपको मिलेगी जिससे आपको बहुत खुशी होगी और आप काफी अच्छा महसूस भी करेंगे.
2: सिंह यानी लियो, फायदा होगा, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा. कोई रिस्क ना लें बिजनेस में या फिर ऑफिस में. आज के जो लोग सपोर्ट आपको हमेशा करते हैं वो आज भी ऐसा करेंगे जिससे आप काफी सक्सेस हासिल करेंगे.
3: और कन्या यानी वर्गो, आज आपके लिए बताया गया है कि परिवार में काफी अच्छा समय बीतेगा. इनफैक्ट रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा. जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश करते रहेंगे लेकिन नाकामयाब होंगे. फालतू खर्च हो सकता है जिसकी वजह से फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए आप अच्छी तरह से प्लान कर ही अपने पैसों का इस्तेमाल करें.
2: तुला यानी लिब्रा, आज इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है. फाइनेंशियली देखें तो दिन बढ़िया होगा. आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है. अच्छी संगति का फायदा होगा, लेकिन बेकार में किसी के साथ बहस में ना पड़े.
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज बताया गया है वृश्चिक इन स्कॉर्पियो के लिए कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपके होंगे जिसकी वजह से आपका नॉलेज और बढ़ेगा, और ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे स्किल्स जो है ये सिखाएगा. जल्दबाजी और भागदौड़ में कोई भी काम ना करें, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. और आज कहा गया है कि आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं जो आपको खुश करेंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे, और ये आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल डे साबित होगा.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, आपके काम बनते जाएंगे. इनकम एक्सपेंडिचर अच्छी तरह से बैलेंस्ड होगा, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल आज आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा. और आज नए प्लान्स जो हैं इनसे आप फायदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि संतान की ओर से अच्छी खबर आपको मिलेगी. इनफैक्ट दैट विल मेक यू फील रियली प्राउड टुडे. दूसरे के काम में आज आप इन्वॉल्व ना हो तो आपके लिए अच्छा है, और परिवार की चिंता रहेगी. गाड़ी चलते समय भी आपको कहा गया है थोड़ा केयरफुल रहे, चोट या चोट वगैरह जो है ये आज आपको जरूर लग सकती है. शारीरिक प्रॉब्लम्स जो है ये आप जरूर फेस कर सकते हैं इसकी वजह से. आज
2: कुंभ यानी एक्वेरियस है, आज आपकी खातिर कहा गया है फायदा होगा, लेकिन जो काम शायद आपने पहले शुरू किया था और अभी भी इनकम्प्लीट है उन पर आज बहुत फोकस ना करें, क्योंकि अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो शायद उतना सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे. बिजनेस अच्छा चलेगा. किसी के साथ कुछ कहा सुनी भी आज हो सकती है आपकी.
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो फाइनली मीन यानी पाइसेस, आज आपके लिए बताया गया है कि खुश रहेंगे आप, बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी, फायदा मिलेगा, प्रोग्रेस के रास्ते चल पड़े हैं. सो यू विल बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू अचीविंग, एंड जो भी आपके ड्रीम्स थे कहीं ना कहीं उनको पूरी करने के लिए ये आपने पहला कदम अपना रखा हुआ है.
2: So these were your Rashi Vibes for today. थोड़ी ही देर में आज का सेलिब्रिटी अलार्म. आज तो बहुत कमाल होने वाला. देखिए आज की आवाज आप पहचान पाते हैं या नहीं थोड़ी ही देर में.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.
6: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मॉर्निंग मैडनेस में अब वक्त हो चुका है आज के सेलिब्रिटी अलार्म का।
1: और ऐसे में चलिए आज की आवाज जो है ये सुनते हैं सबसे पहले, एंड देन देखते हैं कि आज क्या आप इनकी आवाज पहचान पाते हैं या नहीं।
0: सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली आज के सेलिब्रिटी को।
2: Paul and I started, let me take you back. We were in Mexico before the first film had ever opened.
0: तो ये हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी।
1: आई थिंक आई नो दिस वॉइस बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि क्या मेरा जो गेस है वो सही है या नहीं।
0: चलो जितना आपने सुना उससे पता चल चुका है कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं।
1: हाँ वो तो पता चल चुका है, तो कहीं ना कहीं वही मैं बोल रही हूँ कि इनकी आवाज सुनने के बाद आई हैव समथिंग इन माइंड बट आई एम नॉट 100% श्योर इफ दिस इज द पर्सन और नॉट।
0: तो अच्छी तरह से एक बार फिर आवाज जो है ये आप सुने।
2: Started. Let me take you back. We were in Mexico before the first film had ever opened.
0: तो ये हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी और इंटरेस्टिंग होगा आज तो कंपटीशन।
1: If I'm not mistaken, क्या इनकी एक ऐसी फिल्म है जिसका एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है, different you know 1, 2, 3, 4 ऐसे करते I think 7 तक ये पहुंचा है ये फ्रेंचाइज एक पर्टिकुलर मूवी का।
0: हाँ
1: अच्छा तो फिर आई थिंक आई एम ऑन द राइट लाइन, लाइक आई थिंक जो मैं सोच रही हूँ वही आवाज़ है।
0: तो अब जो आप सोच रहे हैं वो आप हमें बताएं। BF लिखना है, उसके बाद अपना आंसर लिखना है और नाम और 5599 पर हमारे पास भेज देना है।
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में प्रिजन करप्शन के एक बड़े मामले में शामिल करेक्शन ऑफिसर्स, प्रिजनर्स और आम लोगों समेत 21 आरोपियों ने ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खुद को नॉट गिल्टी बताया, जबकि बाकी बचे 3 लोगों ने अभी अपना प्ली एंटर नहीं किया है। ऑपरेशन जस्पा नाम के इस इन्वेस्टिगेशन के तहत माउंट ईडन और वीरी फैसिलिटीज में कैश के बदले मोबाइल फोन्स, ड्रग्स और कॉन्ट्रोबैंड स्मगल करने के आरोप हैं, जिनकी वजह से कैदी अंदर से ही अपना ड्रग बिजनेस चला रहे थे। पिछले महीने ऑकलैंड, वाइकाटो और बे ऑफ प्लेंटी में 25 सेच वारंट्स एग्जीक्यूट किए गए थे और अब मामला अदालत के समक्ष है। ऑकलैंड की एक लैंडस्केपिंग कंपनी सेवन सॉल्यूशंस लिमिटेड को उस माइग्रेंट वोका को लगभग $45,000 वापस करने का ऑर्डर मिला है, जिसे उसने न्यूजीलैंड में एक नौकरी और वीजा देने के नाम पर पैसे ऐठे थे। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अथॉरिटी ने कंपनी पर $16,000 और उसके डायरेक्टर पर $8,000 का फाइन लगाया है और कंपनी के पैसे न होने पर सिंह को खुद अपनी जेब से वोका को ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। ब्लैक कैप्स टीम इस साल समा के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रही है। इस साल समा में ब्लैक कैप्स श्रीलंका को 3 ODIs, 3 T20s और 2 टेस्ट मैचेस में होस्ट करेगी। इसके अलावा नवंबर महीने से इंडियन क्रिकेट टीम भी यहां पर T20, ODI और टेस्ट मैचेस खेलेगी। आज सुबह कई फुटबॉल इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेले जा रहे हैं। गिलबर्टा की जीत ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के खिलाफ 4-0 से हुई। जो मैचेस अभी खेले जा रहे हैं उनमें अल्बेनिया और इसराइल 0-0 से बराबर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और डेनमार्क 0-0, लक्समबर्ग और इटली अभी 0-0 से बराबर हैं, नेदरलैंड्स और अल्जीरिया भी प्रथम हिस्से में 0-0 से बराबर हैं, जबकि नाइजीरिया की जीत पोलैंड के खिलाफ 1-0 से हो रही है। दिन में 1:15 पनामा डोमिनिकन रिपब्लिक से खेलेगा, जिसके बाद 1:00 साउथ कोरिया का मुकाबला एल सेल्वाडोर से होगा। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja, brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
2: Milldale House and Land Packages.
3: Showers clearing this morning, but it's cloudy and windy for the rest of the day with a high of 20. On the northern, 41 minutes from Constellation Drive, it's 57 from Silverdale. On the northwestern, 38 from Massey. On the southern, it's 48 from Monaco with heavy patches between Papakura and Market Road. On the southwestern, it's heavy city bound between Monaco and Mangere. And the run to the airport, 26 minutes.
2: Award-winning builders, wide range of homes. Milldale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
4: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colours, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
5: Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson mein with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th, T's and C's apply.
6: If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
7: noodles,
6: or fashion,
7: gorgeous,
6: or even a shiny new appliance,
7: shiny,
6: money loops back. Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
8: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.

0: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Birthday greetings.
3: Iska birthday bhai?
4: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
3: Happy birthday to you.
5: A very very happy birthday आपको विश करने का समय हुआ। आज जबकि 4th of June है, अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आज अगर देखा जाए, सबसे पहले लिनफील्ड में सोमा बाजपाई जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, और उसके अलावा हुआपाई में कमलेश शर्मा जी, आज आपका भी जन्मदिन है। सो हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से हम आपको विश कर रहे हैं
6: हैप्पी 16th बर्थडे फराज। वी आर सो प्राउड ऑफ द मैन यू आर बिकमिंग, विशिंग यू द बेस्ट डे एवर। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। यू हैव ऑलवेज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ आवर फैमिली। लॉट्स ऑफ दुआ एंड लव। मम्मी हैं आपकी फरजाना, अबू फिरोज हैं फ्रॉम हेवन, साथ में सिस्टर्स हैं आपकी फिरदोस और फातिमा, साथ में मासूमा, नानी हैं, दादा दादी हैं, अंकल्स आंटीज और जितने कजन्स हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर एंड अब्रॉड, सभी आज आपको याद कर रहे हैं और हैप्पी 15th या 16th बर्थडे विश कर रहे हैं। फराज, हम सभी की ओर से भी ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार मुबारक हो।
5: और दूसरी ओर आज अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं ये समवन रियली रियली स्पेशल को। इन्होंने कहा है, मोना यू आर द हार्ट ऑफ आवर फैमिली, माय ग्रेटेस्ट सपोर्टर, बेस्ट मॉम फॉर माय किड्स एंड माय बेस्ट फ्रेंड। योर काइंडनेस, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड केयरिंग नेचर मेक्स एवरी डे ब्राइटर। थैंक यू फॉर ऑल द लव, हैप्पीनेस एंड वॉर्म्थ यू ब्रिंग इनटू आवर लाइव्स। लव एंड lots of love from Arha, Mahi and me, wishing you a very happy birthday. Alok ji ki aur se bahut hi pyara sa message unki patni Mona ke liye. So Mona, a very happy birthday, many many happy returns of the day to you.

0: सो आज का जो थ्रोबैक है मॉर्निंग मैडनेस में, ये सुनाने से पहले आपको एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो है ये हम सुनाते हैं पांच दोस्तों की। फिलाडेल्फिया की ये कहानी है और इन्होंने इनफैक्ट डिसाइड किया कि वो पांच दोस्त जो है मिलकर कुछ पैसे जो है ये सेव करेंगे। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज $50 अ वीक ये सेव करेंगे और आने वाले 2 सालों तक इन्होंने ऐसा ही किया। हर हफ्ते $50 जो है ये इन्होंने सेव किया, ईच वन ऑफ देम। एंड द टोटल फॉर द वीक वुड बी $250 जब 5 ऑफ देम आर सेविंग। सो इस हिसाब से उनकी वीक की सेविंग्स मिलाकर हुई $250। एंड दिस वॉज समथिंग सो इंटरेस्टिंग बिकॉज वट दे डिड वॉज एक सिंपल सा प्लान, एक सिंपल सा कमिटमेंट, एंड दैट कमिटमेंट वॉज टू बाय देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी, उनका पहला घर खरीदने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान किया। सो वट स्टार्टेड एज अ सिंपल प्लान टू ग्रो मनी एज अ ग्रुप, वो दरअसल उनके लिए एक ओनरशिप में टर्न हुआ एंड इट स्टक देम कि यार ये तो बड़ा अच्छा है तो चलो ऐसा ही करते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एंड इसकी वजह से उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज ओपन हुए, नए दरवाजे खुले एंड दे हैव बिकम प्रॉपर्टी पार्टनर्स ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज।
1: अमेजिंग, इट्स जस्ट वन थॉट और एक बहुत ही इंट्रिगिंग आइडिया जो है ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। थ्रोबैक एंजॉय करें, इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Almost 13 degrees temperature ho chuka hai Auckland mein aaj ka high 21 kam se kam 15 degrees kuch badal chhaye rahenge sham ke samay barish ka anuman hai sunset aaj ka sham 5:13 par hoga
0: Breakfast show with Vijay and Pooja
2: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins Fortune fuels every win big or small bring home the fortune
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: तो आज का ट्रेंड पेट्रोल ऑन द रश आवर जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इट्स बेसिकली एक ऐसी खबर आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस बट दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ क्योंकि ये धीरे धीरे हवा पकड़ रही है और कुछ ना कुछ यू नो आगे बढ़कर काम करने की कोशिश कर रही है द कॉकरोच जनता पार्टी CJP आपने इसके बारे में सुना है
4: हाँ बट आई हैवन्ट गोन एंड रेड अबाउट इट कि क्या है क्या नहीं है एक दिन मैं खुद बैठे बैठे सोच रहा था कि भाई इतना इन्फॉर्मेशन है बट आई हैवन्ट गोन एंड एक्चुअली चेक कि क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी आई डोंट इवन हैव एन आइडिया क्या है
3: सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है विच इनिशियली एक वायरल पॉलिटिकल सटायर मूवमेंट इसे मान सकते हैं ये पिछले महीने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई थी बट बेसिकली स्टार्टेड एज इन अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और जो गवर्नमेंट का परसीव नोशन है अबाउट द यूथ ऑफ द कंट्री तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है ये हुई थी आई थिंक वन ऑफ द MPs हैड सेड समथिंग कि आजकल का जो यूथ होता है वो कॉकरोच जैसा होता है यू नो मतलब लोगों को कॉकरोच की तरह कंपेयर करने के बाद कुछ तो एक ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था एंड एज अ जोक दिस पर्टिकुलर पेज स्टार्टेड ऑनलाइन और लोगों ने इनफैक्ट उसको फॉलो करना भी शुरू किया लेकिन बाद में चलकर उस जोक को हकीकत में बदला गया जब एक शख्स ने दरअसल एक पूरा फुल फ्लेज्ड पार्टी जो है ये फाउंड किया और ये जो मूवमेंट है वाज फाउंडेड बाय अभिजीत दिपके मेरे ख्याल से ये दरअसल महाराष्ट्र के हैं और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द रिमार्क्स जहां पर अनएम्प्लॉयड यंग लोगों को कॉकरोचेस से कंपेयर किया गया था नाउ जिसके बाद चलकर ये पार्टी जो है कॉकरोच जनता पार्टी CJP ये फॉर्म की गई एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस CJP क्योंकि ये जो यूथ लेड गवर्नमेंट सॉरी पार्टी है मूवमेंट है इन्होंने काफी मैसिव अटेंशन जो है सोशल मीडिया पर पाया है और इसके बाद चलकर इन्होंने कल या वेंसडे को इन्होंने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में जो है ये रखा दिस पर्टिकुलर पार्टी Yes, first press conference. And during the event, जो पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया एक प्रोटेस्ट जो 6 जून को करने वाले हैं जहां पर वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करेंगे ओवर अलेज्ड इरेगुलरिटीज जो मेजर एग्जाम्स में देखे जाते हैं जिनमें नीट CBSE और साथ में SSC जो है ये शामिल है एंड द ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान citing concerns की जो पेपर लीक्स हुए हैं ओवर द पास्ट ईयर्स उसके रिजल्ट्स और एरर्स में और एग्जामिनेशन मैनेजमेंट को लेकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने एक मेजर स्टेप मार्क किया है फॉर द मूवमेंट विच स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल सटायर जैसे कि हमने कहा था ऑनलाइन कैंपेन के जरिए एंड इट हैज सिंस ग्रोन इनटू अ नेशन वाइड यूथ प्लेटफॉर्म विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और CJP के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके he is expected to arrive from the US wo US mein hai to participate in this 6th of June ka jo protest wo announce kiya gaya hai and the demonstration which will be the group's first organized street protest
4: my god kahan se kahan pahunch gaye ye CJP तो एस टाइम मूव्स ऑन जब इनके और खबरें आएंगी तो वो भी आपके लिए इस प्रोग्राम में हम जरूर लेकर आएंगे

0: Future.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: What's your take? Vakta ab ho chuka hai on the breakfast show with Vijay and Pooja. Aur abhi time hai ki ek vishay jo hai ye hum rakhe. और उस पर आप अपना जो विचार है ये शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है ये बता सकते हैं। दिस एक्चुअली स्टार्टेड थ्रू एन इंस्टा पोस्ट जो आज व्हाट्स योर टेक में हम बातें करने जा रहे हैं। एंड एक लेडी हैं श्रुति शिवम, इन्होंने एक वीडियो जो है ये पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि विदेश जाने के बाद क्यों उन्हें कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट करना आ गया। शायद पहले वो अप्रिशिएट नहीं करती थी बिकॉज शी टुक थिंग्स फॉर ग्रांटेड व्हेन शी वाज होम, जैसे कि यू नो डोरस्टेप डिलीवरी, मेडिसिन, फूड, एवरीथिंग, सब कुछ घर आता था। यहाँ पर उसने कहा है मुझे खुद जाकर लेना पड़ता है और उसके अलावा और भी कई चीज़ें जो हैं ये इन्होंने अपने इस वीडियो में शेयर की। और यू नो रनिंग ऑन द लास्ट मिनट मोड इंडिया, यू नो उन्होंने कहा कि इंडिया में कुछ कई चीज़ें ऐसी थी जो इंस्टेंटली या अर्जेंटली मैनेज हो सकती थी। देन शी मूव टू पोर्चुगल, तो उन्होंने एक कंपैरिजन सा तैयार किया है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो लाइफ में हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अनटिल वी स्टेप आउट ऑफ होम, तब हमें असलियत का एहसास होता है। सो शी मूव फ्रॉम इंडिया टू पोर्चुगल। इंडिया में उन्होंने कहा एवरीथिंग ऑन द डोर स्टेप, ग्रोसरीज, मेडिसिन, फूड। पोर्चुगल में मैनी थिंग्स स्टिल रिक्वायर फिजिकल पिकअप। इंडिया में मेनी थिंग्स कैन बी मैनेज्ड इंस्टेंटली और अर्जेंटली. पोर्चुगल लाइफ टोटली डिपेंड्स ऑन अपॉइंटमेंट एंड प्लानिंग. इंडिया 10 मिनट सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, ये फील्स नॉर्मल. पोर्चुगल इवन नेक्स्ट डे डिलीवरी कैन फील फास्ट. मेडिकल फैसिलिटी और मेडिसिन एक्सेस. इंडिया ईजिली गेट अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, फार्मेसीज एवरीवेयर, ईजी मेडिसिन एक्सेस, ये इन्होंने कहा. पोर्चुगल हेल्थ केयर सिस्टम सिस्टम्स आर स्ट्रक्चर्ड बट स्लोअर फॉर स्मॉल नीड्स. और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया ऑटोज, कैब्स, लोकल ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेंटली अवेलेबल. पोर्चुगल ट्रांसपोर्ट इज ऑर्गेनाइज, वी गेट बस, मेट्रो, ट्रेन, बट सिग्निफिकेंटली लिटल एक्सपेंसिव. और इंडिया में डेली वो का अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिशन, प्लम्बर्स, सब ये बहुत जल्द अवेलेबल होते हैं. पोर्चुगल में अपॉइंटमेंट एंड लेबर कॉस्ट फील हैवियर. रिपेयर कल्चर. इंडिया ऑलमोस्ट एनी थिंग कैन बी रिपेयर्ड चीपली नियर बाय. पोर्चुगल देर इज नो रिपेयर कल्चर, इंस्टेंट पीपल ऑफन रिप्लेस. तो उन्होंने ये अपना कुछ एक्सपीरियंस जो है ये शेयर किया. तो हमने सोचा चलो आज आपसे भी पूछते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अनटिल वी मूव अवे फ्रॉम होम, तब जाकर हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी खुशनसीबी थी हमारी. गुड मॉर्निंग परविंदर.
10: गुड मॉर्निंग,
11: हाउ आर यू?
10: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
11: आई एम गुड.
10: जो भी कंपैरिजन उन्होंने लिखा है ना,
11: हाँ,
10: वो तो 100% है. यहाँ इंडिया में अगर जैसे कोई जूता चप्पल जब तो फेवरेट है ना,
11: हाँ,
10: अगर वो थोड़ा उधर जाता था, बढ़ जाता था, आप 2 मिनट में जाके मोची से फिक्स करा सकते थे.
11: अच्छा,
10: यहाँ पे या तो खुद उसको सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लू लगाओ या फिर फेंक दो, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. ट्रांसपोर्ट का भी सेम इशू है यहाँ पे. और इंडिया में ये चीज भी थी, मतलब मैंने कभी भी ना, जब मैं इंडिया में थी, मैंने बॉर्डर नहीं किया था कि पानी जब मैं पीती हूँ वो ग्लास गायब हो जाता है पीने के बाद. यहाँ पे पता लगता है कि 2-2 दिन वहीं पड़ा रहेगा अगर मैं उठाऊंगी नहीं तो.
11: अच्छा, इंडिया में उठाने वाला कोई होता था ग्लास भी?
10: हाँ, कोई होता था, और हमेशा कोई पिलाने वाला भी होता था. यहाँ पे तो मर रहे हो, चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बीमार हो, खुद ही उठ के लेना पड़ता है. आई मीन विच इज अ गुड थिंग. मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आप आज की तरह बैठे रहो, बट स्टिल है ना, एक होता है कि यू आर नॉट फीलिंग राइट तो कोई होता है. और उसके अलावा एक चीज जो मैं अब बहुत वैल्यू करती हूँ, मोस्टली पंजाबी को शायद पता होगा, पंजाब में अनियन की वो बहुत बनती है, सिर्फ अनियन की सब्जी. अगर घर में कुछ भी नहीं है, अनियन काट के बना लो.
11: अच्छा,
10: जब भी मेरी मम्मी बनाती थी मैं कहती थी ये क्या गरीबों वाला खाना बना लिया, ये क्या गरीबों वाला खाना बना लिया. अब मुझे अगर कोई अनियन की रोटी, अनियन की सब्जी और पराठा दे देना तो मैं खुश हो जाती हूँ. मैं कहती हूँ बचपन याद आ गया.
11: हाय हाय.
10: पर उस टाइम पे मुझे ऐसा पता ये क्या बना देती हूँ रोज रोज. और सिंपल दही पराठा मैंने बचपन में कभी नहीं खाया था कि क्या है दही पराठा, ये खाने वाली चीज है. पर अब जब भी मौका मिलता है मैं दही पराठा बनाती हूँ.
11: अच्छा, दैट्स नाइस. एट लीस्ट
10: ऐसे मैंने बहुत ऐसे ग्रांटेड थी, लेती थी ये चीजें है ना. तो अब ये वन ऑफ माय फेवरेट चीजें हैं. जैसे सिंपल बेसिक मेरी मम्मी आलू की सब्जी बनाती थी फटाफट जल्दी सुबह ना लंच के लिए
11: जी.
10: तो आलू की सब्जी पराठा चाय, तो वहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद खाते थे ना, तो मुझे ऐसा पता फिर से यही. अब तो जैसे कुछ स्पेशल खाने का दिल कर रहा हो अगर ना, और अगर हस्बैंड की भी छुट्टी हो, मेरी भी छुट्टी हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रोटेटिंग रोस्टर होता है, उसका एवरी वीकेंड ऑफ नहीं होता. तो जब भी उसका वीकेंड ऑफ होता है मैं बोलती हूँ आलू की सब्जी पराठा चाय बनाती हूँ. तो ऐसे करता है कि मुंह तो तूने ऐसे बनाया जैसे पत्नी कितना मतलब बड़ा पकवान बना रही है. मैंने कहा मेरे लिए पकवान ही है वो.
11: एग्जैक्टली, अप्रिशिएट करना आ गया ना. चलो थैंक यू सो मच परविंदर आपके कॉल के लिए. तो 0800 00 हम. गुड मॉर्निंग, हेलो.
12: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
11: आई एम गुड मैम, आप कैसी हो?
12: परविंदर एंड द पर्सन बिफोर. एंड यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इंडिया में एक्चुअली आप ना जब हम मैं भी इंडियन हूँ तो जब मैं इंडिया जाती हूँ तो सारी जो बहुत एक्सपेंसिव ड्राई क्लीनिंग होती है एक्सपेंसिव ऑल्टरेशन होती है स्टिचिंग होती है वो वहीं लेके जाती हूँ क्योंकि सर्विसेज एंड लेबर इज मच चीपर राइट. बाकी डे टू डे लाइफ में भी सर्वेंट बहुत होते हैं तो बड़ा थोड़ा यू नो थोड़ा आराम तो होता ही
11: जी.
12: यू नो व्हाट आई मीन. एंड बट ऑन द अदर हैंड आई मस्ट से आल्सो व्हाट आई रियली अप्रिशिएट when I go back is what I have in New Zealand and we don't have in India. We do not have any cleanliness in India anymore.
11: Achha.
12: Most of the places, the sky is either a light grey or a dark grey or a brown. You do not see a clear blue sky, maybe in the hills, if you go to a hill station sometimes, you know what I mean?
11: Yeah, I
12: do. Or winter mein toh itni smog hoti hai ki aapko clear sky dikhta hi nahi hai. जो आर्मी एरियाज है कैंटोनमेंट है वो बड़े ही क्लीन है. हाँ एज क्लीन एज न्यूजीलैंड.
11: ओके
12: आई मीन विद द लॉन्स मैनिक्योर्ड एंड यू नो एवरीथिंग डन टू परफेक्शन बट अदर देन द आर्मी कैंटोनमेंट्स एंड मे बी चंडीगढ़ टू अ सर्टेन डिग्री एवरीथिंग एंड एवरी प्लेस इज सो डर्टी आई कांट टेल यू इट्स नाउ गोइंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन इट्स सो डर्टी. The secular divide that is there amongst the Muslims and the rest of the country is so pronounced that you wonder what's happening in this world. We lived so peacefully there with every community, but now there is that feeling of hatred. You know what I mean? I'm not a Muslim, but I'm just speaking for the Muslims. At one time it was somebody else and at another time. So there's a lot of casteism and religionism in the country, you know?
11: Yeah.
12: So there is, I must say, New Zealand people are far better, far more polite. They know how to live in diversity and in harmony with each other. Of course, we don't have a lot and we pay a very high price for the cost of living here. But let me tell you, it's worth it.
11: Thank you.
12: When any doctors operate in India, their lungs are black. They say, my doctor cousins and friends say they haven't seen a clean pink lung ever. Now in India, when they do surgery.
11: Wow.
12: So we have a lot here to be appreciating. A lot.
11: थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए. सी तो कितनी बातें जो है ये अभी खुलकर आ रही हैं. और आपका स्वागत है प्रोग्राम में. गुड मॉर्निंग. हेलो.
13: गुड मॉर्निंग विजय जी. अमित बोल रहा हूँ.
11: कैसे हो भाई?
13: मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हैं आज?
11: एकदम अच्छा
13: जी. तो मैं इस टॉपिक के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ इंडिया में कन्वीनियंस है बिकॉज लेबर चीप है. बट आई थिंक आई एग्री विद द कॉलर जो जस्ट मेरे पहले जिन्होंने बोला कि और उसके ऊपर एक मैं एक और कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि आई थिंक हम इंडियंस एक चीज और फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम अपना कन्वीनियंस देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो बाकी डिलीवरी बॉयज हैं या बाकी जो लोग हैं वो they are working extra hours, they are working on odd hours, या maybe बारिश हो रही है उस कंडीशन में काम कर रहे हैं. तो चीप लेबर है बट इट ऑल्सो अफेक्ट द चीप लेबर बिकॉज दे आर नॉट इवन अर्निंग इनफ टू सस्टेन themselves. जो चीज में चीप नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग लाइक ओशानिया में आपका एक मिनिमम वेज है जिसकी वजह से पीपल आर अर्निंग बेटर. सो services are expensive but that also means ki jo log kama rahe hain wo bhi ek minimum level of living afford kar pa rahe hain which is not applicable in India. So that's my take on that.
11: Thank you so much Amit aapke bhi call ke liye. और आपकी भी अगर कोई राय है जो आप सोचते हैं कि थिंग्स दैट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड इन लाइफ और ओनली व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम होम तब जाकर हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं क्योंकि तब हमारे पास वो होता नहीं है और जब नहीं होता है हमारे पास तब जाकर उसकी कमी जो है ये खलती है और जब कमी खलती है तो सोचते हैं कि भाई कितने खुश नसीब थे कि वो हमारे पास था. ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं जब बातें इसके बारे में होती हैं तब जाकर डिस्कशन जो है ये शुरू हो जाता है. तो वही हमने सोचा कि आज आपके लिए लेकर आए ऑन द शो और आपका स्वागत है प्रोग्राम में. गुड मॉर्निंग. हेलो.
14: मॉर्निंग विजय जी. कैसे हैं?
11: ठीक हूँ सर. आप कैसे हो?
14: कोऑपरेशन सर, थैंक यू
11: जी.
14: आई थिंक नॉट आई वांट टॉक अबाउट अदर्स, मैं अपनी सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो इंडिया जाते हैं तो न्यूजीलैंड में सोता है, न्यूजीलैंड में होते हैं तो इंडिया में सोता है, क्योंकि देयर इज थिंग्स अबाउट बोथ प्लेसेस दैट वी नाउ अप्रिशिएट एंड रियलाइज. तो जैसे सबने मेंशन किया पहले भी कि कन्वीनियंस एंड वहां पर ईज ऑफ डूइंग थिंग्स, जैसे घर में बैठे हैं सफाई वाला है या देने या बनाने वाला है, तो वो जो कंफर्ट एंड लग्जरी है वो यहाँ पर आप अगर एक्स्ट्रा रिच भी हो जाए तो इट विल बी अ चैलेंज स्टिल टू अफोर्ड. बट इंडिया में तो वो गिवन है, यू काइंड ऑफ एनी लेवल ऑफ इनकम कैन अफोर्ड सम सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस इंडिया में. बट वही वहाँ का रहना खाना सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो एक क्वेश्चनेबल चीज है. तो हेंस वाई जो लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं दे अप्रिशिएट द फैक्ट कि यहाँ पर आपके साथ सेफ है, आपके लिए क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एयर, सब कुछ
11: बढ़िया है.
14: बट यही चीज अगर आपको इंडिया में मिल जाएगी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल मूव बैक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. तो
11: मेबी वन डे
14: ये चैलेंज है. बट एक अपने बिजनेस में जो मैं चीज देखता हूँ जो इंडिया में मेरे को हमेशा याद आती है और यहाँ पर नहीं होती है, इंडिया में हम ना कार्डबोर्ड वी कैन सेल, वी कैन सेल कार्डबोर्ड, वो रद्दी वाला आता है वो सब अखबार कार्डबोर्ड क्या ले आता है. तो यहाँ पर हम ढेरों ढेर कंटेनर भर भर के कार्डबोर्ड फेंकते हैं एंड वो हमेशा याद आता है कि भाई रद्दी वाला आए कार्डबोर्ड उठा के ले जाए. तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, फॉर सम रीजन कार्डबोर्ड कांट बी सोल्ड हियर, इंडिया में वो कार्डबोर्ड चीज बिकती है. तो आई एम नॉट श्योर फिजी में ऐसा होता है.
11: नहीं कार्डबोर्ड या ऐसा रद्दी वाला तो नहीं मैंने देखा, नहीं वहाँ भी नहीं.
14: इंडिया में होता है सर ऐसा कि रद्दी वाला कहते हैं उसको. तो दे कम एंड कलेक्ट न्यूज़पेपर, आपके पुराने कपड़े तक, बर्तन भी, कुछ भी पुराना चीज होती है, दे कैन कम एंड दे विल पे यू मनी फॉर इट.
11: दैट्स गुड. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए. अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, कॉल्स तो और भी आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ 5599 पर हमारे पास अपने मैसेजेस जो हैं ये ज़रूर भेज सकते हैं और उन्हें भी हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे. थर्सडे है आज, तो थोड़ी देर बाद लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोलर से भी हमारी बातें होंगी.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: ऐश किंग और सिद्धार्थ उनके साथियों की आवाजें रही हैं आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। 27 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में और हमने कहा था कि लॉजिक फाइनेंस से गुरु आ जाएंगे हमारे साथ लाइंस पर। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया। आज मैंने सोचा है कि अक्सर हम बातें करते रहते हैं कि लोन लेना है, रिपेमेंट्स जो है ये कम करने हैं, इन चीज़ों के बारे में। इट वाज बेसिकली भले ही हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या हमारा फ़ायदा उसमें, बट देयर वाज कैश आउटगोइंग। मैंने सोचा आज इनकमिंग के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, क्योंकि कहीं कई जगहों पर या कई जो बैंक्स है ये बताते हैं अबाउट कैशबैक कि आप ये करो तो आपको कैशबैक मिलेगा, आप ये होम लोन लेते हो तो कैशबैक मिलेगा, कहीं कुछ डिफरेंट अमाउंट मिलता है, कहीं कुछ डिफरेंट परसेंटेज जो है ये मिलता है। आई रियली डोंट नो हाउ इट वर्क्स। तो मैंने सोचा आज ये आपसे पूछते हैं ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ी क्लैरिटी उनको मिल जाए कि ये कैशबैक वाला सिस्टम कैसे चलता है और कैसे एज अ कस्टमर कोई कैशबैक हासिल कर सकता है।
1: बिल्कुल विजय भाई, कैशबैक जो बैंक देता है वो आपको एक वेलकम बोनस देता है, थैंक यू के फॉर्म में एक कैश डिपॉजिट करता है आपके अकाउंट में जिस दिन आपकी सेटलमेंट होती है। जब बैंक कैशबैक देता है तो दे आस्क यू टू स्टे विद बैंक, सम बैंक्स आस्क फॉर 3 इयर्स, सम बैंक्स आस्क फॉर 4 इयर्स। अगर आप उससे पहले छोड़ के जाते हो तो प्रोपोर्शनेट, कई बैंक उसका प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। अगर किसी ने बोला कि 4 इयर्स हमारे साथ रहना तो आप सिर्फ 2 साल रहे उनके साथ, तो आपको बाकी 2 साल का जो अगर कैशबैक को 4 साल में डिवाइड कर लो तो 2 साल आपको वापस करने पड़ेंगे उनको कैशबैक। कई बैंक्स हैं दे आस्क कि हमें आपने पूरा हमारे साथ 3 साल नहीं लगाया तो पूरा का पूरा ही हमें आप यू नो कैशबैक वापस करो। सो बेसिक इट इज लाइक अ थैंक यू मनी, बट दे थैंक यू फॉर गिविंग अस द बिजनेस, बट आप हमारे साथ इतना टाइम एटलीस्ट रहो तो वो पैसा फिर आपका ही होगा, फिर आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट होम ले रहे हो या रीफाइनेंस कर रहे हो, एवरी टाइम इफ यू रीफाइनेंस में अगर एक बैंक से चेंज करके दूसरे बैंक जा रहे हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द कैशबैक्स। नाउ बड़ा सही बात, आपके कंफ्यूजन रहता है कि कैशबैक कितना मिलेगा और यू नो उसको इतना मिला था मुझे इतना कम क्यों मिला, या मुझे ज्यादा मिला उसको कम मिला। So basically, there are different rules around the cashbacks. So, एक जो simple rule है कि अगर आप first home buyers हो और आपके पास 20% deposit नहीं है और आप सिर्फ 10% deposit या 5% deposit के साथ जा रहे हो, तो banks have made kind of a general rule कि you will 5,000, between 2,000 to $5,000, you will get the cashback. Regardless of कितनी आप बड़ी lending ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो उसमें percentage, it doesn't come along with the percentage. They just make a straight thumb rule कि इतना आपको मिलेगा, कि अगर आप 10% deposit दे रहे हो तो 5,000, अगर आप सिर्फ 5% deposit दे रहे हो तो it will be less than that. In terms of कैशबैक, अगर आप 20% डिपॉजिट दे रहे हो या आपके आपकी प्रॉपर्टी में 20% इक्विटी है और रीफाइनेंस कर रहे हो, देन बैंक्स आर ऑफरिंग डिफरेंट कैशबैक्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 0.90 ऑफ योर लोन अमाउंट गोइंग अप टू 1.25%। नाउ डिफरेंट बैंक्स आर एक्टिंग डिफरेंटली एट दिस स्टेज, सम बैंक्स आर ऑफरिंग 0.90, some banks have just recently, very big bank has come for limited offer saying 1% cashback. Even 1% cashback they've offered on properties jahan pe jo aapki LVR hai ki aapne 15% deposit diya hai, unko bhi they were offering 1%. In the past it was only a strict rule of $5,000, but now they have also saying ki agar aapke paas 15% deposit ke sath aa rahe ho, you will get 1% deposit, 1% cashback. And there are some banks offering 1.25% as well, but they are taking so long because ek hi bank hai to sari files wahan ja rahi hai to wahan pe queue lag gaya. So in terms of cashback, yes, there is bits ups and downs in different to kis bank mein aap ja rahe ho, kahan ja rahe ho. Even brand new properties, agar aap brand new properties le rahe ho to normally agar aap कहीं जाते हो ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी लेते हो और आप डिपॉजिट सिर्फ 5 या 10% दे रहे हो तो नॉर्मली यू विल गेट द सेम 2,000 to 5,000 बट देयर इज वन बैंक विच इज ऑफरिंग इवन ऑन द ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज अगर आप ले रहे हो तो 1% ऑफ कैशबैक रिगार्डलेस ऑफ कितना डिपॉजिट आप डाल रहे हो अगर आप 5 भी डाल रहे हो या 10 भी डाल रहे हो यू स्टिल गोना गेट 1% ऑफ योर लोन अमाउंट एज अ कैशबैक इफ यू बाइंग अ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी नाउ दीज थिंग्स कस्टमर्स डोंट नो लाइक यू नो आप हम नॉर्मली जिस बैंक में बैंकिंग कर रहे होते हैं उसी के बाद चले जाते हैं और वहीं से लोन करा लेते हैं they offer you the cashback but in saying that I think it's always the best option to talk to someone in the mortgage broking line ya as a broker mere se baat kar lijiye ya agar aap kisi aur se deal karna chahte hain to unse baat kar lijiye but lekin aapko ek discussion point zarur rakhna chahiye as a mortgage broker because uske sath aapko ek option khul jati hai ki aap aapke liye kya best option rahega ki aapko wohi same bank mein jana jahan aapki banking chal rahi hai or we should go to some other bank जहां से आपका अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है बट वी विल गेट बेटर आउटकम फॉर यू गेटिंग द मनी बैक इनटू योर पॉकेट
0: तो अगर कोई है जो सोच रहा है इसके बारे में कि भाई अब मुझे भी पता लगाना है कि कितने पैसे जो है ये मुझे मिल सकते हैं कैशबैक के लिए और आई कैन एटलीस्ट ट्राई अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कैसे आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकता है
1: मुझे भाई सिंपल लॉजिक लगाना है आप लॉजिक फाइनेंस सर्च करोगे गूगल पे तो यू विल सी माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमल मेरा बिजनेस पार्टनर है उसकी डिटेल्स भी वहाँ होंगी तो समटाइम्स आप अगर कॉल करते हो तो हो सकता है वो उसके पास फोन जाए बट लेकिन अगर आपको डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो मेरा 0800 नंबर है विच इज 0800 लॉजिक जी जब आप 0800 लॉजिक जी टाइप करते हो इट कम्स टू मी विच इज 0800 564 424 is the number to get in touch with me.
0: Guru, thank you so much aapke time ke liye. Ab next Thursday ko aapse aur baatein zarur karenge.
1: Thank you, Vijay.
0: Thanks. The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao. Accurate traffic. Beat fuel prices with AT. Showers this morning, then a cloudy and windy afternoon with a high of 20. On the northern, it's 34 minutes from Constellation Drive to the city, 36 on the northwestern from Massey. On the southern, 49 minutes from Monaco with heavy patches between Manurewa and Market Road. On the southwestern, it's heavy citybound between Monaco and Mangere and southbound at Mount Roskill. And the run to the airport is 27 minutes.
2: Beat pump prices by taking public transport. Tag on with any smart card and go.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: Here for all things Brinta. Sniffles on the sofa. Frosty footy games. Oh, riff. Cozy evenings with hot soup. And roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
6: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now. With up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden. Queen size. Now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe. We are dreams begin.
7: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
9: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
10: Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour.

0: Whangarei and southbound at Mount Roskill. And the run to the airport is 27 minutes.
1: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
2: Bunnings lowest prices? Nailed.
3: Grab 30 seconds 1 litre mould off just $7.90. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings
4: Warehouse. कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. auckland.gov.nz/where-it-goes पे. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.
9: The Breakfast Show.

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
1: आज का क्या बकते हो जो आपके लिए हम लेकर आएंगे बस थोड़ी देर में, इसके लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी डेफिनेटली लव टू हियर समथिंग फ्रॉम यू एंड इन रिगार्ड्स विद दिस. फिलहाल आपको हम याद दिला दें कि आज हमारे साथ जबकि आप शामिल हैं, आज है द 4th of June और 4th of June की ये सुबह जबकि आपके नाम हमने की है, तो वहीं पर आपको हम याद दिलाना चाहते हैं अबाउट द इंडियन इंक थिएटर कंपनी. और ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का amazing play which is called Balloon Dog. Now ये जो award winning performer है Jacob Rajan, ये है इस कहानी के लेखक. इनके साथ Justin Lewis, इन्होंने भी contribution की है in the writing along with directing the play. Justin Lewis का पूरा credit है. So talking about Jacob Rajan जो कि MNZM के बड़े ही जाने माने विजेता है और he's returned to the stage is basically with this amazing world premiere of Balloon Dog. एक deeply moving कहानी है ये और एक नया प्रोडक्शन है जिसे इंस्पायर किया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर की जो बड़ी ही खूबसूरत कहानी काबुलीवाला से. वी हैव ऑलरेडी मेंशनड यू अबाउट दिस बट अगर आपने मिस आउट किया है तो आपको ये बता दें कि ये जो कहानी है बलून डॉग की, इट हैज़ बीन सेट अप इन द 21st century जहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटिफुल स्टोरी है. एंड ये स्टोरी है बेसिकली ऑफ अ फ्रेंडशिप, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल और एक लोनली माइग्रेंट वर्कर के बीच. तो ये जो पूरी की पूरी फ्रेंडशिप है, इसके साथ जो फैमिली है इनकी, उनकी आंखों में या उनकी कुछ उनके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आती है जो उनके लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल है. कुछ ऐसे अनकम्फर्टेबल ट्रुथ्स हैं खुद के बारे में जो वो डिस्कवर करते हैं जब कहानी जो है ये अनफोल्ड होती है. एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये अगर आपको जानना है तो आप बलून डॉग जरूर जाकर विटनेस कर सकते हैं. 3rd of June से, यानी कि कल से ये शुरू हो चुका है और 20th of June तक ये चलता रहेगा एट क्यू थिएटर इन ऑकलैंड. तो किसी एक दिन का शो जो आप चाहे वो आप जरूर देख सकते हैं. और शो जो है ये आप अगर देखना चाहते हैं, टिकट्स आप लेना चाहते हैं, iticket.co.nz. रिमेंबर iticket.co.nz, ये आपको विजिट करना है टू ग्रैब योर टिकट्स और फिर आप डेफिनेटली बलून डॉग का मजा जो है ये उठा सकते हैं. बट अगर आप हमारे साथ कुछ पासेस जीतना चाहते हैं बिकॉज देयर इज अ चांस फॉर यू टू विन अ डबल पास, तो इसके लिए आपको बस अपना नाम लिखना है अभी और हमारे पास इसे आप भेज दीजिए. लेकिन नाम लिखने से पहले BD जरूर लिखिए, BD ये लिखिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम और भेज देना है 5599 पर और इसके बदले आपका नाम हम जो में जरूर शामिल करेंगे. सो बलून डॉग, रिमेम्बर, ये फिलहाल एक बड़ा ही कमाल का प्ले और ये चल रहा है एट क्यू थिएटर जहां पर आप भी पहुंचकर इसका हिस्सा जो है ये बन सकते हैं.

0: accurate traffic.
1: What's my house value.co.nz.
2: Good morning. Showers clearing to a cloudy and windy afternoon with a high of 20. On the northern, it's 33 minutes from Constellation Drive to the city, 45 from Silverdale. On the northwestern, 33 from Massey with heavy patches from Pātiki. On the southern, 47 from Monaco. And on the southwestern, heavy city bound between Monaco and Mangere. The run to the airport, 25 minutes.
1: Looking to sell your home? Visit whatsmyhousevalue.co.nz.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's Idli or Dosa Batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
5: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
7: Put a bloody important meeting in your calendar right now. This National Blood Donor Week, give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
8: Wormsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
9: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 9. Police are investigating whether anyone was inside a home which has gone up in flames in the Bay of Plenty. Emergency services say multiple people are accounted for after fire crews were called to a Waihau Bay property this morning. Teams are working together to find its potential occupants. The threat of tariffs on goods headed to the US is back again. New Zealand is one of 54 countries the Trump administration is targeting with a new 12.5% tax. It claims they've all failed to ban imports of goods produced with forced labour. The proposed tariffs will need to go through an approval process. Transporting NZ is warning drivers about the increased risk of sunstroke over the winter months. Spokesperson Mark Stockdale says in the last 5 years it was a contributing factor in 15 fatal crashes.
11: Around another 100 serious injury crashes and 500 minor injury crashes.
10: Ruapehu District Council is asking for help after a spate of vandalism across the area. Several public toilet facilities were tagged and damaged over the weekend. Walkways and reserves were also driven over by motorcyclists. And Joe Biden's reportedly crashed his wife's book tour to ask who she loves the most. Fox News says he suddenly emerged from the audience. His wife laughed and replied whoopee, as in Goldberg, who was sitting beside her on stage. In sport, All Blacks and Hurricanes prop Tyrell Lomax has signed a 3-year contract extension with New Zealand Rugby. That'll see the 30-year-old stick around for next year's World Cup and the Lions tour in 2029. Always defender Tim Payne has been introduced to the man who made him famous on the internet.
12: How are you all?
13: I'm good, bro. It's lovely to meet you.
10: Payne now has almost 5 million followers on Instagram thanks to Argentina influencer Valen Scarsini. Football updates brought to you by Hisense.
9: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross Skill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari good brands nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: 14.5 degrees temperature abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain aaj ka high 21 night kam se kam 15 degrees hone wala hai. It's going to be a rainy night, lekin din mein mausam mila jula rahega, kabhi badal chhaye rahenge, kabhi kabhar kuch halki dhoop jo hai ye bhi khil jayegi.
9: Breakfast show with Vijay and Pooja,
16: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
17: What's going on?
16: क्या बकते हो?
0: अरे कहना क्या चाहते हो?
15: वेलकम टू व्हाट्स गोइंग ऑन। थोड़ी देर बाद आपको हम बताएंगे क्या हो रहे हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में। और उससे पहले आज क्या बकते हो ये कहानी जो है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं।
12: बिल्कुल अरुण ने कहा था बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, आप जरूर सुनिएगा। एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद इन इंडिया। मैं बोलने जा रही थी हैदराबाद इन यूएसए, हैदराबाद इन इंडिया, यहाँ की कहानी है ये, जहाँ पर एक ऊबर रिक्रूटिंग कंपनी है। इन्होंने एक बहुत ही कमाल का यू नो सिचुएशन जो है ये शेयर किया। कुछ कैंडिडेट्स आए थे यहाँ पर जॉब के लिए, हु क्लियर्ड ऑल इंटरव्यू राउंड्स, और उन्हें दरअसल एक कंपनी मैकबुक जो है ये इशू की गई थी। एंड दिस इज समथिंग विच केम फॉर, जहाँ पर एक पोस्ट जो है ये किया गया था बाय द कंपनी ऑन लिंक्डइन। इन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स गोस्टिंग ऑन जॉइनिंग डे इज नॉट समथिंग न्यू, लेकिन इनके साथ तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। एक शख्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया, ही जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम एग्जिस्टेंस। उनके नंबर पर जब फोन किया गया तो बताया गया कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट स्विच्ड ऑफ, नॉट अनरीचेबल, लेकिन डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली उस शख्स ने ना केवल इनको ब्लॉक किया, लेकिन पूरा का पूरा अपना जो आईडी है, आइडेंटिटी है, ये ही मिटा दी। और इसके बाद चलकर जब उन्होंने उनका लिंक्डइन पेज चेक किया तो द पेज वाज आल्सो नॉट फाउंड। ही डिडंट रिसीव एनी डीएक्टिवेट हिज अकाउंट बेसिकली नोटिस वगैरह, बट उन्होंने कम्प्लीटली अपना जो अकाउंट है ये डिलीट ही कर दिया। जब उन्होंने लैपटॉप डिलीवरी एड्रेस ट्रेस किया तो एक वैकेंट प्लॉट तक वहां पर वो पहुंचे। एंड हाँ, एंड बिहाइंड एन अबंडेंट बिल्डिंग वो वैकेंट प्लॉट जो है ये था। सो बेसिकली उन्होंने अपना जो लैपटॉप ड्रॉप लोकेशन है ये भी फेक दिया, मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है ऐसी कोई एड्रेस। और उनकी जो आईटी टीम है, जब उन्होंने लैपटॉप को तलाशने की, उसे लोकेट करने की पूरी कोशिश की, तो उन्होंने पूरी की पूरी लैपटॉप को फैक्ट्री रीसेट पर डाल दिया, जिसके बाद चलकर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मिले ही नहीं उनकी आईटी टीम को। सो बेसिकली ये जो शख्स हैं, इन्होंने ना केवल डे वन अपनी नौकरी स्किप की, लेकिन अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी इन्होंने फेक की, और विदाउट अ सिंगल डिजिटल फुटप्रिंट ये गायब भी हो गए, और कंपनी का लैपटॉप जो है ये भी लेकर फरार हो गए।
15: क्या क्या कर गुजरते हैं लोग, क्या ना एंजॉय करें। कुछ देर बाद कम्युनिटी की खबरें होंगी।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो क्या हो रहा है ऑकलैंड में, हमारे आसपास, इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। और सबसे पहले ग्रैंड कीर्तन संध्या ये होने जा रही है कल वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एव पापाटोई टोई में रात 7:30 बजे से। कलाकार रहेंगे रोनल्ड सिंह रोनू और जैनेश सेवक। टिकट्स इसके लिए आप ले सकते हैं जेस फ्रेश मार्ट शेली रोड पापाटोई टोई से।
4: और इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं कि एक और एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है और इसका हिस्सा आप बेशक बन सकते हैं। वैसे ये है 25th एनिवर्सरी ऑफ राधा कृष्णा मंदिर, जिसके सार्थात श्रीमद् भागवत कथा जो है ये हो रही है 5th से लेकर 11th ऑफ जून तक, यानी कल से इसकी शुरुआत जो है ये होगी। महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्णा मंदिर 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस, इसके लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ पर कथाकार रहेंगे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा।
3: और मुस्कान केयर ट्रस्ट न्यूजीलैंड द्वारा एक स्पेशल ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया इन कंडीशंस के बारे में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसे कंडीशंस हैं जो अक्सर दिखते नहीं, लेकिन इनका असर बहुत लंबे समय तक पड़ सकता है। मेनी पेशेंट्स रिलाई ऑन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगभग हर 3 हफ्ते पर सिंपली टू स्टे अलाइव। आप एक ब्लड डोनर होकर यू कैन मेक अ रियल डिफरेंस और एनकरेजिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स टू डोनेट। एवरी डोनेशन हैज़ द पोटेंशियल टू सेव लाइव्स। और आपको जो इंटरनेशनल सिकल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव है, इसके लिए इनवाइट किया जा रहा है मेनुकाओ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर में 20th ऑफ जून को ये रहेगा। अगर कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो www.muskancaretrust.org.nz आप विजिट कर सकते हैं।
4: और इसके साथ साथ ब्राह्मण सभा न्यूजीलैंड आपको इनवाइट कर रहे हैं अधिक मास कथा और यज्ञ के लिए, जो इसी संडे 7th of June को रहेगा। रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव मेनिकाओ, इसके लिए आप पहुंच सकते हैं। प्रोग्राम जो है ये सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और उसके बाद ये हवन आरती और शांति पाठ के साथ खत्म होगा और आप जरूर इसमें भाग ले सकते हैं। याद रहे इसी संडे 7th of June को।
3: दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ ये रहेगा शनिवार 13 जून को। और ये रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव मेनिकाओ में होगा। सुबह 7 बजे स्थापना पूजा और 8 बजे से चालीसा पाठ आरंभ हो जाएगा अलग अलग मंडलियों द्वारा, जो दिन भर चलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंडली इसमें हिस्सा ले तो 0210-2991-219 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान आपके लिए प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा।
4: और साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि अन्य लोगों तक जानकारियां पहुंचे एंड इट्स हैपनिंग स्पेशली फॉर द कम्युनिटी, तो आप जरूर हमारे पास वो भेज सकते हैं buzz@humfm.com पर। अपने इवेंट से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है आप हमारे पास ईमेल कर दीजिए buzz@humfm.com पर और फिर आपके लिए वो सारी जानकारियां जो है हमारे व्हाट्सएप ऑकलैंड के कम्युनिटी सेगमेंट में हम जरूर लेकर आएंगे।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 23 मिनट हो रहे हैं अभी 9:00 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. याद रखें अब जून का महीना आ गया और स्पेशल इवेंट जो है ये 18th ऑफ जुलाई को होने को है और बस एक महीना ही बाकी रह गया है व्हेन कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर ये रहेंगे द ग्रेट कॉमेडी नाइट में. ट्राईविजन इवेंट्स की ये पेशकश विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में 18th ऑफ जुलाई को.
3: आपके पास मौका है कि आप इस बहुत ही हिलेरियस धमाकेदार बहुत ही कमाल के कॉमेडी शो का हिस्सा जो है ये बने. एंड दिस इज द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं. अगर आपने टिकट्स नहीं लिए हैं अभी तक तो आपको विजिट करना होगा bookmyevent.co.nz. रिमेंबर bookmyevent.co.nz जहां से आप टिकट्स जो है ये अपने लिए ग्रैब कर सकते हैं. बट जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन बुकिंग द टिकट्स फॉर योरसेल्फ तो आप 0204327200 पर कॉल जरूर कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू आउट बुक योर टिकट्स इजीली. एंड इनफैक्ट आपके लिए तो अब आफ्टर पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है. इसका मतलब ये कि अगर आप कोई भी टिकट लेना चाहते हैं जहां पर यू फील लाइक ओके वी बाइंग अ बल्क यू नो नंबर ऑफ टिकट्स बल्क बेसिकली तो द अमाउंट विल बी क्वाइट अ लॉट. सो हाउ अबाउट आप इसे आफ्टर पे के थ्रू पे करें. दैट मींस योर पेमेंट्स विल बी स्प्लिट इनटू फोर एंड दैट टू फोर्टनाइटली पेमेंट्स के तहत आपको पे करना होगा विच मींस यू वुडंट फील द बर्डन दैट मच. सो टिकट जरूर ग्रैब करें जल्द से जल्द क्योंकि मोर देन 30% टिकट्स जो है ऑलरेडी बिक चुके हैं. द लास्ट टाइम आई थिंक जब हमने इसके बारे में बातें की थी विच वॉज लास्ट वीक ऑफ ट्यूजडे और मंडे किसी दिन लास्ट वीक मंडे आई थिंक हमने इसके बारे में बातें की थी. एंड उस टाइम पर जब हमारी बातें हुई थी विद धर्मेंद्र शाम ऑफ ट्राईविजन इवेंट्स तो उन्होंने इनफैक्ट हमको बताया था कि ओवर द वीकेंड मोर देन 30% बिक चुके थे. अभी तो दो वीकेंड्स निकल चुके हैं उसके बाद तो वी कैन ओनली इमेजिन दैट अ लॉट ऑफ इट माइट बी सोल्ड नाउ. सो मोर देन 30% क्या मोर देन 40% या 50% भी हो सकता है. यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन इट राइट.
2: यस एग्जैक्टली. तो टिकट्स जल्द से जल्द आप ले लें और एक बहुत ही अनोखी बहुत ही यू नो आई एब्सोल्युटली लव कृष्णा अभिषेक. वो नेचुरली ही बहुत फनी है ना. और राजीव ठाकुर ये बात शायद आपको या बहुत लोगों को पता नहीं हो ही इज एन अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियन.
3: वो है बिकॉज ही हैज डन सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल जिसका हिस्सा जब वो बने हैं तो डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिली है. इन्होंने आई थिंक वन ऑफ द शोज जिसमें मैंने उनको फॉलो किया था वॉज कॉमेडी सर्कस और उसमें देयर वाज शेखर सुमन अर्चना पूरन सिंह सोहेल खान वाज वन ऑफ द जजेस एट वन ऑफ द टाइम्स एंड देन देयर वाज रोहित शेट्टी जो एक टाइम पर वो भी एक जज थे. सो आई रियली फॉलोड दैट शो कॉमेडी सर्कस और उस दौरान मैंने उनके बहुत से एक्ट जो है ये देखे थे एंड आई रियली लव्ड द वे ही परफॉर्म्स. सो यस नॉट जस्ट कृष्णा अभिषेक लेकिन राजीव ठाकुर भी आ रहे हैं. राजीव ठाकुर के अपने बारे में बातें की तो ना केवल ये एक कॉमेडियन है स्टैंड अप कॉमेडियन है बल्कि एक एक्टर भी है. इन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है एंड देयर इज अ हिंदी वेब सीरीज जिसमें ये नजर आए थे.
2: अच्छा कौन सा.
3: यस yes. कौन सा मैं क्यों बताऊं अभी क्योंकि वो तो आपको बताना है. आप जब हमें बताएंगे तभी आपका नाम हम ड्रो में शामिल करेंगे जहां पर आप जीत सकते हैं डबल पासेस टू द ग्रेट कॉमेडी नाइट happening on the 18th of July at Victory Convention Center.
2: Yes. तो राजीव ठाकुर किस हिंदी वेब सीरीज में थे ये आपको हमें बताना है. सबसे पहले कॉमेडी लिखना है उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम और 5599 पर हमारे पास उसे आप भेज दें. इन केस यू वांट टू बुक टिकट्स फॉर ग्रेट कॉमेडी नाइट तो जब जवाब आप भेजेंगे लिंक आपको मिल जाएगा. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन वेरी इजीली बाय द टिकट्स आल्सो.
3: Yes, very very easy. तो चलिए आज का हमारा question for you, for a chance for you to win double passes to the great comedy night. आपको बस बताना है कि राजीव ठाकुर जो कि आ रहे हैं perform करने for the very first time with कृष्णा अभिषेक इस comedy show के तहत वो किस हिंदी web series में नजर आए थे. मैं आपको दो clues देती हूँ. ये जो web series है ये 2024 में आई थी और ये Netflix पर है.
2: Okay.
3: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी एंड स्टिल ऑन नेटफ्लिक्स.
2: तो कॉमेडी अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजे. अगले दो गानों का टाइम है आपके पास व्हेन यू कैन सेंड योर आंसर्स थ्रू टू अस.
0: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
4: गुंडी खड़ा या सीधा अंदर आऊं.
5: मैं
1: लाऊं अपना ए गेम.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Soldier.
1: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Fuel के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
5: मुझे भी.
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
6: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल.

0: Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
2: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है. क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें. गटरों को साफ रखें. खुली चीजों को बांध लें. अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें. अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ। अच्छा बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: What's going on?
10: 22 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में। आज तड़के सुबह बे ऑफ प्लेंटी के एक इलाके में एक घर में लगी आग के बाद कई लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। ये आग आज सुबह 3 बजे के वक्त वही हाउ बे स्थित एक घर में लगी थी। स्टाफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक फायर इमरजेंसी न्यूजीलैंड के एक प्रवक्ता ने बताया है कि चार फायर क्रूज जो है इनको सुबह 3 बजे के वक्त इस छोटे से कोस्टल सेटलमेंट में भेजा गया था। जब फायर क्रूज वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आग घर में पूरी तरह से फैल चुकी है और प्रवक्ता ने ये बताया कि एट दिस स्टेज देयर इज अ नंबर ऑफ पीपल अनअकाउंटेड फॉर और अभी वो पुलिस के साथ इस मामले में मिलकर काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक महिला जो उस घर के मालिक को जानती हैं उन्होंने बताया कि ये घर जो है एक व्यक्ति को अभी हाल ही में उसके पिता से मिली थी। ही वॉज अप एंड मूविंग फॉरवर्ड विद हिज लाइफ और उसके बाद ये दुर्घटना जो है ये घट गई। आज सुबह 7:30 बजे तक फायर फाइटर्स जो हैं ये घटना स्थल पर थे, रिमूविंग पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग ताकि पूरी तरह से आग को बुझाया जा सके। एक फायर इन्वेस्टिगेटर को भी घटना स्थल पर भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सुबह 4 बजे के वक्त इस आग की जानकारी मिली और अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या जो एड्रेस है या जो घर है उस समय पर ऑक्यूपाइड था या नहीं, क्योंकि पुलिस काम कर रही है ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिनके बारे में ये खबर है कि वो वहाँ पर रहते थे। और जैसे ही इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी ये आपके लिए हम पर हम ज़रूर लेकर आएंगे।
11: तो एक और एक खबर जो है ये सामने आई है, दिस इज रिपोर्टर ऑन आरएनजेड, जहां पर कुछ बातें हो रही हैं अबाउट द गवर्नमेंट्स बजट दैट शोज की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड यानी कि MFAT जो है इन्होंने $162 मिलियन जो है कम स्पेंड किए हैं ऑन फॉरेन एड इन 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर देन प्रीवियसली जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था। नाउ एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है टेरेंस वुड और इन्होंने इस पर कुछ सवाल उठाए हैं। इन्होंने सीधा साफ क्वेश्चन किया है कि व्हाट हैपेंड टू द मनी। इन्होंने ये पूरा सिचुएशन डिस्क्राइब किया है एज बीइंग डिस्कवरिंग मनी स्टिल इन योर वॉलेट दैट यू थॉट हैड ऑलरेडी बीन स्पेंट। अब ये सवाल पूछा गया है MFAT से कि क्या ये पैसे गायब हो गए हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट द मिनिस्ट्री हैज सेड कि जो पैसे हैं वो गायब नहीं हुए हैं। इट वॉज नॉट टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट। ये इसका सिंपल मतलब ये है कि इट विल बी कैरी फॉरवर्ड एंड विल बी स्पेंट इन फ्यूचर ईयर्स इंस्टेड। तो इससे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये हुई है कि टेरेंस वुड ने ये कहा है कि इवन इफ द मनी वॉजंट लॉस्ट, ये काफी अनयूजुअल है कि इतना बड़ा लार्ज गैप जो है ये सामने आया है बिटवीन प्लैंड स्पेंडिंग एंड एक्चुअल स्पेंडिंग. और इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए हैं जिसपे इन्होंने पूछा है कि दिस एक्चुअली आर्ग्यूज एंड रेजेस क्वेश्चंस ऑन द बजटिंग एक्यूरेसी प्लानिंग और कि कैसे एड प्रोग्राम्स जो है ये फिलहाल मैनेज हो रहे हैं. नाउ व्हाट डज दिस डू टू द बजट दैट हैज बीन अनाउंस्ड रिसेंटली. इसका मतलब ये है कि 2026 का जो बजट है एक्चुअल इंक्रीजेस फ्रॉम फॉरेन एड फंडिंग. इसका मतलब फॉरेन एड स्पेंडिंग जो है इज सेट टू बी अबाउट 1.2 बिलियन दिस ईयर. एन एक्स्ट्रा 110 मिलियन डॉलर्स हैज बीन एलोकेटेड ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन. और ये जो MF18 ने ये जो बड़ा सा फैसला लिया है इज वन ऑफ द बिगर विनर्स इन द बजट बेसिकली. पॉलिटिकल एंगल अगर देखा जाए इसका तो लास्ट ईयर निकोला विलिस जो है इन्होंने कहा था कि ट्रेजरी ऑफिशियल्स ने कुछ टाइटर स्पेंडिंग्स जो है ये इनिशिएट किए हैं एंड दे हैव सजेस्टेड कि MF18 जो है ये अगर कुछ सेविंग्स कर सके तो. लेकिन विंस्टन पीटर्स ने इसे स्ट्रांगली पुश किया है टू प्रोटेक्ट द फॉरेन अफेयर्स फंडिंग. और इन द एंड 2026 के बजट में इट हैज बीन प्रोवाइडेड मोर फंडिंग देन मेनी एक्चुअली एक्सपेक्टेड. और एक और एक इशू है विच इज द क्लाइमेट फंडिंग जहां पर कहा गया है कि इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि न्यूजीलैंड स्टिल हैज इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स दैट आर नॉट फुली फंडेड.
10: साथ ही में एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है सॉरी जिनको एक साल के लिए चाइना हांगकांग और मकाऊ एंटर करने से बैन कर दिया गया है. इनमें शामिल हैं नेशनल पार्टी की मॉरिन प्यू, लेबर के डंकन वेब, एक्ट की लॉरा मैक्लूअर और न्यूजीलैंड फेस्ट के डेविड विल्सन. ये पिछले महीने एक क्रॉस पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप का हिस्सा थे जो गए थे ताइवान एज पार्ट और इनका एम था टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ताइवान. और उसके बाद चलकर चाइना ने ये कदम उठाए हैं जहां पर इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बैन कर दिया गया है.

0: सपोर्ट को, इस चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर दे वांट ओवरसीज टूरिस्ट्स को चार्ज किया जाए व्हेन दे आर विजिटिंग द कैथेड्रल कोव. तो इसका मतलब ये है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन है यानी कि DOC, ये कंसिडर कर रहे हैं चार्जिंग इंटरनेशनल विजिटर्स एट सम ऑफ न्यूजीलैंड्स मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जिनमें कैथेड्रल कोव, मिल्फोर्ड साउंड, माउंट कुक, टोंगरीरो एल्पाइन क्रॉसिंग जो है ये शामिल है. लोकल्स का मानना है कि हाई रेसिडेंट्स जो है इन्होंने कहा है, एंड द रेट पेयर्स एसोसिएशन, इन्होंने ये सर्वे किया है विद लोकल हाउस होल्ड्स, और उनका कहना है कि अबाउट 30% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव रिस्पॉन्डेड, एंड ऑफ दोज हु रिस्पॉन्डेड 32% जो है इस चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट यस इंटरनेशनल विजिटर्स शुड बी चार्ज्ड टू विजिट कैथेड्रल कोव.
1: तो आपके लिए और भी कई जानकारियां जो है इसी तरह से बारी बारी से आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे.

तो इस घंटे की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था और सरप्राइजिंगली उसके आंसर्स तो आए हैं, बट कुछ गलत आंसर्स भी आए हैं। शीतल, आपने जो जवाब भेजा है, एक तो आपका जो कीबोर्ड वो

0: गलत है, अपने कॉमेडी लिखने को कहा था, और दूसरा आपने कहा राजीव ज्वाइंट पेन विद फैमिली. नाउ आई हैव नो आइडिया कि व्हाट शो इज दिस, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर वॉचिंग एनी सच शो, एंड ना तो मुझे इसे इनके नाम पे ऐसा कोई शो मिला भी है. सो अनफॉर्चुनेटली योर आंसर वुड बी इनकरेक्ट एंड आपकी एंट्री भी इनवैलिड हो जाएगी. बट टू ऑल दोज जिन्होंने हमारे पास अपने अपने आंसर जो है ये भेजे हैं, थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए. एंड वुड लाइक टू विश मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विशाल, आप हमारे विजेता हुए हैं आज के. आपको आज का जो डबल पास है ये मिल रहा है. वी हैव गॉट वन मोर पास टू ड्रॉ, तो ये हम कल जरूर करेंगे. बट फिलहाल के लिए विशाल मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस. और आपको ये भी हम बता दें कि आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स आर 5456. और जो सवाल हमने किया था कि वो कौन सा वेब सीरीज है जिसमें हिंदी वेब सीरीज है जिसमें राजीव ठाकुर ने काम किया था, क्लू के तौर पर हमने आपको बताया था कि ये नेटफ्लिक्स पर अभी भी है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और 2024 में आई थी. So the web series is IC-814, the Kandahar hijack, जिसमें विजय वर्मा भी थे, and there were so many other amazing actors जो कि इसका हिस्सा थे, और उसमें he played one of the hijackers, राजीव ठाकुर.
1: Yes, I watched that series. लेकिन मुझे याद तो नहीं था. Thank you so much आपके answers के लिए. आज की पहली बात, कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया में खुशबू की तरह होते हैं.
0: अच्छा.
1: महसूस रोज होते हैं, पर दिखाई नहीं देते.
0: That's like one of the most beautiful relationship you can have with someone, isn't it?
1: Yes. और आज की दूसरी बात,
0: जी,
1: नियंत्रण यानी कंट्रोल बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: अगर आमदनी कम है तो खर्चे पर, और जानकारी कम है तो शब्दों पर.
0: See, there you go. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत गहरी होती हैं, कभी कभी कड़वी होती हैं, पर सच्ची होती हैं. तो उम्मीद है कि इन बातों को आप भी अपने जीवन में अमल में लेकर आएंगे, और इनसे जुड़े जो पॉजिटिव बदलाव है ये आप जरूर करेंगे खुद पर, आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए. चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. हम आपसे मिलते हैं अब एक बार फिर मंडे को, मेरे ख्याल से आपसे मुलाकात होगी. कल कौन सा दिन है?
1: कल शुक्रवार है.
0: अच्छा अच्छा, देखते हैं कल. चलो, टेक केयर.

0: क्योंकि आ रही है
1: My Time with Kashika.
2: Kia ora and namaskar and a very very good morning to you people. How are you? आज का दिन थर्सडे का दिन है, 4 जून हो चुका है. देखो, जीवन यदि अच्छा करना है तो उसको जिया जाए, यही काफ़ी लंबा रहता है, है कि नहीं? और ऐसे में दो हमारे पास ऐसे वॉरियर्स हैं जिनको हमेशा अपना हमें मान के चलना है कि वो हैं हमारे योद्धा, हम कह सकते हैं उनको. एक है समय और दूसरा है धैर्य, यानी कि पेशेंस. सो ये दोनों चीज़ों को आपको साथ साथ रखते हुए बस अपने इस परसों के दिन के लिए याद तैयारी करनी है, क्योंकि भाई वीकेंड आ रहा है. देखो, अभी परसों हमने शुरू किया था और आज फिर हम कह रहे हैं लो वीकेंड आ गया. ये जब शॉर्ट वीक होते हैं ना तो एक अलग सा उत्साह होता है. मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में ख़ासतौर पर हम जो कीवी इंडियंस हैं, हम लोगों को एक चीज़ बहुत इंस्पायर करती है, और वो क्या है? वो इंस्पायर हमें करती है कि अरे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है. हम कितने खुश हो जाते हैं. बैक होम कभी हम ऐसे सोचते थे? इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा प्लानिंग करते थे? नहीं. दूसरी चीज़ जिससे हम खुश हो जाते हैं वो होता है वेदर. आज का मौसम ऐसा है, आज का मौसम ऐसा है. हम लोगों के टॉपिक और हमारे डिस्कशंस इसी चीज़ पर बेस्ड होते हैं. भाई वीकेंड पर क्या करने वाले हो? अरे मौसम ख़राब है, मैं तो सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ मैं घर पर बैठने वाला हूँ. ऐसे ही कुछ होता है ना. ऐसे में प्लानिंग आपने अपने लिए ज़रूर कर ली होगी आने वाले वीकेंड के लिए. मौसम ओके ओके होने वाला है, लेकिन इस वीकेंड में आपका टाइम आपके लिए है कि नहीं? बस यही याद दिलाने के लिए आपकी रिमाइंडर क्लॉक, मैं काशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज में 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. बिग थैंक यू टू कशिश फूड्स, जिनके ओर से मैं कह सकती हूँ आपको एक सुनहरा सा मौका मिल जाता है जहाँ मैं आपके साथ बहुत सारी बातें कर लेती हूँ, और ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है. तो चलो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बातें करेंगे समथिंग अबाउट आवर फेस. और जब हमारा फेस टैन हो जाता है, पहले गाना बजाती हूँ. बजाऊँ क्या?
1: बजाओ क्या?

0: Sports Adda.
1: ऐसा होता है ना कि हमें यहाँ का सन जो है सूट नहीं करता, और कहा जाता है हमेशा हम लोग अपने फेस पर सनस्क्रीन लोशन लगाएं. दीज काइंड ऑफ थिंग्स रियली हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर स्किन. आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड मेरा एक पर्टिकुलर रूटीन है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब सन टैन हो जाता है ना तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर लगता है कि क्या किया जाए. अब ये जो एक्सपोजर हमें होता है, जब हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है अनइवन हो गई है, हाँ डल लगने लग गई है, टैन हो चुकी है, तो कभी कभी बड़े एक्सपेंसिव डिटैन करने के ट्रीटमेंट्स होते हैं. अब इन ट्रीटमेंट्स को हम अगर बाहर से ना खरीद के सपोज़ करो घर से यूज़ कर ले तो कैसा रहेगा. सच बताऊँ इट हैज़ रियली वर्क फॉर मी. और जब मैं आज के लिए प्रेप कर रही थी तो उस समय मुझे मेरी मम याद आ गई, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मेरे फेस पे कुछ अलग सा वो था, एंड शी यूज टू डू दिस, एंड आई से पता नहीं क्या करती हैं, ऐसे दाल लगा देती है मेरे मुंह के ऊपर. लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली कितना फ़र्क पड़ा उस चीज़ से. लेकिन उससे अभी भी मैंने जब आज पढ़ा तो आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड अबाउट इट. इट्स लाइक अ मसूर दाल. अब मसूर दाल जो है, जो हम रेड कलर की दाल होती है, हम सबके घर पे होती है, इसका ग्रीनी टेक्सचर जो होता है जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, आपके डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको हटा देता है, एक ब्राइटर स्किन जो अंदर होती है वो बाहर लेकर आती है. तो क्या करना है, आई स्टिल रिमेंबर दैट नुस्खा, एंड द नुस्खा इज 2 टेबल स्पून आपने मसूर की दाल ले ली, 1 टेबल स्पून आपने कच्चा दूध ले लिया, और 1 टीस्पून आपने हनी ले लिया. आपको क्या करना है, इन्हें भिगोना है और उसके बाद इसको पीस कर, इसको ग्राइंड करके आपको अपने फेस पे लगाना है. हैव अ लुक एट द करिश्मा, हैव अ लुक एट द थिंग्स जो उससे आपको एकदम फर्क पड़ता है. भाई इसके साथ साथ एक दाल और है, वो है चने की दाल. अब चने की दाल का मोस्टली हम लोग उपटन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें अगर हम हल्दी ऐड कर देते हैं तो ये भी डिटैन भी कर देता है, आपकी स्किन पर ग्लो भी ले आता है. तो अगर 2 टेबलस्पून आपने चने की दाल का पाउडर ले लिया और उसके साथ आपने हल्दी डाल दी, रोज़ वाटर डाल दिया, एक स्मूथ पेस्ट बनाकर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं. काली वाली दाल यानी कि उड़द की दाल, अगर आपको स्किन में ड्राइनेस है या इरिटेशन हो रही है तो उड़द की दाल एलोवेरा के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. क्या करना है, आपको 2 टेबलस्पून उड़द की दाल का पाउडर लेना है, और उसके बाद इसको आपने 1 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल आपने उसमें ऐड कर दिया. ब्लेंड करने के बाद आपको अपने फेस पे 15 मिनट तक लगा के छोड़ देना है. देखो आप फ़र्क, उसके बाद कितना फ़र्क पड़ता है. तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल, ऑफकोर्स माई फेवरेट, एंड ये एक्सफोलिएशन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखता है. आप क्या कर सकते हैं, इसको टमाटर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं और आपकी स्किन कितनी ब्राइट हो जाएगी. क्या करना है आपको, आपको 2 टेबलस्पून उड़द की दाल को या माफ़ कीजिएगा तुअर की दाल या अरहर की दाल को सोक कर लेना है पानी में, और उसमें फिर 1 टेबलस्पून आपने ताज़ा वाला टोमेटो का पल्प लेना है. अब आपको इनको दोनों चीज़ों को लेके ऐड करना है, लगभग आधा घंटा इसको आप फेस पे छोड़िएगा, और उसके बाद फिर आप नोट करेंगे आपकी स्किन कितनी ब्राइट हो जाती है, कितनी इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन से निकल जाती हैं. देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, जो हमारे घर पर मिलती हैं ना, दे आर फार मोर सुपीरियर टू व्हाट वी आर गोइंग टू बी बाइंग फ्रॉम आउटसाइड. हमारे डेड स्किन निकल जाती है, हमारा एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, एक टैन चला जाता है हमारे फेस के ऊपर से, साथ साथ हमारी बॉडी भी नरिश होनी शुरू हो जाती है. ये कुछ पैक्स जो हैं आपकी स्किन के रूटीन में अगर आप ऐड कर लें तो भाई वाह, सच बता रही हूँ. कभी कभी आप इन नुस्खों को जब ट्राई करते हैं ना तो आपके लिए ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है. मैंने अभी तक जितने नुस्खे भी दिए उनमें मुझे कई लोग जब मिलते हैं या कॉल करते हैं और बताते हैं कि बहुत ही अच्छा गया, हमने इसे ट्राई किया, इट वॉज़ रियली वर्थ इट. सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. फिलहाल के लिए एक ट्राई मारिए, अपने फ़ोन को उठाइए, 5599 पे आप लिख के भेजिए कहाँ से सुन रहे हैं. एक ऑफिस शाउट आउट मुझे आपको देना है बस थोड़ी देर में.
0: My time with Kashika.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में. आप ही तो नहीं.

0: अपने जैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Mary didn't think she needed a DVS system. I've got a heat pump. That should do. But it didn't do it, did it, Mary?
2: No. My windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Mary got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800-4SUN-TOURS. दैट्स 0800-478-686. लिमिटेड spaces.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: It's cold outside and the couch is on your mind.

0: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डाले, पता करे कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड।
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Office shout out.
3: Office shout out में this is very funny and Ash from Wellington, आपका text आया है and आपने लिखा के very happy cloudy and Ayurvedic face remedy. Good morning Kashika ji, it's funny. Thank you so much. बहुत ध्यान से सुना है, hope आप भी. It's not just for females कि मैंने जो ये दाल वाले packs बताया आपको. I think आप ही, you know, as a male can do all this and bring lot of things to your face. I know somebody who's very, very interested, जो जिन्हें मैं जानती हूँ, जो हम packs लगाते हैं उनको बहुत keen होते हैं जानने के लिए. आप लोग कौन सा पैक लगाते हैं ज़रूर हमें बताइए प्लीज़, हमें भी वही पैक लगाना है. अच्छा लगाओ, बता देते हैं हम फिर भी. अच्छा एंड 0903, आपने अपना नाम तो लिखा नहीं, आप ऑकलैंड से सोमरविल से सुन रहे हैं, सो बिग थैंक यू टू यू. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक टॉपिक अब आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: चिकन।
1: वाह,
2: हाँ।
1: अद्भुत।
3: एक सोर्स के थ्रू पता चला एक बड़ा अद्भुत सी एक बात है कि आमिर खान और गौरी वो एक साथ एज अ फैमिली रह रहे हैं फॉर ओवर अ ईयर नाउ, और लगता है एक स्टेबल लाइफ अपनी साथ साथ जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, फैमिली के उसमें प्रेजेंट हैं ये हर जगह। बट लुक्स लाइक एक उनका स्पेशल डे तय हो चुका है और ये ऑफिशियल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। शायद जुलाई 5 इज़ द डे जहाँ पे पब्लिकली अपने 60th बर्थडे पे, वैसे इन्होंने अनाउंस किया था कि गौरी इज़ हिज पार्टनर, और लगता है ये शायद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। बट एक कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने कहा कि इस रिलेशनशिप के बारे में उनको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा श्योर मुझे कुछ कहना है, लेकिन क्या कहना है कि उन्होंने कहा कि गौरी और हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, एंड वी हैव कमिटेड स्पेस, वी आर पार्टनर्स, वी आर टुगेदर, और मैरिज इज़ समथिंग, उन्होंने कहा कि आई एम ऑलरेडी अगर देखा जाए तो मैरिड टू हर, सो वेदर उसे फॉर्मलाइज करें या ना करें आई विल डिसाइड अबाउट इट, उन्होंने ये कहा है। बट एक जो रूमर आ रहा था कि इनका लगता है कि कुछ बंधन होने, गठबंधन होने वाला है, तो वी विल कम टू नो, बट शॉर्टली देखते हैं कि कौन किसको अपनाता है, क्या ये अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। इनका फैमिली तो खैर दे आर ऑल वेरी कूल अबाउट इट।

0: Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better. भाई ऐसे में एक खबर आ रही है जो यू नो जितने हम हॉलीडेज के लिए प्लान करते हैं ना, कैंपर वैन्स होती हैं हमारी, और ऐसे में ये कैंपर वैन्स जो हैं इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है. 7th of June से ब्लू वारंट्स विल नो लॉन्गर बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्रीडम पार्किंग कैंपिंग स्पेस. अब कैंपर्स को 6 June से पहले स्विच करना होगा टू द ग्रीन वारंट सिस्टम. अब ये फ्रीडम कैंपर्स जो है दे कैन फेस एन इन्फ्रिंचमेंट ऑफ $400 जब यू नो आप किसी पब्लिक लैंड पे इसको जगह लगाते हैं, जब आपका ग्रीन वारंट आपके पास नहीं है. ये चेंज है जहाँ पे एक ट्रांजिशन है, जहाँ न्यूजीलैंड ने पहले एक न्यू सेल्फ कंटेन व्हीकल का सर्टिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था इन 2023 दिसंबर. अब उसके बाद अब ये ट्रांजिशन पीरियड जो था, इट वॉज टू गिव द व्हीकल्स की एक सर्टिफिकेशन है अंडर द न्यू सिस्टम. 68,000 व्हीकल्स जो है इन्हें सर्टिफाई किया गया है और इशू किए गए हैं ग्रीन सेल्फ कंटेनमेंट वारंट्स को. ये नया जो फ्रीडम कैंपिंग सिस्टम है ये एम कर रहा है कि रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम कैंपिंग. ये व्हीकल्स जो है इनको एक रिक्वायरमेंट के साथ साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा. दिस इंक्लूड्स हैविंग फिक्स्ड टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, वेंटिलेशन, रबिश स्टोरेज, और मैनेज आप कर सकते हैं किस तरह से ये वेस्ट वाइल ट्रैवलिंग. सो ये इम्पॉर्टेंट पब्लिक लैंड फ्रीडम कैंपिंग इन जगह पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. और देखते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा पहचान का है तो डेफिनेटली आप उन तक की बात पहुंचा जरूर दीजिएगा.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा.
5: अच्छा तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson May with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
6: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from $2,799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Oh my, oh my. Grey South Road, greater than ever.
12: South Auckland's buses just became a lot better.
11: Weymouth Road, way better buses.
12: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
11: Woody, no worries. MIT, A-OK.
12: Search AT, Better South Auckland Buses for details.
11: Airport, got your transport.
12: Then turn up and go.
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
14: हाँ. अच्छा
13: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
14: मिसेस सिंह.
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: ये ऐसी चीज़ है जो शायद न्यूजीलैंड में हमें नहीं मिलती, लेकिन हम कितने खुश होते हैं जब कहते हैं कि न्यूजीलैंड में स्नेक्स नहीं है. अभी मैंने एक कहीं पे कुछ देखा था सोशल मीडिया पे, शायद किसी के घर पर एक स्कॉर्पियन आ गया था. एंड अब वो कैसे स्कॉर्पियन आया था उनके ट्रैवल के बैग्स के अंदर स्कॉर्पियन पाया गया कि नहीं, बट आई सॉ सम फोटो एंड आई वाज रियली स्केयर्ड अबाउट इट. बट देखो यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं ना रुक नहीं पाते. बट आपका जो सपना है इट्स रिलेटेड टू स्नेक्स, और आपने कहा कि आपको सपना आया कि एक स्किन जो है स्नेक की वो निकल रही है. अब ये शेडिंग ऑफ द स्किन जो होती है ये सिंबलाइज करता है आपका रिन्यूअल, आपकी हीलिंग, और किस तरह से आप आउटडेटेड बिहेवियर्स को छोड़कर आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं. इजंट दैट अ बेटर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग कि आपको सपने में क्या आया था. तो सपने में अगर सांप ने अपनी स्किन जो उनकी निकल रही है तो समझ लीजिए कि ये सिंबलाइज कर रहा है एक नई शुरुआत हो रही है, एक रिन्यूअल हो रहा है, आप हील हो रहे हैं अंदर से. और यू नो कभी कभी लोगों के कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, आप कहते हैं ना चलो इससे फॉरगेट इट लेट्स स्टार्ट न्यू. तो उस तरह से आप उन चीज़ों को उन लोगों को छोड़ते हुए वो स्किन हटाते हुए अपने ऊपर से जैसे कहते हैं ना आई एम टेकिंग ऑफ माई कोट आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब. तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए नई चीज़ की तरफ जाने लगते हैं. तो ऐसा ही कुछ जो है आपके साथ हुआ होगा. तो आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे हो. थैंक यू सो मच. और अगले ड्रीम डायरी जो है मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगी. कुछ है माइंड में तो बताइएगा. हाँ, अभी माइंड में अगर कोई सिक्स वर्ड स्टोरी है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं.

ये पर्टिकुलर फिल्म जो है, मैं आई वॉज अ विटनेस टू इट इन 1991. ये रिलीज हुई थी, इसके प्रीमियर पे मैं गई थी. एंड क्या एक वो माहौल था जहाँ पर आई थिंक आई वॉज एट दैट सिनेमा हॉल इन वर्ली मुंबई. सत्यम शिवम एक सिनेमा हॉल्स थे वर्ली में, तो वहाँ पे इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था. तो वहाँ पे देखने के लिए मैं गई. एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई सॉ दिस, एक 1976 की एक अमेरिकन क्लासिक मूवी थी जिसका नाम था टैक्सी ड्राइवर. देन आई रियलाइज कि ये फिल्म जो है उधर से अनऑफिशियली अडेप्ट की गई है. एंड द फिल्म इज सड़क. अब सड़क फिल्म जो है बहुत अच्छी चली, इसके गाने बहुत कमाल के चले. और इनिशियल चॉइस जो थी, जो फिल्म के लिए जहाँ पे संजय दत्त की जगह जैकी श्रॉफ को लेने का विचार था, और जैकी श्रॉफ उस समय एक मैसिव सक्सेस पीरियड से गुजर रहे थे जहाँ पे राम लखन, परिंदा जैसी मूवीज़ जो उनकी हिट हो गई थी, तो ये उस समय शायद लगता है वो अवेलेबल नहीं थे. बट आई थिंक संजय दत्त did a fabulous job. और एक award winning performance जो थी, जो देखी और जिन्हें देख कर वाकई डर लग रहा था, वो इस महारानी, that character I can't ever forget. सदाशिव अमरापुरकर, इन्होंने एक legendary performance जो थी वो दी, और he became the first actor to win the filmfare award for the best villain in a category. इसके पहले male actors को standard roles के लिए ही recognize किया जाता था, but this was the first time. तो उसी film का ये beautiful सा track आपके लिए.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 20, overnight temperature of 15. आज का forecast बताया जा रहा है clouds रहेंगे, heavy rainfall भी expected है, और साथ साथ sunset 5:13 पे बताया गया, but it feels like 16 degrees right now.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning massage.
3: Ladies and gentlemen, dil tham ke baithi, kyunki aa rahi hai.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? 4 जून का दिन है, 11:05 होने वाले हैं. आपका साथ निभा रही हूँ मैं कशिका 12 बजे तक. वैसे 10 से 12 बजे का ये जो सफ़र होता है आपका और मेरा, बहुत ही खूबसूरत होता है, जहाँ पर मैं आपके लिए ढेर सारी बातें ऐसी चुन चुन कर लेकर आती हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके सेहत के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है. और ऐसे में ये सब चीज़ें जब मैं संजो के लाती हूँ, 10 से 12 बजे का एक टाइम होता है जो आ जाता है आपके लिए कशिश फूड्स के सौजन्य से. कशिश फूड्स एक जाना माना नाम है जो न्यूज़ीलैंड में बहुत बड़ा एक नाम मैं कह सकती हूँ. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो वाकई ही कमाल के, चाहे आप डोसा बैटर उठा लीजिए या फिर आप गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट से लेके दालें, ग्रोसरी, घी, चाव, आटा, राइस, एनीथिंग. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी कमाल की होती ही हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे दाम हैं जो अफोर्डेबल भी आपके लिए रह जाते हैं. चलिए 6 वर्ड की स्टोरी के लिए हो जाइए तैयार. और साथ साथ इस समय कहाँ से सुन रहे हैं आप? वैसे एक बात तो है, 104.2 FM से आप सुन रहे हैं या फिर आप हमें रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग. वैसे रोवा ऐप की बात मैं करूँ तो बड़े फ़ख्र के साथ, बहुत ही प्राउड फील करती हूँ जब मैं ये कह सकती हूँ कि रोवा का नंबर वन म्यूज़िक स्टेशन हमारा हम रिवाइंड है, जो 60s, 70s के हिट्स आपके लिए लेकर आता है. इनफैक्ट इट्स द नंबर वन म्यूज़िक स्टेशन ऑफ रोवा. कितने सारे रेडियो स्टेशन, उसमें कितने सारे म्यूज़िक स्टेशन हैं. और इसके साथ साथ 80s का जूक बॉक्स जो है वो हमारे नंबर 2 पोजीशन पर आता है, जहाँ 80s के ट्रैक्स आप सुन पाते हैं हमारे जूक बॉक्स के ज़रिए. फीजी कीर्तन संग्रह, चढ़दी कला, पंजाबी हिट्स, फीजी कीर्तन संग्रह, साथ साथ फीजी भजन और राहत फतेह अली खान के भी गाने, इनके भी म्यूज़िक स्टेशंस अलग अलग हैं. सुनते चले जाइए हम और मैं काशिका.
0: बचाओ क्या,

0: ईट बेटर लिव बेटर. वैसे एक बात बता देती हूँ आपको, ऐसा कुछ होता रहता है जिनके जरिए हमें आपको बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू नो इस धरती पर क्या चल रहा है. नाउ देयर समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी फेसिंग एंड दैट्स कॉल्ड द एल नीनो. अब ये किस तरह से न्यूजीलैंड के वेदर को इम्पैक्ट करने वाला है. एल नीनो क्या है? एल नीनो इज़ एक्चुअली जो ओशन वाटर है ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. ये वार्म है अबव एवरेज और इससे क्या है, एक परमानेंट ईस्ट वेस्ट की जो हवाएं हैं अराउंड द इक्वेटर वो वीकन हो सकती हैं और कभी कभी वो रिवर्स भी हो सकती हैं. दिस मीन्स दैट जो सी है इन द फार वेस्टर्न पैसिफिक वो ठंडी हो जाती है, इट कूल्स डाउन, वाइल ईस्टर्न पैसिफिक जो पैसिफिक है वहाँ पे पानी गर्म हो जाता है, हवाएं तेज़ हो जाती हैं या गर्म हो जाती हैं. रेन थंडर स्टॉर्म जो है वो फॉलो करता है फ्रॉम द वार्म ओशन एंड कोल्ड ओशन और क्या हो उसके बाद एक ड्राइनेस हमारे प्रेशर्स में आने लग जाता है. अर्थ साइंस न्यूजीलैंड की जो प्रिंसिपल हैं इन्होंने बताया है कि दिस इज कॉज कुड हैपन, दिस मे हैपन एंड इससे क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंट विंड्स जो है फ्रॉम वेस्ट इन द मंथ ऑफ समर्स जो है और सदरली विंड्स इन द विंटर है न्यूजीलैंड में आने वाली हैं. कोई भी नो एल नीनो जो है एवरेज नहीं होती, इट कम्स विद अ यूनिक सेट जहाँ पे क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेदर में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है और एल नीनो कैन बी सीन एज अ क्लाइमेट ड्राइवर. अगर आपको पता है दैट यू नो आपके पास कहाँ से कुछ हवा आ रही है, लगता है पसीना हो रहा है आपको या रेनफॉल का कुछ पैटर्न अलग हो रहा है, कुछ टेम्परेचर पैटर्न्स आपको लगता है आप नोट कर पा रहे हैं, तो इट इज़ एट अ ग्लोबल स्केल. एल नीनो के इवेंट्स जो हैं इट विल हैव वार्मर ईयर्स जिससे एयर के टेम्परेचर बढ़ते चले जाएंगे और जो एक हीट जो एब्जॉर्ब करती है जो सी वो कम कर पाएगी. अब ये एल नीनो जो है दिस विल बी फॉलोड बाय बारिश और खूब बारिश इन न्यूजीलैंड. छतरियों को बराबर से रखिएगा. अगर एल नीनो इज हॉट देन व्हाट इज एल नीना? एल नीना इज कूल, ऑपोजिट साइड और बिल्कुल ऑपोजिट. सो एल नीनो है जो आने वाली है और ये काफ़ी हद तक क्लाइमेटिक डिफरेंस और ड्राइवर बन जाते हैं इक्वेटर पैसिफिक की, खास तौर से उस ओर में आके. न्यूजीलैंड में हमेशा इसका नॉर्थ ईस्ट की जो हवाएं हैं वो मॉइस्ट होती हैं और रेनी कंडीशंस लेके आती हैं टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्पॉट्स, खास तौर पे नॉर्थ आइलैंड की तरफ, बट लोअर साउथ आइलैंड में ये बारिश कम होती है. So what does this mean in the coming months? Probably we are going to see less rain, landslides और साथ साथ flooding events. अब ये flooding events जो होंगे hit होंगे पता नहीं कैसे होंगे, but drought या heat waves जो है काफ़ी बढ़ती चली जाएंगी. As we move towards the spring and summer, आपको ये possibility जो है नज़र आनी शुरू हो जाएगी. It will get pretty much hot. Rain events जो है of course थोड़े कम होंगे, बट जून टू अगस्त के लिए कहा जा रहा है रेनफॉल जो है इज़ गोइंग टू बी इक्वली लाइक अ नियर नॉर्मल और बिलो नॉर्मल फॉर द नॉर्थ ऑफ द साउथ आइलैंड एंड वेस्ट ऑफ द नॉर्थ आइलैंड. तो भाई इस तरह की खबर जो है हमारे न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें पता है एग्जैक्टली हम क्या फेस करने वाले हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एल नीनो, रिमेंबर दिस.
1: 80s के रेट्रो गाने

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाएं.
4: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND-NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
5: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
6: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
7: Chudi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. Ye sona wahi Sona Sansar hai jahan Delhi se lekar Dubai tak ke sabhi gold jewelry designs milte hain, samjhe?
6: Sona Sansar Papa Toto, jahan tha wahan abhi bhi hai. Shop inside with Asa Design Studio, corner of Great South Road and East Tamaki Lights, Papa Toto.
8: Sona Sansar, 138 Great South Road, Papa Toto. Sona Sansar, you are never too old for gold.
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: उन्होंने कहा आप ये सिक्स वर्ड स्टोरी कैसे बना लेते हो. अब जैसे सुशील मसल शेफ कैफे टीम सेड हाय टू हम FM टीम विलिंगटन, ओके, ये आपने स्टोरी लिख के भेजी. लेकिन अगर मैं देखूं, अगर हमें स्टोरी फॉर्म करनी होती है, उसमें हमें किस तरह से एक स्टोरी फॉर्म करनी चाहिए, वर्ड्स का जब हम चयन करते हैं ना, उन्हें शॉर्टन कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस जिनको बोलते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम तो वी कैन जैसे आई अपोस्ट्रोफी एम, तो वन वर्ड हो जाएगा. दे आर की जगह दे आर विद एन अपोस्ट्रोफी एस. डोंट वरी इफ़ यू यूज सिक्स वर्ड स्टोरी, इट डजंट वर्क. एक्चुअली क्या होता है, दे आर सपोज टू बी फन एंड दे आर सपोज टू बी क्रिएटिव, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे सिक्स वर्ड की स्टोरी जो होती है, उसमें आपका एक लाइफ टाइम इमोशन ज़रूर आना चाहिए, या ह्यूमर आना चाहिए, या एक एक्सपीरियंस कुछ वर्ड्स के अंदर अंदर. जैसे यू नो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वेल आई थॉट इट वॉज़ फनी. ना कुछ पूछा होगा किसी ने, तो कह सकते हैं वेल आई थॉट इट वॉज फनी. अब ये आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है. सो थैंक यू सो मच सुशील जी, आपका मैसेज आया सुशील मसल शेफ से, एंड दिस इज द वे टू फॉर्म अ सिक्स वर्ड स्टोरी.
9: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Maza.
1: सो मिड मॉर्निंग मज़ा में आपके साथ मुझे शेयर करना है कि हमारी कम्युनिटी में क्या खास होता है. अब बता देते हैं कि ग्रैंड कीर्तन संध्या जो है ये रोनल सिंह रोनू और जैनेश सेवक आपके लिए लेकर आने वाले हैं. दिस इज़ हैपनिंग टुमारो एट द वैदिक सेंटर पापा टोयोटो 7:30 बजे शाम को. भाई $20 की टिकट्स हैं जो जैज़ फ्रेश मार्ट पापा टोयोटो में आपको मिल सकते हैं. इसी के साथ साथ जो है आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता की जो कथा है ये कल से शुरुआत होने वाली है, जिसे श्री राधा कृष्ण मंदिर जो है ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन के साथ मिलकर कर रही है. भाई श्री रमेश भाई ओझा जी पधार रहे हैं और ये डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हैं. 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ 13 जून को होने वाले हैं. सभी डिवोटीज को वेलकम कर रहे हैं दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट. आप रामकृष्ण मंदिर मैनकाओ में भी पहुंच सकते हैं. सुबह 7 बजे से ये सब शुरू होगा और उसके बाद कई मंडली जो है आके इसमें अपना अपना खूबसूरत सा हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं. तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं. ब्राह्मण समाज न्यूजीलैंड अधिक मास और कथा और यज्ञ जो है 7 जून को करने वाले हैं. रामकृष्ण मंदिर ऑनस्लो एवेन्यू मैनकाओ में आप सुबह 9:30 बजे से पहुँच सकते हैं और उसके बाद हवन शांति पाठ वगैरह भी होगा. प्रसाद महापास प्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है. थोड़ी देर बाद आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ भाई क्या क्या बच सकता है, क्या क्या आप ले सकते हैं. तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. मैंने कहा क्यों नहीं उनके ये दो गाने हैं बजाएं.

अंकुर आपने लिख के कुछ भेजा है, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, ब्रोकन प्लान एंड डिफिशंस ऑफ ह्यूमर. ओके ओके, ब्रोकन प्लान एंड डिफिशंस ऑफ ह्यूमर. 1 2 3 4 5 6 R अंकुर. ओके, आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट, बट एनी वे इफ यू कैन कॉल मी इट विल बी ग्रेट.

0: अद्भुत।
1: वैसे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो होने वाली है, अगर आपको प्लेज में इंटरेस्ट है, आपको थिएटर का एक एक्सपीरियंस है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अपने बचपन की यादों में आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें याद है हमने बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला स्टोरी सुनी थी, और अब ये स्टोरी एक अलग अंदाज के साथ लौट कर आ रही है बाय द अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन MNZM, जो कि स्टेज में वापस लौट कर आ रहे हैं विद द वर्ल्ड प्रीमियर कॉल्ड बलून डॉग। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी नए प्रोडक्शन के साथ इंस्पायर्ड कहानी है, यू नो इट्स गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स बिलवड स्टोरी काबुलीवाला, और इसे लिखा है जेकब राजन एंड जस्टिन लुई ने, और साथ साथ डायरेक्ट भी किया है जस्टिन लुई ने। इसका एक डबल पास जीतने का खूबसूरत सा मौका है। सो आपको क्या करना है, BD लिखिए। मैं चाहती हूँ कि अगर आप BD लिखिए और बलून डॉग विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्ले विच यू विल विटनेस, अब ये कब हो रहा है, ये 3 जून से लेके यानी कल से स्टार्ट हो चुका टिल द 20th of June, तो अगर आप ये अनफॉरगेटेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, BD लिखना है और अपना नाम लिख के भेजना है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। That's about it. वैसे अगर इसके अलावा भी अगर टिकट नहीं जीते तो iticket.co.nz के जरिए जाकर आप ये टिकट खरीद सकते हैं। This is happening at the Q Theatre in Auckland, and याद रहे कि this is something which you'll not want to miss. And Ankur, I have got your details here. आपने BD लिख कर भेजा है, great. All the best. I put your name into the draw. ब्रेकफास्ट शो में ये अनाउंस कल होने वाला है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go? Check it.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

भी आपकी जो वेजिटेबल्स होती है ना वो बिटर टेस्ट करने लगती है, थोड़ा अलग से अर्थी टेस्ट आने लग जाता है उसमें। ऐसे में इन्हें कट कर दीजिए, कोई भी शेप में काट दीजिए, ठीक है। फिर इनको स्लोली स्लोली हाई हीट पर रोस्ट करना शुरू कीजिए। ये कैरमलाइज हो जाती हैं, और जब ये कैरमलाइज हो जाएंगी तो इनकी नेचुरल शुगर जो है इसको मेक आपको बना देगी स्वीटर एंड मोर टेस्टियर, और कड़वापन उसका चला जाएगा। सो डू ट्राई दैट आउट एंड इट विल रियली वर्क वेरी वेल विद यू। एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप कभी ब्रेकफास्ट शो या ड्राइव शो मिस करते हैं तो ब्रेकफास्ट लिख के भेजिए कैचअप के लिए, और फिर ड्राइव शो में आपको मैं बता देती हूँ कि एक पॉडकास्ट है विच यू शुड नॉट मिस। अगर आप WWE के फ़ैन हैं तो उसके सुपरस्टार शांकी सिंह आए थे, इनकी मुलाकात हुई थी सैंडी और उसबे के साथ अनफिल्टर्ड में। आप इस 7 feet tall रेसलर को सुन सकते हैं, उनकी कहानियां सुन सकते हैं, किस तरह से उन्होंने सलमान खान के साथ भारत फिल्म में काम किया, और फिर ये ग्रेट खली जी के साथ ग्लोबल स्टेज पे भी जो ट्रेन हो चुके हैं। तो ज़रूर इनकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, इनका ऑडियो वीडियो एपिसोड आपको मिल जाएगा। आप इंस्पायर मीडिया वर्क्स की तरफ से ये वीडियो प्रोडक्शन हुई है, जहां केतन जो हैं इन्होंने इसको प्रोड्यूस भी किया है। सो 5599 पे आप ड्राइव लिखकर भी भेज सकते हैं।

चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, जो भी इसे कहना चाहें आप। मेरी मुलाकात होगी आपके साथ, दिन कहलाएगा शुक्रवार। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे होगा ना फिर, और आपके वीकेंड के प्लान्स में मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको कल रिमाइंड करती रहूंगी कि भाई समय आपके लिए कितना मूल्यवान है। तो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, मुलाकात होगी दिन कहलाएगा शुक्रवार। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ। केतन कमिंग अप नेक्स्ट, और लंच बॉक्स में इनका साथ जरूर दीजिएगा। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 AM.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: To attract meaty deals on fresh quality sea meat and land meat, I deliver a meeting call.
11: Meat!
10: Meat Week on Now at Pack and Save.
12: Otara! Oh yeah!
13: South Auckland's buses just became a lot better.
12: Grey South Road, now even greater!
13: With better bus routes, more frequent buses, and more.
12: Weymouth Road, way better buses.
13: Search AT Better South Auckland Buses for more.

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
5: अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: हम टाइम चेक
8: टाइम हो चुका है दिन के ठीक 12
7: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at midday. The police watchdog has found failures led to a fatal pursuit in Rotorua. Officers weren't initially going to pursue the speeding vehicle until someone over the radio said that